मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आशा। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 6 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार दिए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन

0: 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी वाराणसी है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में तिल की खेती विषय पर किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम तिल की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी बुआई का सही समय जुलाई माह का दूसरा पखवाड़ा है, अतः आप सही समय पर इसकी बुआई करें। खेत तैयार करते समय यह बात ध्यान दें कि खेत की मिट्टी मध्यम किस्म की हो और उसमें फालतू पानी के निकासी की पूरी व्यवस्था हो। बरसात के मौसम में बुआई करते हैं, अतः जब खेत जोतने लायक हो तो 3-4 बार जोतकर खेत तैयार कर लेते हैं। तिल की फसल को जिन उर्वरकों की आवश्यकता होती है उन्हें हम 2 बार में प्रयोग करते हैं। एक तो खेत की तैयारी करते समय और दूसरा खड़ी फसल में पहली बार निराई गुड़ाई के बाद। खेत की तैयारी के समय जो उर्वरक देते हैं उसे कोण में और जो उर्वरक खड़ी फसल में देते हैं उसे भूरक कर प्रयोग करते हैं। जहां तक उर्वरक की मात्रा का प्रश्न है तो उर्वरक की सही मात्रा तो मिट्टी की जाँच कराने से ही मालूम होती है। उर्वरक देने का सबसे सही तरीका यही है और यदि मिट्टी की जांच न करा सकें तो तिल की फसल के लिए जो सामान्य मात्रा वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित की गई है उसे प्रयोग करें। यदि मिट्टी की जांच कराए हैं तो उस अनुसार और यदि मिट्टी की जांच नहीं कराए हैं तो तत्व के रूप में 6 किलोग्राम नत्रजन और 6 किलोग्राम फास्फोरस, कहने का मतलब ये कि लगभग 14 किलोग्राम यूरिया और 36 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट खेत की तैयारी के समय और 14 किलोग्राम यूरिया पहली निकाई के बाद टॉप ड्रेसिंग करते हैं। खेत की तैयारी हो जाने के बाद अच्छी प्रजाति वाला बीज लेकर फिर बुआई करते हैं। तिल की उन्नतशील प्रजातियों में टाइप 4, टाइप 12, टाइप 10, टाइप 78, टाइप 32 और शेखर प्रमुख हैं। इनमें से जो भी प्रजातियां मिल जाए लेकर के बुआई करें। 1 हेक्टेयर में बुआई हेतु 3-4 किलोग्राम बीज लगता है, कहने का मतलब ये कि 1 बीघा जो कि 20 बिस्वा का होता है उसमें 1 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बीज से फैलने वाले रोगों से फसल को बचाने के लिए इसे थीरम दवा से शोधित करते हैं। 1 किलोग्राम बीज के शोधन के लिए 2.5 ग्राम थीरम दवा पर्याप्त होती है। बीज शोधन के बाद उसकी बुआई करते हैं। बुआई हल के पीछे कोणों में और बीज कम गहराई पर बोने चाहिए। कोण से कोण की दूरी 30-45 सेंटीमीटर यानी 1-1.5 फीट होनी चाहिए। बरसात की।

0: फसल होने के कारण वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, किंतु फसल में जब लगभग 25 से 30% फली लग जाए और खेत में नमी की कमी हो तो उस समय एक हल्की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। जहाँ तक तिल की फसल में निकाई की बात है तो इसमें पहली बार उस समय निकाई करते हैं जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं। इससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, इससे पौधों को अधिक खुराक मिलती है तथा गुड़ाई हो जाने से मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, जिससे मिट्टी के जीवाणु सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं और पौधा स्वस्थ रहता है। इसी निकाई के समय एक कार्य और करना चाहिए, जो पौधे ज़्यादा घने हो गए हों उन्हें उखाड़कर स्वस्थ पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर निर्धारित कर देनी चाहिए। पौधे जब 30 से 35 दिन के हो जाएं, तो एक बार एक और निकाई कर देनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर तिल की खेती करनी चाहिए।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें कार्यक्रम में तिल की खेती विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 होने वाले हैं। निवेदित हैं भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत। राम भक्त हनुमान, संकट मोचन हनुमान, हम सबके जीवन में अपार खुशियां लाएं, यही हमारी मंगल कामना है।

राम नाम जाप से सभी संताप दूर हो जाते हैं, जीवन सफल और सुगम हो जाता है।

ईश्वर की असीम अनुकंपा है इस सृष्टि का निर्माण, जिसमें सामंजस्य है प्रेम और पाती का, दिया और बाती का, जिसका आभूषण है स्नेह सद्भाव करुणा और सौहार्द।

0: आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत। आज इसमें जिन गायक कलाकारों ने अपने स्वर दिए वो थे हरिओम शरण, प्रभाकर कारेकर, जगजीत सिंह और चंद्रनाथ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। आइए सुने विचार बिंदु। विषय है शिक्षा का मूल आधार।
1: अहम् सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः, अर्थात ईश्वर प्राणी मात्र में उसकी आत्मा के रूप में अवस्थित है। मनुष्य के मन में इस महान भावना का प्रादुर्भाव शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा मानव विचारों की जननी है। हमारी शिक्षा के अनुरूप ही हमारे विचार उत्तरोत्तर बनते चले जाते हैं। अतः शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षण संस्थाओं में आध्यात्मिक शिक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। नैतिक गुण ही मनुष्यता के परिचायक हैं और शिक्षा का मूलाधार है। करुणा, प्रेम, सौहार्द और त्याग ही शिक्षा के मूल तत्व हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल तकनीकी ज्ञान देना ही नहीं है, वरन मनुष्य के हृदय में दया, परोपकार, सहृदयता और बलिदान आदि मानवीय गुण उत्पन्न करना भी है। अन्यथा उसकी समस्त वैज्ञानिक और औद्योगिक उपलब्धियां निरर्थक हैं। अंतरात्मा जब अलौकिक ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होती है, तो अज्ञान के घने अंधेरे स्वमेव ही छट जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सर्वत्र विद्या का प्रचार प्रसार हो, शिक्षा को सही दिशा मिले। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय के चरितार्थ से ही सच्चे अर्थों में शिक्षा से अमृत वर्षा हो सकती है। इतिहास की उपलब्धियों तथा भूलों से कुछ सीख विवेकपूर्ण ढंग से भविष्य योजना तैयार करना तथा आने वाली पीढ़ियों में सुदृढ़ चरित्र, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जैसी उपलब्धियों को संप्रेषित करने का कार्य ही शिक्षा करती है। हम जो कुछ सीखते हैं वो हमारे ज्ञान को समृद्ध करता हुआ व्यक्तित्व का आभूषण बन जाता है, और जो प्रतिकूल परिस्थितियों में झंझावातों में सीखते हैं वह भविष्य में हमारा सहारा बनता है। यदि हम कोई मोती वाली सीप भंवर से निकाल कर लाते हैं, तो उसके संघर्ष का संदेश जनहित के लिए प्रसारित करना ही सच्चे शिक्षक का कर्तव्य है, क्योंकि वे अनुभव ही सच्ची शिक्षा देते हैं। एडवर्ड जी बोनो, जो कि अपने समय के विख्यात विचारक रहे हैं और उन्होंने गहन विचारों पर काफी कार्य भी किया है, इस बात पर आश्चर्यचकित रह गए कि आज तक किसी सभ्यता ने अपने लोगों को विचार करने की कला में प्रशिक्षित नहीं किया है। विद्या धर्मेण शोभते, यही भारतीय शिक्षा का मूल मंत्र है। एनी बेसेंट जी का मानना है कि शिक्षा धार्मिक ज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, प्रेम व आनंद के वातावरण के बिना अधूरी है। शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सच्ची शिक्षा के द्वारा बच्चे के भीतर

0: छिपे हुए ईश्वरत्व को विकसित करना होगा। मनसा वाचा कर्मणा सत्य के अभ्यास से ही हमारे भीतर वो आध्यात्मिक दृष्टि जगेगी जो भ्रम के माया जाल को छिन्न भिन्न कर देगी, जिसके सामने प्रकृति का कोई छल बल सफल न होगा। विकास पथ पर जो हमसे पीछे हैं, हमें उनका मार्गदर्शन कर उनका पथ प्रशस्त करना होगा, उनका शिक्षक बन उन्हें सिखाना होगा कि किस प्रकार वे अपने भावों को परिष्कृत करते हुए जीवन पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। यदि हम ऐसा न कर उनके प्रति निर्दयता दिखाते हैं तो ये उनके भीतर छिपे हुए ईश्वरत्व के प्रति हमारी उपेक्षा है। विद्यालयों में ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए जो बालकों की अंतः प्रकृति को स्पर्श कर सके, ऐसी सहयोग भावना होनी चाहिए जो छात्रों की स्नेहपूर्ण निष्ठा को प्रभावित कर सके, तथा ऐसी नैतिक और बौद्धिक शिक्षा होनी चाहिए जिससे वे अपने भावों को प्रज्वलित कर सकें। अपने व्यवहार में उत्तरोत्तर परिष्कार का समावेश ही शिक्षा है। जो ज्ञान जीवन के काम न आए वह निरर्थक है। यदि बौद्धिक विखंडता और अराजकता से हमें बचना है तो हमें अपनी शिक्षा में गणित विज्ञान आदि विषयों के साथ साथ नैतिक शिक्षा जैसे विषय को प्रमुख स्थान देना होगा। भारत के स्वर्णिम एवं गौरवशाली इतिहास और धरती पर मानव की सर्वोच्च सभ्यता का श्रेय हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को जाता है। चिंतन मनन और तपस्या से भगीरथ बन ज्ञान की गंगा को निरसित कर विभिन्न उपत्यकाओं से गुजार मार्ग में विभिन्न मानवीय संवेदनाओं को अंकुरित करते हुए लक्ष्य को गंतव्य तक पहुंचाने की सात्विक शपथ ले निरंतर अग्रसर रहना ही पवित्र तपस्या है, सच्चा यज्ञ है, आत्माहुति है, शिक्षण कार्य है।
1: ये था आज का विचार बिंदु। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। आज इसमें विषय है बच्चों की समसामयिक बीमारियां और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज आप सुनेंगे इसकी पहली कड़ी।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ, नियो केयर चिल्ड्रेन क्लिनिक सिवदासपुर, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सामान्य बीमारियां जो अक्सर हमारे बच्चों को होती हैं, जिससे हम परेशान होते हैं, हम एक एक करके सारी बीमारियों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं दस्त यानी डायरिया। डायरिया क्या होता है? जब बच्चे पतली दस्त करने शुरू करते हैं, जो कि एक फ्रीक्वेंसी होती है कि दिन में 2 से 3 बार ये नॉर्मल होती है, 5 से 6 बार होने पे हम उसे दस्त का रोग कहते हैं। ज़्यादातर इसका कारण होता है संक्रमण, जिसमें 50% से ज़्यादा ये बीमारी वायरल के कारण होती है, जो खुद पर खुद अपने आप सीमित होती है, 4 से 5 दिन में ये स्वस्थ हो सकते हैं। दूसरा होता है संक्रमण जो जीवाणु और प्रोटोजोवा बैक्टीरिया अमीबा के कारण होती है। लक्षण इसके क्या होते हैं? लक्षण इसमें होते हैं बार बार पतली लैट्रिन करना, उल्टी करना, बुखार होना, सुस्त होना, बच्चे का चिड़चिड़ापन होना, कुछ भी ना खाना पीना, और यह बीमारी का अगर त्वरित उपचार ना किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकती है कि बच्चे की बेहोशी जैसी हालत होने लगेगी, बच्चे की आंख धंसती जाएगी, बच्चे की ओट सूखे हुए होंगे, बच्चे का पेशाब रुक जाएगा। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं हमारे दस्त और डायरिया में मिलते हैं। हमें जो ये सारे लक्षण हैं उसके अनुसार बच्चे का इलाज तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम घर पे कर सकते हैं वो होता है निर्जलीकरण। मतलब हमारी जो दस्त हो रही है उसके साथ हमारे पानी की कमी होना हो, उसके लिए बच्चे को उपयुक्त आहार देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड वाली चीज़ें दें, जैसे कि दाल का पानी, चावल का पानी, इलेक्ट्रॉल। अगर इलेक्ट्रॉल नहीं है तो घर पे भी हम उसको खुद से बना सकते हैं। आप 5 ग्राम नमक और 20 ग्राम चीनी की मात्रा 1 लीटर पानी में घोल के बच्चे को जितनी बार दस्त हो, जितनी बार पतली लैट्रिन हो, उसको थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहें। सबसे पहले आपको निर्जलीकरण करना है। दूसरा, बच्चे की बीमारी के बारे में पहचानना है कि अब बीमारी बढ़ तो नहीं रही है, अगर बढ़ रही है तो हमें

0: त्वरित इसके लिए अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, निमोनिया। निमोनिया का लक्षण होता है जो कि एक संक्रमण होता है और हमारे बच्चों के फेफड़े को असर करता है। इसके लक्षण आते हैं तेज बुखार होना, तेज सांस चलना, खांसी होना, उल्टी होना। निमोनिया अधिकतर बैक्टीरिया के कारण होता है। कुछ निमोनिया जो कि वायरल के कारण होता है, जैसे खसरा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। अधिकतर बच्चों में पहले के समय जो 5 साल के नीचे होते थे, मृत्यु का कारण एक निमोनिया बहुत ही अत्यधिक हुआ करता था, लेकिन हमारे वैक्सीनेशन के कारण अब वो कारण धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसमें हमें अपने बच्चे को पहले तो देखना होगा कि निमोनिया के लक्षण आ रहे हैं या जस्ट एक एक खांसी और बुखार है, दोनों में हमें अंतर देखना होगा। तो निमोनिया में सबसे पहले अगर बच्चे को केवल शुरुआत के दिनों में बुखार आएगी, हल्की फुल्की सांस तेज चल रही है, तो हमें त्वरित उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। केवल खांसी है, बुखार है, तो कई बार ये वायरल हो सकता है और ये सेल्फ लिमिटेड भी होते हैं। तो बुखार के लिए हम पैरासीटामोल दे सकते हैं। बच्चे को द्रव वाले पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा दें और एंटीबायोटिक अपने डॉक्टर के अनुसार अगर लग रहा है तो ही स्टार्ट करें। अनावश्यक दवाइयाँ बच्चे को ना दें।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख ध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आज की इस कड़ी के गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए जानकारी दे दें आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर और खेल दर्पण रात्रि 10 बजे से। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में 7:31 पर और 12:45 पर सुनिएगा अतुल शंकर का बांसुरी वादन और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रमों में 12:30 पर कलाकार होंगे पंडित सीताराम सिंह और इसी कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे कलाकार होंगे ए हरिहरन। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर सुधाकर सिंह से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत। विषय होगा केले की खेती और लोकगीत प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर ज्योति सिन्हा। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। दिन में 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में महिलाएं पीवी राजीव से बातचीत सुनेंगी। विषय होगा ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नवीन अवसर। इसके अलावा महिलाएं गीत संगीत भी सुनेंगी। दिन में 2:30 पर सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड का प्रसारण होगा। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे आज आप सुनेंगे बांग्ला गीत। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर जिसमें आज का आकर्षण होगा आज की बात। क्या आप जानते हैं यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम 12:00 से आप सुन पाए।

आएंगे। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो आज होगा व्हाट्सएप संदेश पर आधारित, तो इसका प्रसारण होगा दिन में 11 बजे से। झनकार का आनंद लीजिएगा सुबह 10 बजे से। सदाबहार फिल्म गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा हम लेकर आएंगे सुबह 8:45 पर। गुड मॉर्निंग बनारस रोज की तरह आप सुनेंगे सुबह 7 बजे से।

गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 से। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे, 7:31 पर रसरंग में, और रात्रि 8:15 पर रस माधुरी के जरिए। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

गुड मॉर्निंग बनारस। हे बनारस, गुड वाला मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ट्यून किया है आपने अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। हम बात करेंगे बनारस आज कुछ फिल्मी स्टाइल वाली सुबह की। जी हाँ, जहाँ फिल्मों में हम अक्सर देखा करते हैं कि कैसे एक्टर और एक्ट्रेस बड़े प्यार से सुबह अपनी खिड़की का पर्दा खोलते हैं, और ये बड़ा फायदेमंद माना जाता है, बड़ा ही दिलचस्प है। इसका कारण तो आइए जानते हैं। सुबह सोकर उठने के बाद हम सबसे पहले फोन देखना या चाय पीना शुरू करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जागते ही सबसे पहले अपने कमरों के पर्दे खोलना आपकी सेहत को अच्छा बना सकता है? जी हाँ, ये सुनने में आम बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक कारण है जिनके बारे में पता होना जरूरी है। सुबह की ताजी धूप और नेचुरल लाइट जब हमारे घर और शरीर पर पड़ती है तो ये हमारे सिस्टम को रीबूट कर देती है। ऐसे में ये जानना तो बनता है कि सुबह सबसे पहले खिड़की दरवाजों के पर्दे हटाने के कौन से दिलचस्प कारण हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल सकते हैं। रिसर्च हमें बताती है कि सुबह की धूप कोर्टिसोल के स्तर को तेजी से बढ़ाकर हमारे दिन की एक अच्छी शुरुआत करती है। इसके साथ ही ये शरीर में नींद लाने वाले हार्मोन के प्रोडक्शन को सक्रिय रूप से रोकती है, ताकि आप तुरंत नींद और आलस से बाहर आ सकें। ये धूप के उत्पादन में भी मदद करती है, जो हमारे मूड को खुशनुमा और स्थिर बनाए रखता है। और सुबह सुबह रूम के पर्दे खोलने से शरीर और दिमाग को कैसे मिलता है फायदा, ये भी जान लेते हैं। सुबह की धूप विटामिन डी का सबसे बेहतरीन नेचुरल सोर्स है, जो हमारी हड्डियों और इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। घर के अंदर नेचुरल रोशनी आने से रात भर की बंद हवा और उमस दूर होती है, जिससे कमरे का वातावरण फ्रेश होता है और मूड में सुधार आता है। और आप सोच रहे होंगे कि सुबह कितनी देर तक पर्दों को खुला रखना चाहिए, तो बता दूं कि सुबह उठने के तुरंत बाद यानी सूर्योदय के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर ही पर्दा हटा देना सबसे असरदार माना जाता है। आपको कम से कम

20 से 30 मिनट तक अपने कमरों में सीधी धूप और नेचुरल रोशनी को आने देना चाहिए। पर्दों को हटाने के साथ साथ कुछ देर के लिए खिड़कियों को भी खोल दें ताकि वेंटिलेशन बेहतर हो सके। सुबह की ये गुनगुनी धूप आपकी आंखों और त्वचा के लिए बेहद सुरक्षित होती है। तो फुल ऑन फिल्मी मूड में सुबह अपने घर के खिड़कियों के पर्दे हटाइए और आने दीजिए घर में खूबसूरत सी धूप, और साथ ही घर में बैठे बैठे एंजॉय करिए अभी तुरंत ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। बनारस आज दिन है मंगलवार और तारीख है 14 जुलाई। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है अपने शहर बनारस में। खास काशी की शान और परंपरा की पहचान बन चुका वाराणसी वस्त्र उद्योग अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने रंग बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार की GI पंजीकृत उत्पाद अब भारत टेक्स 2026 में अपने ताने बाने की झलक दुनिया को दिखाएगी। भारत टेक्स 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 तक प्रगति मैदान भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। योगी सरकार हस्तशिल्पियों और निर्यात

निर्यातकों को अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर दे रही है। वस्त्र उद्योग से जुड़े निर्माता और निर्यातक बनारसी साड़ी और रेडीमेड कपड़ों के अपने उत्पादों को भारत टेक्स 2026 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देंगे। भारत टेक्स 2026 में बनी बनारसी सिल्क साड़ी और जरी की बनी बनारसी साड़ी खास डिजाइन, महीन बुनकारी और सुनहरी कारीगरी से अपनी छाप इंटरनेशनल मार्केट में छोड़ेगी। हथकरघा और वस्त्र उद्योग की उपायुक्त उद्योग प्रवर्तन कुसुम ने बताया कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 17 जुलाई तक आयोजित होने वाले भारत टेक्स 2026 में वाराणसी से जुड़े साड़ी, सिल्क और रेडीमेड वस्त्र उद्योग के 10 निर्माताओं और निर्यातकों ने अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए पंजीकरण कराया है। यह आयोजन काशी की पारंपरिक बुनकरी और जरी कला को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचाने का बड़ा अवसर माना जा रहा है। भारत टेक्स 2026 को देश का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन माना जा रहा है। भारतीय वस्त्र उत्कृष्टता को वैश्विक विकास के ताने बाने से जोड़ने का ये आयोजन भारत के संपूर्ण टेक्सटाइल इकोसिस्टम को एक मंच पर प्रस्तुत करेगा। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को वस्त्र मंत्रालय सहयोग कर रहा है। 4 दिवसीय इस आयोजन में देश विदेश के निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, फैशन ब्रांड, निवेशक, डिजाइनर, स्टार्टअप और नीति निर्माता शामिल होंगे। आयोजन में 7,000 से अधिक खरीदारों, करीब 1,00,000 व्यापारिक आगंतुकों और 20,000 से अधिक वस्त्र उत्पादों के प्रदर्शन की संभावना जताई गई है। लगभग 16,00,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैले इस मेले में 1,600 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। सरकार के 5F विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से पर आधारित यह आयोजन वस्त्र उद्योग के लिए निवेश, व्यापार, नवाचार और वैश्विक साझेदारी का महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। भारत टेक्स इस संस्करण में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और नेपाल समेत 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग से जुड़े लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की भागीदारी की संभावना भी आयोजन को खास बनाएगी। भारत टेक्स 2026 में विभिन्न राज्यों के निवेशक संपर्क सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य अपनी औद्योगिक संभावनाओं को प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इस मंच के जरिए राज्य के वस्त्र उद्योग, विशेषकर बनारसी वस्त्र परम्परा को वैश्विक पहचान दिलाएगी। काशी की बनारसी साड़ी केवल एक परिधान नहीं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत और कारीगरों की पीढ़ियों की मेहनत का प्रतीक है। भारत टेक्स 2026 में इसकी मौजूदगी न केवल काशी के बुनकरों को नया बाजार देगी, बल्कि लोकल से ग्लोबल के विजन को भी नई मजबूती प्रदान करेगी। योगी सरकार बनारसी साड़ी के साथ साथ अब वाराणसी में निर्मित रेडीमेड परिधानों को भी वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। सरकार ने पहले विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यमियों और कारीगरों को आर्थिक और संस्थागत सहयोग प्रदान किया और अब उन्हें लोकल से ग्लोबल की उड़ान भरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करा रही है। योगी सरकार वस्त्र उद्योग को आर्थिक और तकनीकी सहायता देने के साथ साथ उसके प्रचार प्रसार और वैश्विक ब्रांडिंग पर भी लगातार जोर दे रही है। इस वैश्विक मंच पर देश विदेश के खरीदारों से सीधे संपर्क बनाने से नए ऑर्डर मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे बनारसी वस्त्र उद्योग, रेडीमेड परिधान निर्माताओं और स्थानीय रोजगार को नई मजबूती मिलेगी। नगर निगम द्वारा गृहकर, जल कर और सीवर कर पर दी जा रही विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए अब केवल 2 दिन का समय शेष रह गया है। नगर निगम ने भवन स्वामियों से अपील की है कि वो 15 जुलाई से पहले अपना कर जमा कर छूट का लाभ अवश्य लें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद करदाताओं को पूरा टैक्स जमा करना होगा। छूट की अंतिम तिथि नजदीक आते ही नगर निगम के कर संग्रह केंद्रों और ऑनलाइन पोर्टल पर करदाताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोमवार को ही शहर के करीब 3,200 भवन स्वामियों ने 3 करोड़ रुपए का संपत्ति कर जमा किया। वहीं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में 27 भवन स्वामियों ने नगर निगम के व्हाट्सएप चैट

बॉट के माध्यम से अपने भवनों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए आवेदन भी किया। नगर निगम के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 66,342 भवन स्वामियों ने कुल 50 करोड़ रुपए का संपत्ति कर जमा किया है। इसमें 27,757 भवन स्वामियों ने ऑनलाइन माध्यमों से भुगतान करते हुए 28 करोड़ रुपए निगम के खाते में जमा किए हैं। इससे स्पष्ट है कि डिजिटल भुगतान के प्रति नागरिकों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि 15 जुलाई तक गृह कर, जल कर और सीवर कर जमा करने पर सभी उपभोक्ताओं को 10% की छूट दी जा रही है। इसके अलावा अगर भुगतान डिजिटल माध्यमों जैसे UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किया जाता है तो 2% अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस प्रकार ऑनलाइन भुगतान करने वाले करदाताओं को कुल 12% तक की रियायत का लाभ प्राप्त होगा। नगर निगम के करदाताओं की सुविधा के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट 8601872601 भी उपलब्ध कराया है। इस नंबर पर केवल हाई भेजने पर उपभोक्ताओं को उनका डिजिटल बिल प्राप्त हो जाएगा, जिसके माध्यम से वो घर बैठे सुरक्षित और आसान तरीके से कर का भुगतान कर सकते हैं। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि अंतिम समय की भीड़ से बचते हुए समय रहते टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाएं। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार, और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो अब गुड मॉर्निंग बनारस में छोड़े जा रही हूँ आपको इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ। दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त स्नेहा को। टाटा।

Good morning, Banaras. ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का किया उद्घाटन, आज से की जा सकेगी यात्रा। रक्षा मंत्री ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी से मांगी जांच की स्टेटस और बढ़ी। और आज लखनऊ में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक करेगी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे एक्सप्रेस वे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन बनाने के कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
3: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का नेतृत्व कर रहा है, और आज हम लोग प्रदेश की दो मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे SCR को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद है लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है।
2: इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
4: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
5: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर में मास

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है।

0: रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा।
2: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाना भी है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि एसेसिबल, एफोर्डेबल, एफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने SIT की संरचना का विवरण भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ा दी है। अब आरोपियों की पेशी 27 जुलाई को होगी। वहीं SIT ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। समाचार कक्ष से अरुण।
1: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवादों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के निर्देश दिए हैं। यह विशेष अदालत 21 से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होगी। कार्यवाही से पहले इन मामलों से जुड़े पक्षों को लोक अदालत से पहले होने वाली सुलह वार्ता में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर योगी की पाती साझा करते हुए लोगों से वृक्षारोपण को अपने जीवन के संस्कारों और उत्सवों से जोड़ने की अपील की।
5: अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम अभियान में प्रदेश ने 40 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा कर नया इतिहास रचा है। यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नव सामर्थ्य का जय घोष है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व और जीवन संरक्षण का संदेश समेटे यह अभियान सनातन चेतना का महोत्सव है। श्री योगी ने लोगों से अपील की है कि परिवार के शुभ अवसरों, मांगलिक आयोजनों और विशेष दिनों को वृक्षारोपण से जोड़कर हमें प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहिए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC आज लखनऊ में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर उनके विचार जानेगी। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि

0: समिति ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बैंकर्स और वकीलों से विचार विमर्श किया। राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश का क्रम जारी है। गोरखपुर और इसके आसपास के कई जिलों में कल दिन में उमस भरी गर्मी महसूस की गई, हालांकि रात में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 19 जुलाई तक वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। आज से की जा सकेगी यात्रा। रक्षा मंत्री ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने SIT से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। और आज लखनऊ में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक करेगी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। शास्त्रीय संगीत में आइए सुने बांसुरी वादन। कलाकार हैं अतुल शंकर, राग है ललित।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अतुल शंकर का बांसुरी वादन, राग था ललित। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। 8 बजने को है समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी।

0: 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी लापता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम

0: ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर दो दशकों में लगभग एक डिग्री बढ़ा तापमान हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है।

0: Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. U.S. launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India skipped history at Lord's in London with 270-run win over England in a one-off women's test. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल यूएनएससी के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाई हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल यूएनएससी के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में भारत की उम्मीदवारी का आगाज करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने कहा कि दुनिया बढ़ते हुए तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम का सामना कर रही है, जिसकी वजह से अक्वामे मुत्तहिदा का रोल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। उन्होंने भारत के शांति विजन का भी ऐलान किया, जिसका मतलब है उसूलों, एतमाद और दयानतदारी के जरिए जामे तरक्की को यकीनी बनाना। उन्होंने कहा कि यह विजन आलमी अमन, सलामती और मुनसिफाना तरक्की के लिए भारत की रहनुमाई करेगा। भारत की खिदमात को उजागर करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अक्वामे मुत्तहिदा के कयाम से अब तक तकरीबन 3 लाख अहलकारों को अक्वामे मुत्तहिदा के तकरीबन 50 कयाम अमन मिशन में भेज चुका है, जबकि इस वक्त 4,300 से ज्यादा भारतीय अहलकार 10 मुख्तलिफ कयाम अमन मिशन में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मुजाकिरात और सिफारतकारी का हामी रहा है और उसने आलमी खित्ते जनूब के खदशात और मफादात को आलमी सतह पर मौसर आवाज फराहम करने की कोशिश की है। अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से हिमायत की अपील करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सलामती काउंसिल में भारत की मौजूदगी इस अहम इदारे में फैसला साजी को मजीद तकवियत फराहम करेगी। भारत अगर मुंतखब हो जाता है तो वह 2028 से 2 साल तक सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहेगा। इससे कबल भारत 8 मरतबा सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है, जिनमें सबसे हालिया मुद्दत 2021-22 थी। वियतनाम के फूकोक जजीरे के नजदीक कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी कल रात मुंबई पहुंच गया। मैलुकीन के जसद खाकी को होचिन मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाया गया। इस अमल को वियतनाम में मौजूद भारत के सिफारती मिशन ने वियतनाम के हुक्काम के साथ मिलकर मुकम्मल किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की रियासती हुकूमतों से कहा गया है कि वो महलुकीन के अहले खाना के साथ राब्ते में रहें और जसद खाकी को उनके आबाई शहरों तक पहुंचाने के इंतजाम में ताउन फराहम करें। वियतनाम में भारतीय सिफारत खाने ने इमदादी कार्रवाई, लाशों की शिनाख्त और उन्हें वतन वापस भेजने के अमल में ताउन के लिए वियतनाम के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 32 भारतीय सयाहों और 4 मकामी अमले के अरकान को ले जाने वाली एक तेज रफ्तार कश्ती जुमे के रोज फूकोक जजीरे के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में 15 भारतीय सयाह हलाक हो गए। इस हादसे में बच जाने वाले 16 अफराद भारत वापस आ चुके हैं, जबकि एक जख्मी सयाह अब भी वियतनाम के एक अस्पताल में जेरे इलाज है।

0: के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा हम लेकर आएंगे बस छोटे से अंतराल के पार।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें
5: 0542227658,
6: 0542227658।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: सदाबहार फिल्मी गानों के कार्यक्रम मधुरिमा में आपका स्वागत है। पहला गाना किशोर कुमार की आवाज़ में शर्मीली फिल्म से हमने लिया है। गीत रचना नीरज की, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

ये अंदाज़ था किशोर कुमार का, फिल्म थी शर्मीली, नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था। अब आइए सुने महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल आनंद बख्शी के, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ही संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, फिल्म का नाम है दोस्ती।

0: अब कार्यक्रम मधुरिमा में एक छोटा सा अंतराल।
1: या चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़।

0: DTH, DRM, News on AIR ऐप और वेव्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
1: अंतराल हुआ पूरा सदाबहार फिल्मी गानों के कार्यक्रम मधुरिमा में एक बार आपका पुनः स्वागत। अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साहिर लुधियानवी का लिखा गाना। धुन तैयार की है मदन मोहन ने, फिल्म का नाम है गज़ल।

अब आइए सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाज़ों में इंदिवर का लिखा गाना। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

0: மதுரிமா, த சவுண்ட் ஆஃப் மெலோடி. மதுரிமா
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:15 होने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जौनपुर और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का।
1: मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत जौनपुर के करीब 27,000 शिक्षकों और शिक्षक विभाग से जुड़े कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना के दायरे में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयां शामिल हैं। अब तक जिले में 8,000 स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान लाभार्थियों को प्रतीकात्मक कार्ड वितरित किए गए। साथ साथ दीनदयाल हस्तकला शुक्ल वाराणसी में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्टर सभागार में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की शिक्षा जगत से जुड़े प्रत्येक कर्मियों के हित के लगातार कार्य करें। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना से शिक्षक और कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जिससे निश्चित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
2: शिक्षक राजेश पांडे ने कहा,
3: यह योजना शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा और इसी अपेक्षा के साथ सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का सभी शिक्षक स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
1: जौनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षिक सत्र 2026-27 के तहत स्कूल चलो अभियान एवं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एक विशाल जनपद स्तरीय जागरूकता रैली निकाली गई। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराना, शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करना। टाउन हॉल मैदान नगरपालिका परिसर से शुरू हुई इस रैली के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समीर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिन बच्चों के नामांकन और उनकी शिक्षा को संवारने के गुरुजनों की भूमिका सर्वोपरि होती। उन्होंने बताया कि विद्यालय चलो अभियान के प्रथम और द्वितीय चरण में मिलाकर जनपद में अब तक कुल 60,000 नए विद्यार्थियों का नामांकन किया जा चुका है। 15 जुलाई तक इस संख्या को वृद्धि होने की संभावना। सरकार का संकल्प और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। जिले के मुगरा बादशाहपुर डिपो से जुड़े यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। करीब 38 वर्ष पुराने इस डिपो को अब तक पूरी तरह से कायाकल्प होगा। शासन ने डिपो को पुनर्निर्माण एवं आधुनिक के लिए 53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। बरसात समाप्त होते निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वर्ष 1988 में निर्मित मुगरा बादशाहपुर रोडवेज डिपो का भवन अब जर्जर एवं खंडर में तब्दील हो चुका है। यहां से प्रतिदिन जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, लखनऊ के लिए 200 से अधिक बसों का संचालन होता है। इन बसों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 50,000 यात्री सफर करते हैं। शशि शुक्ला डिपो इंचार्ज मुगरा बादशाहपुर ने बताया कि डिपो का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके तहत शासन की ओर से 53 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। बारिश खत्म होते निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। डिपो का आधुनिकरण सुविधा से लैस किया जाएगा। कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। जौनपुर जिले के निवड़िया थाना क्षेत्र के गोपालापुर में 33/11 केवी क्षमता विद्युत उपकरण का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना के लिए कुल 7,92,00,000 रुपए की स्वीकृति शासन की ओर से प्रदान की गई। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि निगम के कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग 5 से 6 माह के काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। नए उपकेंद्र के निर्माण में 35 गाँव से 8,000 से अधिक उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। वर्तमान में गोपालापुर और आसपास के क्षेत्रों में निवड़िया तथा रामपुर पावर हाउस से बिजली आपूर्ति की जाती है। इन उपकेंद्रों पर लोड अधिक होने के कारण से उपभोक्ताओं को बिजली ट्रिपिंग और जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए अपना दल से मड़ियाहो विधायक डॉक्टर आर के पटेल ने उपकेंद्र का निर्माण का प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा था। इसमें अब स्वीकृति मिल गई। निवड़िया गोपालापुर उपकेंद्र निर्माण के लिए भूमि भी चिन्हित कर ली गई है। जौनपुर कलेक्टर सभागार में डीएम सेमुअल पाल की अध्यक्षता में पौधारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। इसमें वृद्ध स्तर पर पौधारोपण अभियान की रूपरेखा की तैयारी पर गहन चर्चा की गई। इस वर्ष जनपद में कुल 60,73,400 पौधे लगाने का विशाल लक्ष्य आवंटित किया गया है। इस महाअभियान की सफलता के लिए डीएम भागावार निर्धारित लक्ष्यों का पौधारोपण स्थलों, पौधों की उपलब्धता, गड्ढों की खुदाई, पौधों के उठान, जियो टैगिंग तथा उनके संरक्षण संबंधित व्यवस्थाओं को विस्तृत समीक्षा की। जौनपुर के रोहित यादव ने 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियन में 87.5 मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। 14 साल की उम्र में बांस के डंडे से अभ्यास करने वाले जिले के गांव के अधारी डबिया के रोहित यादव ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम के आयोजित 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियन के अंतिम दिन 87.5 मीटर भाला फेंककर हासिल की। रोहित ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पीछा छोड़ा। इस क्रम के साथ 20वें एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालिफाई भी दिया।
0: जौनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
4: हरदोई में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। योजना के तहत राजकीय एडेड माध्यमिक विद्यालयों और परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब अपने पास से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, उन्हें सीधे पैनल

0: में शामिल अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने डीबीटी योजना पर भी प्रकाश डाला, कहा कि इस योजना के माध्यम से बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबों और अन्य व्यवस्थाओं के लिए धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने हरदोई में स्वर्गीय ठाकुर धर्मराज सिंह सोमवंशी की प्रतिमा अनावरण एवं अपना घर वृद्धावस्था आश्रम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हरदोई में जनसामान्य को संचारी रोगों से बचाने और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हरदोई के 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती पी के वर्मा ने अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम करना है, मरीजों की पहचान करना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती पी के वर्मा ने स्वास्थ्य कर्मियों से इस अभियान को जन सहभागिता के साथ सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, संचारी रोगों की रोकथाम केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन जागरूकता, साफ सफाई और सामूहिक सहभागिता से ही संभव है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखें और स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भवनाथ पांडे, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद सचान, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल शुक्ला, नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर प्रदीप गौतम, डॉक्टर सीबी सिंह और डॉक्टर सुजीत सिंह सहित वरिष्ठ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। हरदोई की आवास विकास कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी मुख्य अतिथि रहीं। भाजपा व क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सहभागिता की। जिला महामंत्री ओम वर्मा ने सम्मेलन का संचालन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया गया। राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और जनसेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करने का आह्वान किया। क्षेत्रीय मंत्री मणिन्द्र पांडे ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा समाज के सभी वर्गों से संवाद बढ़ाने का आह्वान किया। पांडे ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही। हरदोई में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चला रहा है। परिवहन विभाग शासन के निर्देशों पर यह प्रदेशव्यापी अभियान संचालित करेगा, जिसमें प्रशासन और प्रवर्तन शाखाएं संयुक्त रूप से व्यापक जांच करेंगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एआरटीओ अरविंद कुमार सिंह ने सभी स्कूली वाहनों के स्वामियों से अपील की है कि जिन वाहनों की फिटनेस परमिट, बीमा या प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है, उनका तत्काल नवीनीकरण करा लिया जाए। ऐसा न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्र छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्हें अनफिट या दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुके वाहनों का संचालन स्कूल में न होने दें और इस बात का खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही वाहन स्वामियों को सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर नवीनीकृत कराने के निर्देश देने को भी कहा गया, ताकि किसी भी दुर्घटना या असुविधा से बचा जा सके। परिवहन विभाग 8 जुलाई से 15 जुलाई तक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त रूप से विशेष प्रवर्तन अभियान चला रहा है। इस अवधि में बिना फिटनेस, बिना परमिट, बिना बीमा, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ चालान सीज करने और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत पिछले 5 महीनों में 167 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन फोनों की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर चलाए गए इस रिकवरी अभियान में सर्विलांस सेल और CIR यानी कि सीर पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से इन गुमशुदा मोबाइलों का पता लगाया और उन्हें बरामद किया। इस अभियान को सफल बनाने में जनपद की सर्विलांस टीम की तकनीकी दक्षता और कड़ी मेहनत शामिल रही। टीम का नेतृत्व सर्विलांस प्रभारी अब्दुल जब्बार ने किया। इसमें मुख्य रूप से हेड कांस्टेबल आकाश कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर राजकुमार वर्मा, कांस्टेबल ओमवीर सिंह, कांस्टेबल नितिन कुमार गुप्ता और कांस्टेबल यादवेंद्र सिंह शामिल थे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जौनपुर व हरदोई जिले की हलचल।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:25 और 27 सेकंड्स हुए हैं। आइए सूचना दे दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ये पहली सूचना आई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है तनु पांडे। इनके पिता का नाम है सुनील कुमार पांडे। ये निवासिनी है ग्राम पचोखर थाना बबुरी जिला चंदौली के। ये पिछले 4 जून 2026 सुबह 5 बजे के करीब से लापता हैं। तनु पांडे के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 24 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। तनु पांडे को आखिरी बार देखे जाते समय ये सलवार सफ़ेद और समीज पहने हुए थी। तनु पांडे के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त एक और सूचना के अनुसार ये हैं रानी देवी। इनके पति का नाम है संजय राय। ये निवासिनी हैं ग्राम तेंदुई थाना सकलडीहा जनपद चंदौली की। ये पिछले 24 जून 2026 से लापता हैं। रानी देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 35 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। ये लापता होने के समय लंबा ये साड़ी पहने हुए हैं। रानी देवी के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें।

यहीं से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार यह निकिता सिंह, इनके पति का नाम है राजा सिंह, यह निवासिनी हैं ग्राम महेशी थाना सकलडीहा जनपद चंदौली की। यह पिछले 7 जून 2026 सुबह 10 बजे से लापता हैं। निकिता सिंह के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 26 वर्ष, लंबाई सामान्य, चेहरा गोल, ये लापता होने के समय साड़ी पहने हुए हैं। निकिता सिंह के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही एक और सूचना आई है। ये हैं सोनम, इनके पति का नाम है राम भरोस, ये निवासिनी हैं ग्राम भीखमपुर थाना चकिया जनपद चंदौली की। ये पिछले 21 जून 2026 दिन 1 बजे से लापता हैं। सोनम के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 26 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गंदुम है, ये लापता होने के समय साड़ी पहने हुए हैं। सोनम के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। इसी के साथ ही खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त हुई। 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: हाजिर हैं लेके अपना सलामे खुलूस हम, हाजिर हैं लेके अपना सलामे खुलूस हम, फिर से सजाई महफिल फिर आ गए हैं हम। आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से फरीदुल्ला खान का आदाब कबूल हो। आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। सामीन, उर्दू अदब बेशबहा सरमाया है। इसमें नज्म हो या नसर, ड्रामा हो, रिसाइल हो, फिक्शन हो या फिर अफसाना वगैरह। इसमें अगर हम अफसाने की बात करें तो इसको खूब सराहा जाता रहा है। इसको लिखने, पढ़ने और सुनने वालों की कभी कमी नहीं रही। अफसाना निगार अपने गिर्दोपेश होने वाले वाकयात, अच्छाई बुराई, तालीम व तरबियत वगैरह को अपने अफसाने में पेश करता है। यूं तो अफसाना वही था और वही उन्वान था। यूं तो अफसाना वही था और वही उन्वान था, हर दफा जुल्फी कोई उन्वा नया रखा गया। तो आइए, आज आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं ये अफसाना कफन। इस अफसाने के खालिक हैं डॉक्टर अथर मसूद खान। समाअत कीजिए ये अफसाना।
1: फिर तूफानी रात गुजर गई। अगली सुबह मैदान में एक मजमा लगा देखा गया। लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो गए थे और अपने कामों की फिक्र में इधर उधर फैलने लगे थे। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बाजार, हर तरफ लोग जा रहे थे। सड़कों पर भीड़ में लम्हा बलम्हा इजाफा हो रहा था और गोल मार्केट के पास वाले खाली पड़े मैदान में जो मजमा लगा था उसमें भी लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। मजमे के बीच में कदरे खुरदुरी ज़मीन पर एक जनाजा रखा हुआ था जिस पर एक मैली कुचैली चादर पड़ी थी। पास ही दो नौम्र लड़के बिलक बिलक कर रो रहे थे। लोगों की बढ़ती भीड़ में से कई लोग उन लड़कों से इसरार कर रहे थे कि आखिर ये तो बताओ कि तुम कौन हो और ये मैयत किसकी है और तुम यहाँ क्यों आए। दोनों नौम्र लड़के रोते और बयान करते जाते कि ये उनकी माँ की लाश है जो तूफानी रात में अचानक हार्ट अटैक से मर गई है। उनमें से एक लाश पर से भिनकती मक्खियाँ उड़ा रहा था और दूसरा लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हुए उनसे मदद की इल्तिजा कर रहा था। लोग मदारी के तमाशे की सूरत में एक बड़ा सा घेरा बनाए खड़े थे। भीड़ में से एक ने हिम्मत करके शुरुआत की तो लाश पर एक एक करके बहुत से सिक्के गिरने लगे। कुछ लोग 100-50 के नोट भी मिस्कीन और मजबूर नज़र आने वाले उन लड़कों के हाथ में थमाने लगे कि जल्द अज जल्द इस लाश के कफन दफन या क्रियाकर्म का इंतज़ाम करो। दान पुण्य और सदका खैरात करने वालों को इस लाश के मज़हब से कोई सरोकार न था। अगरचे इंसान के मरने के बाद भी मजहबी रसूम के ज़रिए उसकी शिनाख्त बाकी रखी जाती है। मक्खियाँ उड़ाने वाला लड़का अपने आंसू पोंछ चुका था और रोने सूरत बनाए अब वो भी लाश पर और लाश के आसपास पड़े सिक्के उठाने और जेबों में भरने में मसरूफ़ हो चुका था। आखिर मामला माँ का था और माँ को वो जितना भी अच्छा कफन देते कम था। उनके बहते गर्म गर्म आंसुओं के साथ लोगों की हमदर्दी में भी इजाफा होता जा रहा था। अब वो लड़के लोगों में पूरी तरह घुल मिल गए थे और उनसे बराबर अपील कर रहे थे कि जैसे भी हो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें ताकि हम अपनी माँ का जनाजा अच्छी तरह और सारे रसूम के साथ उठा सकें। भीड़ में नए लोगों के आने के साथ साथ उन लोगों के जाने का अमल भी जारी था जो देर से यहाँ खड़े थे। माँ की ममता और उसके जनाजे के बारे में सोचकर अपनी हैसियत के मुताबिक उन लड़कों की मदद कर चुके थे। इस तरह उन लड़कों के पास अंदाजन कई हज़ार रुपये जमा हो गए। कुछ लोग आगे बढ़कर लाश का चेहरा देखने के भी ख्वाहिशमंद थे लेकिन ऐसी कोशिश करने पर वहाँ खड़े बहुत से लोगों की तनकीद का निशाना बन गए कि गैर औरत और वो भी मरी हुई औरत का चेहरा देखना किस तरह जायज़ है। और फिर वो तो माँ थी और वो माँ अब उन दो लड़कों की माँ न रहकर मजमे में शामिल कम से कम उन लोगों के दर्द कर्ब के

0: इसमें एक मोटी रकम मौजूद थी, जेब में से गायब थी। तो क्या किसी ने, फिर तो दूसरे तीसरे और वहाँ खड़े सभी लोगों ने अपनी अपनी जेबों को टटोला, लेकिन उनकी जेबें बड़ी बेदर्दी से उनका मुंह चुरा रही थी। उनकी जेबें दोनों लड़के जो मजमे में घुसे बिलक बिलक कर रोते हुए अपनी माँ की लाश के लिए चंदा जमा कर रहे थे, साफ कर चुके थे। लाश मसनूई लाश मगर धड़की लाश अब भी बेगोर कफन पड़ी थी और अपने साथ कई और लोगों को भी बराना कर गई थी, बरना भी और कंगाल भी। वो दोनों लड़के अगले तूफान की तलाश में कभी के गायब हो चुके थे।
1: कफन, अभी आप ये अफसाना समाप्त कर रहे थे। अफसाना निगार थे डॉक्टर अथर मसूद खान। आइए इस अदब की एक और बहुत खूबसूरत सिंफ शायरी की बात करते हैं। इसमें गज़ल, जिसको हर दौर में पसंद किया जाता रहा है। गज़ल के दिलरुबा लहजे में बोलूं, गज़ल के दिलरुबा लहजे में बोलूं, वो आ जाएं तो मैं फूलों में तोलूं। गज़ल को मुख्तलिफ गुलुकारों ने अपनी दिलकश आवाज़ें दी हैं। तलत अज़ीज़, आशा भोसले, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, ग़ुलाम अली, मुन्नी बेगम वगैरह। और सामिन, इन गुलुकारों ने अपनी गज़लों और नज़मों में क्या खूबसूरत नज़ारा किया है। अब देखें, बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश शुरू हो चुकी है। जुलाई आती है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अब ये बारिश जो है वो पड़ना शुरू हुई है और ये मौसम जो है खुशगवार हुआ है। अभी हमने बहुत चिलचिलाती गर्मी, चिलचिलाती धूप, गर्मी सही, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये मौसम बनाए हैं, हर मौसम अपने अंदर कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई खसूसियत लिए हुए है। इस नेमत से हम सब फ़ायदे उठाते हैं और फवाइद हासिल करते हैं। आइए समात करते हैं मुन्नी बेगम की खूबसूरत आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल।

0: अभी आप मुन्नी बेगम की दिलकश आवाज में समात कर रहे थे ये खूबसूरत गजल। और सामीन देखें, वक्त रुकता नहीं, वक्त चलता रहता है, रफ्तार जिंदगी की मुसलसल है साथियों, रफ्तार जिंदगी की मुसलसल है साथियों, मिलते हैं लोग सिर्फ बिछड़ने के वास्ते। और अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।
1: अभी सामाईन समात फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम, ये
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह के 9:50 हुए हैं। लोक संगीत हम लेकर आएंगे इस छोटे से अंतराल के पार।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी, अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वहीं हमारा साथ।
5: सुन जा ठंडी हवा।
0: ये आकाशवाणी वाराणसी है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं डॉक्टर ज्योति सिन्हा। आइए सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में ये देवी गीत।

तब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। सबसे पहले आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में समीर का लिखा गाना। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है रंग।

क्षमा करेंगे, ये फिल्म का नाम दिल परदेसी हो गया। सोनू और अलका याग्निक की आवाज़ें, सावन कुमार के बोल, उषा खन्ना का संगीत।

अब आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया का ये गाना।

आप सुन रहे थे आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में जान तेरे नाम फिल्म का गाना। रानी मलिक की रचना थी, नदीम श्रवण का संगीत था। अब आइए सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया का ये गाना।

0: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोकगीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
1: हम गवन मना ही
2: कार्यक्रम झनकार में एक बार आपका पुनः स्वागत। अब आइए सुनते हैं जमाना दीवाना फिल्म का गाना, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत।

प्यार झुकता नहीं, आइए सुने इस फिल्म का गाना। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, एस एच बिहारी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया, समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संगीतबद्ध, कसूर फिल्म का ये गाना। और यही है कार्यक्रम झनकार की आखिरी पेशकश।

कसूर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त तो होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम, वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है और ये बात आप जानते हैं। एक ही स्थान के कुछ एक श्रोताओं के ही नाम लिखें, एक संदेश में कई स्थान के श्रोताओं के नाम रहेंगे तो अलग अलग आपको संदेश भेजना होगा, यानी एक नाम जब शामिल हो जाए तब दोबारा हमें आप संदेश भेजें या फिर दूसरे नंबरों से भेजें। फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद ही अपनी फरमाइशें भेजें। फरमाइश में सबसे पहले फिल्म का नाम जरूर लिखें। आज की फिल्में हैं चश्मे बद्दूर, स्वयंवर, थोड़ी सी बेवफाई, मासूम, आपके दीवाने और जानी दुश्मन। चश्मे बद्दूर, स्वयंवर, थोड़ी सी बेवफाई, मासूम, आपके दीवाने और जानी दुश्मन। सात नौ शून्य पाँच पाँच एक नौ नौ आठ एक यानी 7905519981 ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। व्हाट्सएप के सारे कार्यक्रम जो होते हैं वो सजीव होते हैं, यानी प्रोग्राम तो सभी सजीव होते हैं लेकिन उसमें फरमाइशें आपको उसी वक्त भेजनी होती हैं। इस संदर्भ में ये प्रोग्राम सजीव है। मेल आधारित तमाम प्रोग्राम में आप कभी भी फरमाइशें भेज सकते हैं लेकिन पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में फरमाइशें न भेजें, वहाँ सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें। कल आप हमसे बातें कर सकते हैं सुबह 10:10 से 11 बजे के बीच कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में 0542 ये एसटीडी कोड है वाराणसी का और 2221052 कार्यक्रम का नंबर है। इस नंबर पे कोई दिक्कत आती है तो 2221050 पर भी आप हमें फोन कर सकते हैं। चश्मे बद्दूर, स्वयंवर, थोड़ी सी बेवफाई, मासूम, आपके दीवाने और जानी दुश्मन ये आज की फिल्में हैं और प्रोग्राम का आरंभ कर रहे हैं आपकी फरमाइश के इस गीत के साथ। चश्मे बद्दूर है फिल्म का नाम। यसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाजें, इंदु जैन ने गीत के बोल लिखे हैं, राजकमल का संगीत है।

अजीत कुमार का। हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया और रानी की फरमाइश माँ काली स्थान नौली गाजीपुर से। हमारे श्रोता हैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। नेहरू चौक पैठड़ से हमें सुन रहे हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती और पूजा। ये फरमाइश है मोसी अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, मुश्ताक अंसारी की कोटवा वाराणसी से। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां है, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता। आशीष कुमार महरेओ ने फरमाइश भेजी है जौनपुर से। ये महरेओ गांव का नाम है इनका। सुदर्शन शाह, पलवी शाह, प्रखर और कुशल शाह हैं पद्म टॉकीज नेपानगर से। आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, वसीम खान कस्बा कला शाहजहांपुर के श्रोता। ये फरमाइश आदर्श नगर मलौट पंजाब से आई है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ और सायना शर्मा की। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, कमल सहनी है चोहलदा बागपत से। इसी गीत को सुनना चाह दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद और मिफ्रा नवाज ने। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा है बठेना पाटन दुर्ग से। मोहम्मद ख्वाजा रिजवानुद्दीन, ख्वाजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया हैं वारंगल से। आप हैं हमारे श्रोता सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली के गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये फरमाइश टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और अनिल शर्मा की। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, मुराहू और देवंती जायसवाल। छत्रपति संभाजी नगर से ये संदेश राजेश साबले, पाटिल, राजदीप, राजेश और राशि राजेश का आया हुआ है। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से। आप हैं दतरंगी भाटापारा के हमारे श्रोता हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा। छिंदवाड़ा बेरेडी से नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से और जयलाम से। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। रविंद्र सिंह छावड़ा, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली से आपकी फरमाइश आई। सावतपुर छत्तीसगढ़ से हैं ऋषि सेन, रितेश सेन और कंचन माही सेन। ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। धानोरा विटाली नांदूरा से हमें सुन रहे हैं भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। सुनीता जी हैं सेबेस्टोपोल फ्लैक मॉरिशस से। बिल्कुल आप जुड़ी हुई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम श्रोताओं से कहेंगे कि कल भी आप प्रयास कर सकते हैं कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश के लिए सुबह 10:10 से। तो सुनीता जी को खास शुक्रिया कि आप उतनी दूर से मॉरिशस में हमें सुन रही हैं। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। ये फरमाइश सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया और इब्राहिम की कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। लवई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। बजरडीहा वाराणसी के श्रोता हैं ऐनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी और सलीम आजाद अंसारी। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी की फरमाइश। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुता सुवर्ण आनंद हैं पाकुड़ झारखंड से। मुबारकपुर आजमगढ़ से संदेश जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन का आया हुआ है। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष हमें सुन रहे हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से। गुरजीत सिंह है नगर पंचायत बिलसांडा पीलीभीत उत्तर प्रदेश के श्रोता। अब प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है स्वयंवर, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें।

चश्मे बद्दूर फिल्म का युगल गीत अभी आप सुन रहे थे के जे यसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाजों में। इस गाने के लिए फरमाइशें आप सबकी आई हैं।

गीत के बोल लिखे हैं राजेश रोशन का संगीत है। आपको बता दें फिल्में बाकी हैं थोड़ी सी बेवफाई, मासूम, आपके दीवाने और जानी दुश्मन। 7905519981 पर आप हमें फरमाइशें भेज सकते हैं, वक्त रहते यानी 11:30 तक भेज दें ताकि आपका नाम प्रोग्राम में जरूर शामिल हो जाए।

स्वयंवर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। फरमाइशें आप सबकी आई हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से संदेश भेजा है राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना, मुन्नी कुमारी, चांदनी और नंदिनी कुमारी ने। ईदगाह रामनगर से सोनू अंसारी और लंबे बाबू खान, सुभाष योगी, राजू मिगलानी और डब्बू बब्बू की फरमाइश कृष्णा कॉलोनी हासी से। लचनपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निमी शिवम और सतीश। रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष और मयंक साहू की फरमाइश।

फरासी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर और ज्योति ठाकुर ने फरमाइश अपनी भेजी चरोदावार नवापारा बलौदा बाजार से। तेलंगाना निजामाबाद के श्रोता हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख। कुमान सिंह पटेल, तेजेश्वनी एकांश पटेल हैं मोहरेंगा राजिम छत्तीसगढ़ से। रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान हमें सुन रहे हैं फूलेनगर अंबिवली मुंबई महाराष्ट्र से। शादुल शाह राजस्थान से फरमाइश रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ की। राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि और अनुराग दीप हैं, साथ में भगेलू यादव और राम समुजी यादव वलीदपुर मढ़हा मऊ से। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। मुबारकपुर उची तकी आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातमा। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा की फरमाइश टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। कुर्मा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हैं दिलदार मीरी, ज्योति जाह्नवी और दीक्षांत मीरी। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनकी माता जी हैं राज मुनिया, गांव नारी पचदेवरा गाजीपुर से। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ये फरमाइश ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। ग्राम चकपुटी असनाव बाजार भदोही के श्रोता हैं गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव। बेरडी से अर्जुन गावनेकर, धीरज सव्याश्री और चंचल ढोमने। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। जवाहर नगर दुर से ये फरमाइश आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े की। जितेंद्र परभणी महाराष्ट्र से हैं रूपेश संघई, महेश संघई और प्रज्ञेश संघई। नलगोंडा तेलंगाना के श्रोता हैं मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस और मुरीनू निशा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल और प्रिया। अंकुर सहाय ने फरमाइश भेजी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। मालियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन। तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत कौर। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं इस गीत के साथ, बहुत सारे श्रोताओं ने इसे सुनना चाहा है। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई। आशा भोसले की आवाज, नक्श लालपुरी के बोल और खयाम का संगीत।

जी हाँ, बारिश के मौसम की मंजर कशी करता हुआ ये गीत आशा भोसले की आवाज़ फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से। फरमाइशें आप सबकी आई हैं। शिवाजी चौक बोराला खुर्द से हैं आदिनाथ वाघ पाटिल, अमोल वाघ, गुड़िया कृष्णाली और अशोक देशमुख। ये एक हमारे श्रोता हैं वीरम गांव गुजरात से, अजीत भावसार और प्रमिला भावसार। और आपने 56 दफे, पूरे 56 बार आपने संदेश भेजा है, तो ये एक बार ही संदेश भेजें। और जैसे आपने इसमें फिल्म का नाम महुआ लिखा है और आप कह रहे हैं कि हमें सुन रहे हैं, तो आज की फिल्मों में महुआ फिल्म तो है ही नहीं, तो उन श्रोताओं को हम लोग तरजीह देते हैं जो प्रोग्राम हमें सुन रहे हैं और वास्तविक फरमाइशें सही नाम के साथ हमें भेजते हैं। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी और गायत्री ढोमने की फरमाइश। नाजनी तबस्सुम, अफजल इब्राहिम और मोहम्मद इफ्तखार इब्राहिम हमें सुन रहे हैं बरका खाना से। सहावर रोड गंज डुडवारा से है मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम राही और शमसुल कमर राही। मुरादाबाद दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू और सुरेश की फरमाइश आई है। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और उनके परिवार के बाकी सदस्य। कोल सिटी बरका खाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और निप्पी साहनी। नांदेड़ महाराष्ट्र के श्रोता हैं नारायण गायकवाड, दयानंद गायकवाड और ओमकार गायकवाड। दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा है चौटाला हरियाणा से। चनौरा फिरोजाबाद के श्रोता हैं बरवानी लाल कुशवाह, मंजुलता कुशवाह, राम और श्याम। सुल्तानपुर से यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह की फरमाइश। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल।

अजीत कसाना माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना है लदावली मुरादाबाद से। मंडी कला वाली से हैं रवि कौशिक, रमेश कोठारी और ये फरमाइश है बन बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और समर्थ नामदेव की। गांधी चौक बाड़मेर से हैं बबलेश पवार और डैनी पवार। चक दाऊद सिखड़ी गाजीपुर से साहेब चौहान, रीमा चौहान, वैष्णवी चौहान, वैभव और अयांश चौहान। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल हैं लगान पंडेरिया छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता। मुकेश शर्मा और गौरव शर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से। खारिया ढाणी सिरसा हरियाणा से हैं सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक और योगेश। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े और विजया तायड़े। ये फरमाइश अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा और आयुषी वर्मा की। आपने भी 13 दफे संदेश भेजा है। एक बार जब आप संदेश भेज दें किसी भी फिल्म के लिए शुरुआत में तो फिर इंतजार करें। सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से, अनिश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से आपका संदेश आया है। निम्नाबाद जिंद हरियाणा से है जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह और लवप्रीत कौर। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली के श्रोता है तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। आज का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं फरमाइश गीत एक्सप्रेस अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। वक्त 11:33 का। ये गीत मासूम फिल्म से है, भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

मासूम फिल्म का गीत भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर की आवाजों में। फरमाइशें आई आप सबकी। जमशेदपुर झारखंड से हैं, सुपाही शाही गांव का नाम है। देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी और दीपाली कुमारी। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हमें सुन रहे हैं मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। ये फरमाइश है लाल माता सुदामा नगर रटलाई झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी की। साथ में हैं मन भावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदी बाई बागरी। तहसील रोड गंज डुंडवारा से हमें सुन रहे हैं के एच रही, गुड़िया बेगम और वकील, साथ में हम्माद जमील। गांव हांडीखेड़ा सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। संबलपुर कांकेर से ये फरमाइश भागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव की आई हुई है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता। पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन की फरमाइश कुंभार कली कोलगांव से। आर अश्विन, शानू, शोभनाथ अवस्थी और उनके मित्र शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से हमें सुन रहे हैं। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, ऐजाद कुरैशी और अरीबा हबीबा की फरमाइश पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आई हुई है। कटरा मुबारकपुर से हैं जावेद अख्तर अंसारी, निकत परवीन और नुसरत परवीन। विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी और सुशीलपुरी, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से। भाटापारा छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं एमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। शाहदरा दिल्ली से वीणा मस्किन, तुलसी मस्किन, आपका नाम पहले शामिल हुआ है और जो दूसरी जगह के नाम रहे दोबारा में वहां के नाम भेजा करें। पुरानी भिलाई 3 चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी और निखिल वर्मा हैं छत्तीसगढ़ पलारी के श्रोता। तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, प्रणीता गायकवाड़ और अनामिका गायकवाड़। लसुड़िया पाता नरसिंहगढ़ राजगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी और कृतिका। विनय मोहन, मीनाक्षी और डॉक्टर ईशानी की फरमाइश यमुनानगर हरियाणा से आई है।

दिग्दर्शन और कविता गौण है मेरठ कैंट के हमारे श्रोता। गन गोला दातागंज बदायूं से इशरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम और शाहबाज खान। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। ये संदेश है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे और नंदा बोड़खे का। विजय सिंह हैं दिल्ली के हमारे श्रोता। अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि और ओशिका धमदा ग्राम सुखरी कला से आप हमें सुन रहे हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और कपिल मेहरा।

और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है आपके दीवाने। किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

आपके दीवाने फिल्म का ये गीत आप तक पहुंच रहा था और फरमाइश हमें भेजी पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह ने, और आप हैं महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी।

जानी दुश्मन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं पढ़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज दो से अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता गौंड। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया, वैशाली शैलेश गौहाड़कर और सुमित गौहाड़कर की फरमाइश आकार हाइट्स नागपुर से आई है। देवनारायण साहू और योगिता की फरमाइश बालोद छत्तीसगढ़ से। महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब ने हमें

देश भेजा है रामगढ़ कैंट से, गोविंदपुरा सीकर से हैं दातार सिंह शेखावत और संगीता कंवर, शमसुल कुमार राही और शाहीन फातिमा की फरमाइश गंज डुंडवारा से, भागवत वर्मा शांति देवी दत्रेगी के श्रोता हैं, ये फरमाइश है कमल साहनी और पिंकी साहनी की नागपुर महाराष्ट्र से, बड़ा बम चौक खंडवा से हैं संजीत और संजय मारकंडेय, जबलपुर से अशोक सिंह और सुनीता सिंह, अंकित सिंह और संकल्प, गोला बाजार बक्सर के श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग, राहुल पाल हरिमोहन पाल हैं दतिया मध्य प्रदेश से, तिरुपति नगर नांदूरा के श्रोता जिनका संदेश आया संतोष वसाने और उषा वसाने, ये फरमाइश है जगदीश धाकड़ नायमा और रंजूबाई धाकड़ की, साथ में युवराज सिंह धाकड़ हिंगड़ी आलोट रतलाम से, जॉन डिकेस्टो रोजी डिकेस्टो पर्ल और विलिस डिकेस्टो हमें सुन रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र के श्रोता नासिर शेख नाजिया नासिर और साजिद नाहिद, रवि हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से, अशोक वर्मा अर्चना वर्मा का नाम तीसरी बार शामिल हो रहा है खरगोन सनावत से, छोटी बलिया मुंबई करजत के श्रोता हैं भाई अहमद बागबान दुखना सदफ और जूही इकबाल, जयराम सिंगड़कर दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता पोफाली यवतमाल से, भागवत देठे पाटिल और लक्ष्मी देठे पाटिल हैं धामड़गांव बुल्ढाना के श्रोता, बाबा साहेब वाड़ोदे मीनाक्षी और रजनी की फरमाइश वरुण महाराष्ट्र से, गोलघर कुवास से बिलाल बम्बैया, उस्मान खत्री रिजवान खत्री और अब्दुल गफ्फार खत्री गुगावा खरगोन से आपकी फरमाइश आई है, आनंद प्रसाद श्रीवास्तव हैं हमें सुन रहे हैं आईएमएस बीएचयू वाराणसी से, शुक्रिया आपका, कमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा से आफ्ताब अंसारी रियाज अंसारी और मोहम्मद कैफ, मस्जिद मोहल्ला मगनपुर से हैं बेनजीर और बेबी, दिनारा से पुरुषोत्तम कुमार प्रभात कुमार और सौरभ कुमार, मोहम्मद सादिक और मुश्ताक अहमद की फरमाइश सनावत से आई है, मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम और अमजद अली, भुज कच्छ गुजरात से ये फरमाइश रसिक दर्जी और अशोक दर्जी की है, बदरुद्दीन अंसारी अनवर अली अंसारी मुश्ताक सुलेमानी सलीम आजाद मल्लू अंसारी हैं अहमदनगर बजटिया वाराणसी से, कोटवा कपिल धरा सराय मोहना वाराणसी से रतिना त्रिपाठी राखी आर्या एन्द्री ओमनाथ सारंग शिवांग अदिति और उनकी माताजी निर्मला त्रिपाठी, जयराम बिन सीतामुनि देवी लालसा कुमारी और काजल कुमारी की फरमाइश चौसा गोला बक्सर से, आनंद जोशी और तनुजा जोशी हैं प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से, नर्मदा पार्क से अलीम पटेल और मुजाहिद पटेल, मुंदीचक भागलपुर बिहार के श्रोता हैं दिलीप कुमार सोनी, रामचंद मखीजा और सविता मखीजा की फरमाइश धमतरी से आई हुई है, मोहम्मद फरमान सलमान इरफान दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं, गंगाधर पोपलवाड़ और प्रियंका उमरखेड़ महाराष्ट्र से, सुनील यादव शिवकुमार यादव तनिष्का यादव नौबत यादव पीपल नीम चौक अमोड़ा केशकाल के श्रोता हैं, तो श्रोताओं ये थी आज की फरमाइशें और आपकी पसंद के गीत और आपके नाम। अब आज का प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए, नमस्कार कल आप हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में हमसे बातें कर सकते हैं सुबह 10:10 से 2221052 और फिर 2221050 दोनों ही नंबरों पर प्रयास करें, उम्मीद है आपसे बातचीत होगी और अब शुभकामनाएं आपको बहुत सी। अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थीं?
2: बिल्कुल होती थीं। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
2: जी,
3: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
2: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
2: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।

0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज

0: उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
1: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
2: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
1: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
2: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: मैंने भी देखा है।
1: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
1: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
4: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
1: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
4: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
4: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
4: बिल्कुल ठीक। अरावली पर

0: पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
1: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है।
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
2: हाँ, जी मैम।
3: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह।
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
6: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर, और मुनि

0: शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
0: जंगल के साथी।
2: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
3: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
1: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
0: दादी माँ एक हिरन।
1: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
0: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
1: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।

घूमते घूमते थके जोश के पांव एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब

0: तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश। एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू।

0: फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम दत्ता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए
8: 0542227658।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं पंडित सीताराम सिंह। पहले आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में गोस्वामी तुलसीदास की रचना।

0: विद्यापति की रचना अभी आप सुन रहे थे पंडित सीताराम सिंह के स्वर में। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त तो होता है, फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।
1: सुन जा आ ठंडी हवा।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है अतुल शंकर का बांसुरी वादन, राग है वृंदावनी सारंग, तबले पर संगति की है सागर गुजराती ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अतुल शंकर का बांसुरी वादन, राग था वृंदावनी सारंग, तबले पर संगति की सागर गुजराती ने। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, 1 बजने को है अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आया। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया।

0: नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली के एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के तीन पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोक वोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जर्दम भूमध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सस के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार जयंती देवी, पति का नाम राजकुमार बिंद, ये शिवपुरवा गांधी चौतरा महमूरगंज सिगरा वाराणसी की निवासी हैं और 16 मई 2026 की सुबह 9 बजे से अपने घर से लापता हैं। जयंती देवी की आयु है 27 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था लाल रंग की साड़ी। इनके साथ एक इनकी पुत्री है जिसकी आयु है 7 वर्ष। इन दोनों के बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचना दें। सहायक पुलिस आयुक्त तो भेलूपुर वाराणसी से प्राप्त एक सूचना के अनुसार अमरनाथ सिंह, पिता का नाम श्याम नारायण सिंह, ये सरायनंदन खोजवा भेलूपुर वाराणसी के निवासी हैं और 7 मई 2026 से सरायनंदन खोजवा से ही लापता हैं। अमरनाथ सिंह की आयु है 60 वर्ष, कद 172 सेंटीमीटर, रंग सांवला, चेहरा लंबा है, इनके बाल लंबे और घुंघराले हैं। इनका बायां हाथ मुड़ा हुआ है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था नीले रंग की हाफ टी शर्ट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर वाराणसी को सूचना दें। सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया वाराणसी से प्राप्त सूचना के मुताबिक अंकित कुमार मिश्रा, पिता का नाम दिनेश कुमार मिश्रा, ये भरथरा लोहता वाराणसी के निवासी हैं और 4 मई 2026 से भरथरा लोहता से ही लापता हैं। अंकित कुमार मिश्रा की आयु है 30 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ, शरीर औसत, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था पैंट शर्ट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो

सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन आप सुनेंगे। खेल दर्पण कार्यक्रम रात में 10 बजे लखनऊ केंद्र से रिले

में 10 बजे लखनऊ केंद्र से रिले होगा। अंजुमन कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत और गजलें आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम का प्रसारण समय है रात्रि 8 बजे का। इसमें आज कलाकार होंगे ए हरिहरन, इनकी गाई गजलें आप सुन सकते हैं। कृष्णगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आज बातचीत का विषय होगा केले की खेती। डॉक्टर सुधाकर सिंह से बातचीत की है दिनेश कुमार सिंह ने। इसी कार्यक्रम में लोकगीत की कलाकार होंगी ज्योति सिन्हा। डॉक्टर ज्योति सिन्हा के गाए कुछ लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात क्या आप जानते हैं। यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे आज बांग्ला गीत सुनवाए जाएंगे, कलाकार होंगे संजीत मंडल। सुहाने तराने कार्यक्रम होगा 2:30 पर, प्रस्तुति स्नेहा सिंह की। अंगनैया कार्यक्रम में 1:15 पर आप सुनेंगे डॉक्टर बागीशा सुमन से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत, कामकाजी महिलाएं और उनकी चुनौतियां, साथ ही चर्चा और गीत संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता वानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह से पहले तीनों लीडरों ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का मुआयना किया। इसके बाद वो एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ वापस आए और सैनिक स्कूल में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर तकरीबन 4,850 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का आगाज किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह, लखनऊ हरदोई हाईवे के एक हिस्से को फोर लेन करना और लखनऊ में फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखना शामिल था। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे रियासत के राबते को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगा।
1: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और आज हम लोग प्रदेश की दो मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद है लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है।
0: इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने से रियासत में सनअतें ज्यादा तेजी से तरक्की करेंगी।
2: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: मरकजी वजीर जनाब गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एक तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इससे रियासत में राबते निजाम मजबूत होगा।
3: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड थ्री लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: इससे कबल वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहराओं और सड़क की बुनियादी ढांचे से मुतालिक बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी

0: एनटीए ने नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के लिए ओएमआर शीट्स जारी कर दी हैं। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने दरखास्त नंबर के साथ लॉग इन करके अपनी ओएमआर शीट्स और जवाब देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने जवाब का अपनी स्कैन करदा जवाब से मुआवजना कर सकते हैं। मुमासलत न होने की सूरत में उम्मीदवार सवाल का इंतखाब करके मुंतखब करदा ऑप्शन को निशानजद करके और 200 की फीस अदा करके सवाल को चैलेंज कर सकते हैं। अगर चैलेंज दुरुस्त पाया जाता है तो फीस वापस कर दी जाएगी। ओएमआर चैलेंज की सहूलत 15 जुलाई तक दस्तियाब रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से तशकील दी गई खसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी से कहा है कि वो अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के अतिया गबन में बेजाबतियों की तहकीकात पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इस मामले की सीबीआई तहकीकात के दरखास्त पर नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और वी मोहन पर मुश्तमिल बेंच ने एसआईटी की तश्कील दी तफसीलात भी तलब की। केस की अगली समाअत पीर को होगी। दरियासना श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की पेशकश की बेकायदगियों के मामले की समाअत के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने 8 मुलजमान की अदालती तहवील में 14 दिन की तौसी कर दी है। मुलजिम अब 27 जुलाई तक को अदालत में पेश होंगे। इस दौरान एसआईटी ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के सदर संतोष दुबे से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर, शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की मुतनाजा शाही जामा मस्जिद से मुतालिक तनाजात को खुसूसी लोक अदालत के जरिए हल करने की हिदायत दी है। यह खुसूसी अदालत 21 से 23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बुलाई जाएगी। कार्रवाई से पहले इन मुकदमात मुलविस फरकीन को लोक अदालत से पहले की मसालती बातचीत में शिरकत के लिए नोटिस भेजेगी। मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी जेपीसी जो एक मुल्क एक इंतखाब पर तश्कील दी गई है कल लखनऊ में सियासी शख्सियात से मुलाकात करी ताकि एक कौम एक इंतखाब के मसले पर उनके ख्यालात सुने। लोकसभा रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा कि कल कमेटी ने रियासत के सीनियर ओहदेदारों, चीफ इलेक्टोरल अफसर, बैंकर्स और वकला के साथ बातचीत की। रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर और आसपास के कई अजला में कल दिन के वक्त गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि वक्फे वक्फे से बारिश रात भर जारी रही। दरियासत महकमा मौसमियात ने रियासत में 19 जुलाई तक बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:15 और 42 सेकंड हुए हैं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अग्नैया।

0: अंगनैया कार्यक्रम सुने वाली सब बहिन लोगन के मीना का नमस्ते या साथे में पारो तोहरो के नमस्ते।
1: नमस्ते हो मीना दीदी और सन सुने वाली सब बहिन लोग के हमार पारो के नमस्ते। और हो दीदी का हाल चाल बा? आजकल तो तुहार जैसे पते ना लागा था हो,
0: अरे
1: बड़ा
0: हाल
1: ढेर दिन बाद भेट भइल तह से।
0: अरे हाल चाल तो सब ठीक हो पारो। देखा हम कही ना कि अब का करबू, देखा तो ऐसा मौसम है कि कबो जब सोचा थी निकलेगा तो कबो पानी बरसे लगा था, तो कबो कुछ है तो कबो कुछ। भाई भाई घर गृहस्थी में तो जनता है बड़ू की 50 ठे काम रहेला हो पारो।
1: एकदम ठीक कहत दीदी, लेकिन अब कहिला कि मौसम चाहे जैसन होके लेकिन अपने लोग से मिलल जुलल तो आदमी ना बंद कर देला हो। आ
0: भाई
1: देखा
0: एकदम सही बात कहत हो कि मिलल जुलल तो ना बंद करेला, लेकिन अब देखा भाई सबके लगे देखा तू ना कि भले मुलाकात ना हो लेकिन फोन से सब पर हालचाल हो जाला हो। देखा अब कितना बढ़िया सुविधा कि सबके लगे मोबाइल में अपन फोन करके जब भी मन कैलस बतिया आयला।
1: तब मने बात करत हूँ फोन के, मने बड़ा फोन चलावत हूँ, एकरा और इस्तेमाल करत हूँ ना।
0: भाई देखा बात करे के साथे साथे तो एकर कई तरह का इस्तेमाल बा। जवन चाह
1: हाँ
0: देखा तू जे आजकल सबके लगे हो बड़का फोन रहत हो कि ऊपर
1: हाँ
0: कुछ जानकारी पूछे के बाद फोन ऊपर चाहे बोल के पूछ ला चाहे लिख के दे जान जा हाँ कि
1: हाँ
0: ना।
1: दीदी एकदम ठीक बात कहलू है दीदी। आ देखा हो हम घर इतनी लोगन जन हई जाना, ओहनी के छोट छोट बात भी देखे भाले खोला। जैसे देखा बरखा बुन्नी के मौसम चला था, एमें घर इतनी लोग का करी लीलो, अनाज चाहे कपड़ा लत्ता धो के डाली लीजा, फिर देख लीजा कि तुरंत बरखा होखे लागल।

0: दौड़त जाली जा, फिर दौड़त जाली जब जाली जा, तब ले कपड़ा उनकर भीग जाला, अनाज भीग जाला। तो हम कही ला ना कि एहू के एगो समाधान बा, काहे ना मोबाइलिये में जोन चलावे लू देख ले लू कि मौसम के जानकारी कब बरखा हुई, कब मौसम साफ रही। आ इतने ना हो दीदी, ये जोन मेहंदी लगौले बड़ू बड़ा सुंदर थे, ओहू में खूब बढ़िया बढ़िया डिजाइनदार मेहंदी देख लेबू। औरो कोनो गुड़ सहूर होखे, जैसे सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर चलावे के, और बढ़िया बढ़िया व्यंजन पकवान बनावे लू ना, ओहू में बढ़िया बढ़िया व्यंजन पकवान बनावे के बहिन लोग देख सकेली लो। और कोनो बहिन लोग अगर पढ़ाई बीच में छोड़ देले हो कसलो कोनो वजह से, तो वो अपना फोनवा में पूरा कर सकेली लो।
1: एकदम सही बात कहतु पारो, मदे तू कहल चाहतु भाई कि आजकल डिजिटल युग सब केहू के जवन है कि भाई कुल जानकारी होखे के चाहिए। देखा जगह जगह हर जगह भाई आजकल कंप्यूटर है मोबाइल बा, ऊपर अब जानकारी ना रही तो क्यों कैसे काम करी। अब बैंक में जा चाहे कहीं रोजगार में जा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह भाई आजकल डिजिटल हो गल। अब देखा सब क्यों के भाई कहा ना कि ये दिशा में आगे बढ़े बदे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भी चलावल जाता। ये योजना से जुड़ के जो न कि अपने आप के डिजिटल रूप से साक्षर बनावल जा सका था, पूरा चीज मतलब जानकारी ले सका था। अब जा अगर जो भाई जानकारी ना हो तो देखा आजकल बैंक का पैसा देखे के कुछ करे के भाई कुल चीज मोबाइल से हो जाता है,
0: और जानकारी नहीं तब ना। हाँ दीदी, और ही हम बताई तो बतौलू है, मैं घरों में बैंक के पैसा देख लेत बानी जा, बिजली के बिल भरल जा सकेला, और डॉक्टर से सलाहो ले जा लेहल जा सकेला। देखो दीदी, जितना जरूरी मोबाइल चलावल बा ना, उतने जरूरी बा सुरक्षित तरीका से चलावल।
1: एकदम सही बात कहो आज पारो। हाँ। कि देखा कहे से कि भाई कैसनो फोन अनजान आ गल, अगर जो तो से कोनो जानकारी पूछत कि नहीं हाई बतावा था भाई, ओके जानकारी नहीं देव के कहे। हाँ। कि बहुत तरह का जो है कि साइबर क्राइम कुल चलत।
0: हाँ। आज तो सुबह ही देखो मंगला काकी आ गई है, बड़ा परेशान रही है, कहे लगली है देखत हो दुल्हिन पैसा निकलवावे गई रहनी है तो बैंक के खाता खाली देखावत बा। फिर बाद में उनके याद आयल है कि उनकरा के तो हाँ लगली है, कहे कि हमारा फोन पर तो एगो नंबर से फोन आई रहा है, तो का कहत रहा कि बैंक के मन ही अपने आपके बतावत रहा, कहत रहा चार अंक के संख्या मंगल है तो हम दे देनी है, का करी बड़ा परेशान रहलिन हा। तो ए तरह के घटना हमरे श्रोता बहन लोगन के साथे भी होत हुई, अगर ना होत हुई तो बहुत बढ़िया बा, हमन के काम हवे चेतावल कि आजकल कौन कौन धोखाधड़ी हो रहल बा।
1: एकदम सही बात कहतु पारो कि भाई धोखाधड़ी से बचल रहे।
0: हाँ,
1: डिजिटल युग के साथे जुड़ के जो ना कि समाज में आगे बढ़े के जरूरत है, और कदम से कदम मिलाए के चले के जरूरत हो।
0: हाँ हो दीदी, जहाँ इस सुविधा के समान हो गल बा ना, दूसरा और कहीं की जानकारी के अभाव में अपनी निजी जानकारी भी हैकर्स तक पहुंच जाला। फोन में कोनो जानकार लोग बोले ना ऐप होला, तो जब वो ऐप अपने फोन में लावा मने डाउनलोड करा, तो मांगे ला कि स्वीकार करी चाहे निरस्त करी, तो अगर ओके बिना पढ़ले बुझले अगर ओके स्वीकार कर लेनी, तो हमन के जौन निजी जानकारी होला वो हैकर्स तक पहुंच जाला। तो ई कुल दीदी हम मने बार बार चेतावत,
1: भाई ध्यान धय के कोनो चीज का पूरा जानकारी लेके तब ओके जौन की चलावे अपन करे, और भाई बिना जानकारी के कोनो काम न करे।
0: हाँ,
1: देखा बात बात कही तभी नाउर होत रही, लेकिन पहले चला ही बहन लोगों के संदेश सुनवा दे।
0: बिल्कुल संदेश ही सुनल जाओ।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं, इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें, और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं।

0: पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
0: ओ
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: तो देखा पारो बहन लोगन, सने सुनत रहनी है। हाँ, तो अभी बतावा कि भाई तू आज बहन लोगन के का जानकारी का बात सुनवावे बदलिया।
5: हाँ, हम लाए नहीं विषय हवे कामकाजी महिलाएं और उनकी चुनौतियाँ। तो जानकारी बढ़िया से फरिया के बताई है डॉक्टर बगीसा सुमन जी, जिनसे बतियावत है शिखा श्रीवास्तव। तो बहन लोगे के सुने और गुने
4: सुना दे।
6: श्रोता बहनी, काम काज तो सब केहू करेला। जौन बहने लोगन घरे में हैं उ लोगन भी भाई काम करत हैं, और जे घरे के काम के साथे बहरे करत हैं उनकर तो जिम्मेदारी और बढ़ जात है। तो आज हम लोगन बात करब उन बहनी लोगन के बारे में जौन के घरे के साथ साथ बहरे भी काम काज करत हैं, और उनके सामने कौन कौन तरह का चुनौती आवत है और उन चुनौतियन का सामना वो कैसे करत हैं। यही सब विषय पर आपन महत्वपूर्ण जानकारी देवे आज हमारे कार्यक्रम में आये हैं डॉक्टर बागीशा सुमन जी। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और आप लोगन के इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो डॉक्टर साहब, आपका अपने कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करत ही।
7: बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी।
6: बहनी लोगन के ये बताई कि एक काम काजी जो महिला लोगन होलिन उमन कौने कौने महिला लोगन के रखल जा सकेला, माने कौन तरह के महिला लोगन के काम काजी महिला की श्रेणी में रखल जाए।
7: शिखा जी बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो वैसे तो मेरा मानना है और कि हर महिला कामकाजी होती है, लेकिन अगर हम अभी बहुत पर्टिकुलर संदर्भ में बात करें तो जो कामकाजी महिला है हम उन स्त्रियों को कहते हैं जो अपने घर के कार्यों के अलावा बाहरी गतिविधियों में भी भाग लेती हैं और अपनी सेवाओं के बदले कुछ पारिश्रमिक प्राप्त करती हैं। तो वो वेतन के रूप में हो या मजदूरी के रूप में हो, तो वो सभी महिलाएं जो किसी भी संस्थान, कंपनी या सरकारी विभागों में नौकरी करती हैं या अपना स्वयं का भी अगर व्यवसाय चलाती हैं तो उनको हम कामकाजी महिलाएं कह सकते हैं।
6: किसी गवाई में तो मने ही जो घरे का महिला लोग घरे के साथ साथ खेती का भी काम करती तो उनके भी हम लोग ने श्रेणी में रख सकेला ना?
7: जी जी बिल्कुल, हम उस श्रेणी में रख सकते हैं। बल्कि इस बात को लेकर थोड़ा काफी समाजशास्त्री और काफी अर्थशास्त्र में भी जो है इस बात को लेकर काफी विवाद रहा है कि क्यों ना हम सिर्फ जो बल्कि जो खेती किसानी में भी महिलाएं हैं और बल्कि जो महिलाएं घर के चार दीवारी के अंदर भी जो काम कर रही हैं उसको भी हमें जब हम कामकाजी महिलाओं की श्रेणी निकालते हैं तो उसमें रखना चाहिए, क्योंकि भले ही वो डायरेक्टली उससे उनका धनोपार्जन नहीं हो रहा है लेकिन वो इनडायरेक्टली उनकी भूमिका इसमें बहुत रहती ही है।
6: बहुत सही आप बात कहते हैं। अच्छा, जब बात कर रही थी हम लोग कामकाजी महिला लोगन का, तो देखिए ना उनके घरे के साथ साथ बहरे भी संभारे के पड़ेला, तो उनके आगे कौने कौने तरह का चुनौती आवेले ये आप बहनी लोगन के बताएं।
7: पहली बात तो ये शिखा जी कि जब हम चुनौतियों की बात करते हैं तो बहुत अलग अलग स्तर पे हमको इन चुनौतियों को देखने की जरूरत है। तो पहली चुनौती तो मुझे लगता है किसी भी स्त्री के लिए घर से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर जो ये अवधारणा है कि महिलाओं का जो क्षेत्र विशेष है वो घर के अंदर ही है, और अगर उनको काम करने की आजादी या पढ़ने लिखने के बाद ऐसा सोचा भी जाता है तो वो सिर्फ एक शर्त पर कि जो अगर वो घर के आय में जो है हाथ बटा सकती हैं। लेकिन ये सोच अभी भी मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के दिमाग में नहीं है या समाज में भी उतना व्यापक नहीं है कि महिलाओं का बाहर निकलना या कमाना सिर्फ घर के आर्थिक सहायता के लिए नहीं बल्कि उनके खुद के संपूर्ण विकास के लिए और समाज के भी उत्थान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है इस बात पर बहुत बल दिया जाना चाहिए। तो पहली चुनौती तो मुझे लगता है परिवार और समाज के स्तर पर तो है ही है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि महिलाएं अभी हर एक स्तर पर हर एक क्षेत्र में आगे दिख रही हैं, तो खेती किसानी से लेकर हम अगर स्पेस तक चले जाएं तो वहां पर महिलाएं हैं। भारत के अंदर भी बात करें तो उद्योगों में, सेवाओं के

0: क्षेत्र में हर जगह महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है वो अभी भी जो है वो नहीं बदली है, तो कार्यक्षेत्र पे कई बार उनको डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो सामना करना पड़ता है। अभी भी कई क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता है कई जगहों पर, हालांकि संगठित क्षेत्र में ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र जो कि बहुत एक बड़ा क्षेत्र है और ज्यादातर भारत जैसे देश में जो महिलाएं हैं वो असंगठित क्षेत्र में ही ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो ये सारी चुनौतियां वहां पर हैं। तीसरा मुझे लगता है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है कि किसी भी जो कामकाजी महिला है, क्योंकि वो एक जो प्रोडक्टिव जो एज ग्रुप जो हम 20 से लेकर 35-40 तक के महिलाओं के उम्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो बच्चों को लेकर जो अवकाश है या बच्चों की देखभाल से जो रिलेटेड जो लाभ उनको मिलने चाहिए वो हर जगह नहीं है। तो संगठित क्षेत्र में तो ये दिखता है पर असंगठित क्षेत्र में उसका अभी भी अभाव है, या उससे रिलेटेड जो कानून भी है उसका कार्यान्वयन जो है वो उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है।
1: अच्छा, चुनौती की बात करें तो सबसे पहला तो चुनौती घरे के अंदर हो जाए भाई। बहुत बहनी लोगन काम करे बहरे निकले लिन तो पहले तो केहू के पसंद ना रही, बहुत घर में ऐसा देखल जाला कि भाई उनकर मन से दू हवन उहो नहीं पसंद करत हुन, घर परिवार वाले सहयोग नहीं करत हुन। अब कौनो दशा में अगर सहयोग कर भी देत हुआ तो वो बहरे जई है तो बहरे से ही है, जब घरे में तो घरे का भी कुल काम का जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगा। माने कि अगर वो बहरे से आवत है, आदमी भी बहरे से आवत है, तो चाय बनावे का, नाश्ता बनावे का, खाना बनावे का जिम्मेदारी उन्हें कहूला, तो ये विषय में आपका क्या विचार
0: है? जी, ये जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम कहते भी हैं दोहरी भूमिका या डबल बर्डन के नाम से जो है विद्वान इसको काफी समय से जो है इसका अध्ययन हो रहा है। और जैसे कि कहा भी जाता है कि जो घर का काम है वो बेसिकली अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, उसके लिए कोई जो है आपको आय प्राप्त नहीं होता और तभी उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रही है। और समय के साथ ये तो हुआ कि जो महिलाएं बाहर निकल पाई, वो बाहर तो निकल पाई लेकिन घर में जो उनकी भूमिका है वो जो पहले के समान ही जो है वो रह गई। तो मुझे लगता है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, और इवन जो घर के बड़े बुजुर्ग कहने से मेरा यहां पर मतलब जो महिलाएं हैं उनके सास ससुर या माता पिता, उनका भी नजरिया जो है बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब महिलाएं बाहर निकल रही हैं तो घर के क्षेत्र में उसे जरूर जो है वो मदद पहुंचाए। और जो पुरुषों की भूमिका है कि वो बिल्कुल जो एक बहुत क्लियर कट जिसको बोलते हैं कि श्रम का जो विभाजन था कि पुरुष बाहर का कार्य कर रहे हैं और घर का कार्य महिलाएं ही अकेले देख रही हैं, मुझे लगता है कि उस चीज को अब बदलना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं बदलाव देखने को भी मिल रहा है। हमारी पीढ़ी के जो पुरुष हैं वो थोड़े आगे आ रहे हैं, लेकिन फिर वो जो है ना वो आगे आने के बावजूद वो दर्शाया ऐसे जाता है कि वो एक कर्तव्य की तरह से कर रहे हैं, वो ये माना नहीं जाता कि वो ऐसा है जो किया जाना चाहिए या वो एक अधिकार के तौर पर महिलाओं का है कि उन्हें भी जो है घर के स्तर पर जो है बराबरी का या मदद का जो है वो मौका मिलता रहे।
1: बिल्कुल सही बात कहते हैं और बहुत नीक लगा था आपसे बात करके। और इस बात के करत करत यू ध्यान में आवेला कि घरे का जो महिला लोगों ने बहरे जाए से पहले घरे का कुल काम निपटी है, फिर बहरे का जाकर करिए, ओकरे बाद घरे में आई है, और जे खाली घरे में रहत है जेकर आप कहली ना कि भाई कोनो वेतन नहीं मिलेला लेकिन कोनो मूल्य भी नहीं होला, उनके तो इतना मतलब अपमानित कर जाला कहीं कहीं जगह पर कि उनके कहल जाला कि दिन भर घरे में करत का हो, खात हो, सुतत हो, तो ये कारण से जो उनके अंदर तनाव होला, जो थकान होले, जो आत्मग्लानी होले, उसे वो कभी कभी बहुत बुरी अवस्था में पहुंच जाए लेन। तो आप हमारे श्रोता बहनी लोगन के ए बारे में का बताए?
0: जी, मुझे लगता है कि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि महिलाओं को अपना आत्मबल जो है वो बढ़ाए रखने की जरूरत है। तो कई महिलाएं अब घर के स्तर पर भी छोटा मोटा जो है वो कार्य जो है वो शुरू कर रही हैं, तो कई महिलाएं स्वयं सेवी संस्थाओं या समूहों से जुड़ रही हैं, कई महिलाएं तो अब घर में बैठकर भी जो डिजिटल माध्यम है उससे भी कई छोटे छोटे स्तरों पर ही कार्य शुरू कर रही हैं। तो पर जरूरी नहीं है कि आप अगर ऐसे कार्य नहीं कर रहे हैं या आप जो अभी मैंने जिसको कामकाजी श्रेणी वाली महिलाएं बोली उसमें अगर आप अभी तक शामिल नहीं हैं तो अपने आप को आप अब छोटा माने, क्योंकि जैसा कि मैं आपको एक आंकड़ा दे रही हूं कि जो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP उसमें कहा जाता है कि वैसी महिलाएं जो इस कामकाजी श्रेणी में नहीं आती हैं पर वो घर के कार्य में जो है अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, योगदान दे रही हैं, वो भारत के GDP में अगर ऐड किया जाए तो उसका जो है योगदान 3.1% आएगा, जो कि बहुत बड़ा

0: जो है योगदान है, पर हम उसको नहीं मानते हैं। पर अप्रत्यक्ष रूप से वो इतनी बड़ी भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि चाहे बात बच्चों की हो या बूढ़ों के की देखभाल की हो, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि महिलाओं का जो योगदान है उसको अगर हम देखें तो उसको कहीं से भी कम या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
1: बहुत सही बात आप कहथिन, और नजरअंदाज न करे के चाहिए, और यही बात के प्रमाण लेके मनई के सम्मान करे के चाहिए उन सब महिला लोगन के भी जे घरे में काम करथिन, और जे घरे के साथ साथ बाहरे काम करथिन, उन पर हम लोगन चर्चा करत रही है। तो जैसे चुनौती का बात कैली है, कभी कभी सामाजिक सुरक्षा का भी संकट पैदा हो जाएला, ये बहुत बड़ी समस्या है, और एकरे बारे में महिला लोगन के आप का सुझाव दे?
0: सामाजिक सुरक्षा मुझे लगता है कि दो तीन स्तर पे तो है। एक तो बाहर जब महिलाएं काम करने जाती हैं तो एक तो मैंने जो गैर बराबरी की बात की वो तो है ही है, फिर कई मामलों में यौन उत्पीड़न जैसी भी समस्याएं देखने को मिलती है, तो इस इन चीजों को लेकर भी जो है लॉज हैं, जो है नियम कानून हैं, जो काफी कठिन हैं और उसको माना चाहिए। फिर जो परिवहन का क्षेत्र है, मुझे लगता है जो सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन है उसको लेकर भी घर वालों की कई बार चिंता होती है, क्योंकि कई बार महिलाएं जब घर से बाहर थोड़ा दूर कार्यस्थल पर जाती हैं तो ये भी एक बहुत जो है चिंता का विषय होता है। तो मुझे लगता है ये ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पे तो उसका समाधान नहीं निकाल सकते, लेकिन सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं उसमें काफी अच्छा काम कर रही हैं। और मेरा ये मानना है, और मुझे लगता है आप सब इस बात से सहमत होंगे, कि जब तक ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बाहर नहीं आएंगी तब तक उनकी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं होगा, और जब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बाहर आएंगी तो उनकी ये जो भी समस्याएं चुनौतियां हैं उनको वृहद स्तर पर हल करने के लिए भी लोग आएंगे आगे।
1: बहुत सही बात आप कहती, और अब समय बहुत कम है, एक आखिरी प्रश्न कि घरे से जोन काम करती और घरे से बाहर जाके जोन महिला काम करती, माने जोन दोनों जिम्मेदारी संभालती, उन लोगन के कैसे सामंजस्य बैठावे के चाहिए कि उनका जोन कार्य है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ भी वो सहज हो जाए और घरे में भी सहज।
0: मुझे लगता है एक शब्द अगर मैं उसमें अपनी बात रखना चाहूंगी तो वो है आत्मविश्वास, घर के स्तर पर, बाहर के स्तर पर, दोनों के स्तर पर। तो आपको धीरे धीरे ही, लेकिन जो है आपका जो संदेश है वो चाहे आपके साथ आपके परिवार में भी आपको अगर ये संदेश पहुंचाना है, और वो आपके पति, आपके बच्चों, सास ससुर, और यहां तक कि जहां आप काम करते हैं वहां तक भी, अगर आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो मुझे लगता है महिलाओं को कोई नहीं रोक सकता, और वो जरूर जो है इस विरोधाभास से कि घर और बाहर दोनों को हम कैसे सामंजस्य बनाए उससे बाहर निकल सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया बात आप कह ली ना, और ऐसा सोचे के चाहिए, सही बात है, आत्मविश्वास ऐसा ताकत है जो बड़े से बड़ा काम करे में महिला लोगन के सहयोग करी। चलत चलत बहन लोगन के का संदेश?
0: महिलाएं किसी भी भूमिका में कभी भी पीछे नहीं थी और आगे भी नहीं रहेंगी। मुझे लगता है बदलते समय में जब हम आज घर के बाहर का भी जो दायरा है वो अब स्पेस तक चला गया है, तो महिलाओं को जो है अपनी भूमिका को पहले से और ज्यादा जो है नए तरीके से सोचने की जरूरत है, और अपने आप को किसी से कम मत समझिए और आगे बढ़ते रहिए।
1: बहुत अच्छी बात है, और कामकाजी महिला लोगन और उनकर चुनौतियन के बारे में इतना महत्वपूर्ण जानकारी देवे बदे डॉक्टर बागीशा सुमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो पारो बहिन,
3: हाँ दीदी,
2: देखा हो कामकाजी महिलाएं और उनकी चुनौतियां, यही विषय पर डॉक्टर बागीशा सुमन से बतियावत रहनी है शिखा श्रीवास्तव बहिन। देखा कितना फरिया के बहिन बतियनी है और जानकारी कितना निक देनी है कि जोन कामकाजी महिला लोगन है उनके सामने जोन चुनौती आवत है वो अपने घरे में, चाहे अपने घरे से लेके कार्यस्थल तक पर कैसे सामंजस्य स्थापित करे के, और कौनो भी काम चाहे घर कहो चाहे बाहर कहो वो छोटा नहीं है। कोई अपने आप के ही ना सोचे कि नहीं हमार काम बेकार है, भाई सब पर काम महत्वपूर्ण है, और जब घर का औरत भाई काम करके देथिन तब मनसेधु जोन की बहरे निकल के जाए के काम करत हुआ।
3: एकदम ठीक
2: तो बात, लोग का भाई बराबर भूमिका है,
3: एकदम ठीक बात कहत हो
2: समाज में।
3: आ देखा हो अब समय हो रहा है गीत गौनई के, तो बहन लोगन है नीके के गौनई सुने, हम लोग के सुनल
2: गीत एक नीके गई बहन लोगन के सुनवा दा
3: बिल्कुल।

0: तो पारो दिखाओ हाँ कितना निक का गीत सुनवा दिलो, लगत है कि तू पिटारी में कुछ लेके आयल हो।
1: हाँ दीदी बिल्कुल, हम लाए लही है रिक्वेस्ट बनावे के विधि, तला है तुहू खा अब बहन लोग के भी एक विधि हम बता देते हैं। बहन लोग जल्दी से एक सामग्री लिख ले, एमा चाहे 10 गो अरुई के बड़ा सा पत्ता और 2 कप चना दाल जो उनकी रात भर पहले से भिंगावल रहे, 8-10 ठो कली लहसुन ले ली है और 2 इंच छोटा सा टुकड़ा अदरक ले ली है और 4-5 ठो हरियर मिर्चा ले ली है,
0: अच्छा।
1: 1 छोटा चम्मच जीरा ले ली है और 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन ले ली है, नमक जितना बहन लोग खाइल चाहत हो कस लो उतना ले ली है
0: स्वादानुसार।
1: हाँ स्वादानुसार, 1/2 छोट चम्मच हल्दी, 1 छोट चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा हरियर धनिया और तेल छौके बदे। तो बहन लोग कर विधि सुने ध्यान से, जोन भिगावल चना जोन दाल के जोन रात भर भिगावल रहा हा ओके पानी निकाल ले ठीक बा, और फिर उमर से लहसुन उमर लहसुन अदरक हरियर मिर्चा जीरा अजवाइन के साथ दरदरा पीस ली।
0: अच्छा
1: हाँ आ ये मिश्रण में जोन पीसल बा एमे नमक हल्दी धनिया पाउडर आ हरा धनिया मिला ली। अब जोन अरुई के पत्ता बा ओके बढ़िया से धो ली।

0: फिर ओके सुखा ली। अब एक एक पत्ता बिछा के
1: माने
0: ओकर,
1: सुखावे के कि पानी जिसे झरक जाए।
0: हाँ, और ओकरा पर दाल के लेप लगाई, और बढ़िया कुरकुरा कर चाहते तो थोड़ा सा चना, वो चावल के
1: चावल हो,
0: आटा,
1: कच्चा चावल, या
0: हाँ
1: तो भेज के रख ले, वही में डाल दे, पिसा दे अच्छा से,
0: हाँ
1: तो
0: ओकरा
1: कुरकुरा
0: पर
1: लगी।
0: दाल के लेप लगा ली, और ऊपर से दूसर पत्ता रख के फिर लेप लगाओ, चल जाई। यही तरह से तीन चार पत्ता के तह बना ली। अब ओके पत्ता के कस के बेलन जैसा गोल गोल बना ली, और रोल रोल बना ली गोल गोल। और जो बनोले बनी बेलन जैसे आकार में बा, ओके 2-3 इंच के टुकड़ा में काट ली। अब बढ़िया से ओके एक टुकड़ा के जो कटले बनी ओके 20-25 मिनट तक भाप में पका ली। अब पकला के बाद चाहे तो थोड़ा सा सरसों के तेल में जीरा लहसुन और हरियर मिर्चा के छौंक लगा के हल्का सेक ली। गर्मा गर्म रिकवच के हरा चटनी, टमाटर के चटनी के साथे खाई। हम तो देखा रोटी के साथ भी खाई ला, तो बहन लोग के एक सुन ले हुई है तो जरूर बनी है।
1: हाँ
0: हाँ
1: एकदम
0: दीदी
1: सही बताओ थू, लेकिन देखा हम कहे कि छौक भाई ओके, पहले हल्का सा ओके दोनों तेल में अलट पलट के सेक लेवल जाला, कि ताकि वो लाल हो जाए ना, तो औरी कुरकुरा रही, निक लगी खाए में।
0: हाँ दीदी, अब बनावे खाए के तो बात हो गई दीदी, अब
1: हाँ
0: देखा।
1: लेकिन देखा जैसे समय से हम नहीं ला ना, तो
0: हाँ
1: गढ़ी इशारा करता कि अब चले के समय हो था, तो चला
0: हाँ
1: चलल जाए, बहिन लोगों से कहल जाए
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम मंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं। लोक संगीत कार्यक्रम में आइए सुने डॉक्टर ज्योति सिन्हा के गाए लोक गीत। पहले एक खिलौना।

0: इस बधावा के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त तो होता है। कार्यक्रम में कलाकार थीं डॉक्टर ज्योति सिन्हा। इनके गाए कुछ लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपनी वादा।
4: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाए बीमारी भगाए, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता का दीप जलाएंगे चारों ओर उजियारा फैलाएंगे, सभी रोगों की एक दवाई घर में रखो साफ सफाई।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर होंगे दोपहर समाचार। दोनों ही समाचार बुलेटिन हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ुल्फ़ाग़री ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन

0: किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित

0: प्रकाशित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
1: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
2: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच

0: आज बर्मिंघम के एजबेस्टर मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाने तराने।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी और अब प्रस्तुत है आप सबका प्रिय कार्यक्रम सुहाने तराने, ओल्ड इज गोल्ड। संगीत की सुरमई दुनिया में मैं स्नेहा करती हूँ आप सबका हार्दिक स्वागत। और आज की इस खूबसूरत संगीतमय यात्रा में हम लेकर आए हैं ऐसे गीत, ऐसी धुनें जो आपके मन को सुकून देंगी और आपके दिन को और भी सुरीला बना देंगी। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के मधुर गीतों के साथ। और आज इस कार्यक्रम में पहला गीत हम ले रहे हैं फिल्म कटी पतंग से। फिल्म कटी पतंग का ये अमर गीत है ये शाम मस्तानी। ये गीत किशोर कुमार ने गाया है, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। इसकी धुन इतनी सहज और मधुर है कि सुनते ही मन एक ठहरी हुई सुहानी शाम में पहुंच जाता है। ये शाम मस्तानी की खूबसूरती इसकी सरलता में है, न ज्यादा शोर न दिखावा, बस एक मीठा सा एहसास। किशोर कुमार की आवाज में जो अपनापन है वो इस गीत को सिर्फ सुनने का नहीं महसूस करने का अनुभव बना देता है। तो श्रोताओं, अब पेश है फिल्म कटी पतंग का ये सदाबहार गीत ये शाम मस्तानी। सुनिए और अपने दिन को और भी खूबसूरत बनाइए।

कार्यक्रम सुहाने तराने का संगीतमय सफर जारी है और हम लेकर आए हैं एक ऐसा सदाबहार गीत जो प्रेम, इंतजार और मीठी सी तड़प से भरा है। आजा आई बहार, दिल है बेकरार। ये गीत फिल्म राजकुमार का है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है लता मंगेशकर की कोमल आवाज, शंकर जयकिशन की मधुर धुन और शैलेंद्र के दिल को छू लेने वाले बोल। कहते हैं कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जब इस गीत में ओ मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए आता है तो लगता है जैसे किसी इंतजार की कहानी आंखों के सामने चली आ रही है। तो आइए इस सुनहरी धुन के साथ अपने मन को भी बहार की तरह महका दीजिए और सुनिए ये प्यार, मिठास और यादों से भरा सदाबहार गीत।

और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो रोमांस, मिठास और संगीत की खूबसूरती से भरा हुआ है। फिल्म धर्मात्मा का मशहूर गीत तेरे चेहरे में वो जादू है। ये गीत 1975 में आई फिल्म धर्मात्मा का है। इस गीत को अपनी जादुई आवाज में गाया है किशोर कुमार ने। इसका संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया है और इसके बोल लिखे हैं इंदीवर ने। ये गीत सुनते ही मन में एक अलग सी मिठास घुल जाती है। इसमें प्रेम की कोमलता है, आकर्षण की गहराई है और किशोर दा की आवाज में वो जादू है जो सीधे दिल तक पहुंचता है। गीत में जिस तरह प्रियतम की खूबसूरती और उसके चेहरे की मोहकता का वर्णन किया गया है वो इसे एक अमर रोमांटिक गीत बनाता है। इस गीत की पिक्चराइजेशन भी बहुत खास मानी जाती है। इसे खूबसूरत और खुली लोकेशनों पर फिल्माया गया जिस

से गीत में एक अलग ही भव्यता आ गई। फिरोज खान ने इस गाने को बहुत सादगी और स्टाइल के साथ पेश किया ताकि रोमांस का असर और गहरा हो जाए। कहा जाता है कि किशोर कुमार की गायकी ने इस गीत को ऐसा जादू दिया कि आज भी सुनने वालों के दिल में बस जाता है। तो अब आपकी बारी है श्रोताओं इस गीत में खो जाने के लिए, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

और अब आप सुनेंगे एक ऐसा सदाबहार गीत जिसने मोहब्बत की मासूमियत, इंतजार और रूठने मनाने की मिठास को बेहद खूबसूरती से आवाज दी। फिल्म जॉनी मेरा नाम का गीत पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। ये गीत फिल्म जॉनी

मेरा नाम का है जिसका संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था, बोल इंदीवर के थे और इसे स्वर दिया था किशोर कुमार ने। इस गीत की एक खास बात इसकी शरारती, दिलकश और थोड़ी सी बेकरार लय है। देवानंद और हेमा मालिनी पर फिल्माए गए इस गीत में प्रेम की एक ऐसी छवि है जो आज भी सुनने वालों के दिल में उतर जाती है। ये गाना फिल्म का यादगार हिस्सा बना और समय के साथ एक क्लासिक रोमांटिक गीत के रूप में स्थापित हो गया। तो आइए सुनते हैं ये मधुर नगमा और खो जाते हैं पुराने जमाने की उस मोहक दुनिया में जहाँ गानों में इश्क भी था, अदब भी था और दिल की सच्चाई भी।

कार्यक्रम का अगला गाना हम ले रहे हैं फिल्म अजनबी से, हम दोनों दो प्रेमी। फिल्म अजनबी 1974 की एक रोमांटिक डुएट है। इसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया, संगीत आड़ी बर्मन का है और बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं। ये गाना फिल्म के ट्रैक में ट्रेन सीक्वेंस के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी विजुअल में यात्रा रेल का दृश्य महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं सुहाने तराने का ये अंतिम गीत।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना।

0: तो अब इसी के साथ कार्यक्रम सुहाने तराने का सफर यहीं समाप्त करते हुए मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा लेती हूँ आप सब से इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाने तराने, प्रस्तुति स्नेहा सिंह की थी।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम वेव, ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

5.4 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, वेब्स ओटीटी और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:10 हो रहे हैं, आरंभ होती हमारी सांध्यकालीन सभा। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं बांग्ला गीत। आज के कलाकार हैं संजीत मंडल।

আমার নাই সে তোরির নাই খানদারি গো, যার

0: ये आसमान से गिरती बूंदें अक्सर हमें घरों में कैद कर देती हैं, लेकिन यही बारिश चाय के दीवानों को केतली चढ़ाने का एक और बहाना दे ही देती है। बाहर बादलों की ये गड़गड़ाहट चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, कुल्हड़ से उठती हुई अदरक की खुशबू और पहली चुस्की हर गम को धुएं में उड़ा ही देती है। जी हाँ दोस्तों, थके हारे दिन को कहिए बाय बाय, क्योंकि आपकी शाम में ताजगी का डोज ढोलने आ गए हम दो दोस्त, यानी मैं हर्षिता
1: और मैं जयशालिनी, वही पुरानी वाली पॉजिटिव एनर्जी लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज के साथ। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी।
0: आज की शाम होगी आपके नाम, जहां पर हम देंगे आपको ढेर सारी जानकारियां और गानों यादों के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर। इसी के साथ आप सभी को हमारा ढेर सारा प्यार और नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत बांग्ला गीत। आज के कलाकार थे संगीत संजीत मंडल। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 और 10 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम यूं वाणी।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
7: 0542227658।
5: 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ, 0542227658।
8: हर्षिता, आज का समय तेजी से बदल रहा है, लेकिन कई नई तकनीक, नए अवसर और नई चुनौतियां हर दिन हमारे सामने आती हैं। ऐसे में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सही कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुका है।
9: बिल्कुल शालिनी, कौशल विकास का अर्थ है अपनी क्षमता को पहचानना, उसे निखारना और समय की जरूरत के अनुसार नए नए हुनर सीखना। चाहे कंप्यूटर हो, डिजिटल तकनीक, संचार कौशल, सिलाई कढ़ाई, इलेक्ट्रिक्स या कृषि, कोई अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण, हर कौशल हमें आगे बढ़ने तथा आत्मनिर्भर बनने और साथ में आत्मविश्वास भी देता है।
8: यही कारण है कि आज देश भर में युवाओं का रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हुनर जितना मजबूत होगा अवसर उतने ही अधिक होंगे।
9: सही कहा आपने कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यदि हम हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें तो बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं।
8: इसलिए दोस्तों जरूरी है कि हम सीखना कभी न छोड़ें और हर दिन अपने ज्ञान व कौशल में कुछ नया जरूर जोड़ें।
9: क्योंकि याद रखिए, डिग्री अवसर दिला सकती है लेकिन कौशल सफलता दिलाता है।
8: तो आइए हम सभी यह संकल्प लें कि अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कोई ना कोई नया कौशल अवश्य सीखेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
9: कौशल विकास जरूरी है। कौशल विकास जरूरी यही है आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी है।

0: दोस्तों, कौशल विकास जरूरी है और इसी के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे मित्र की जो बिना कुछ मांगे हमें जीवन भर ज्ञान, प्रेरणा और सही दिशा देता है। जानते हैं शालिनी, वो क्या है?
1: बिल्कुल हर्षिता, वो है हमारी पुस्तकें। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं दोस्तों। ये न केवल हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, बल्कि हमारी सोचने समझने की क्षमता भी विकसित करती हैं।
0: आज के डिजिटल दौर में जहाँ मोबाइल, सोशल मीडिया हमारा ज्यादा समय लेते हैं, वही रोज कुछ समय पुस्तक पढ़ने की आदत हमें एकाग्रता, सकारात्मक सोच और बेहतर व्यक्तित्व की ओर ले जाती है।
1: चाहे कहानी हो, कविता, जीवनी, विज्ञान हो या इतिहास, हर पुस्तक अपने भीतर अनुभवों का एक नया संसार समेटे होती है। जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे और इतना ही जीवन समृद्ध होगा।
0: सही कहा आपने शालिनी, एक अच्छी पुस्तक न केवल हमारा मनोरंजन करती है, बल्कि कठिन समय में प्रेरणा भी देती है और सही निर्णय लेने की समझ और विकसित करती है।
1: बिल्कुल हर्षिता, हमें और हमारे श्रोताओं को हर दिन कुछ समय पुस्तक पढ़ने के लिए अवश्य निकालना चाहिए और अपने परिवार तथा मित्रों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
0: जी शालिनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें कुछ समय अपने पुस्तकों के साथ बिताना चाहिए और इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कुछ समय हम अपने साथ और सोशल मीडिया और फोन से दूर किताबी की दुनिया में कुछ नया सीख सकेंगे।

0: दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जिसे प्रकृति का सुपर हीरो कहा जाता है। हर्षिता, क्या तुमने कभी टार्डीग्रेड का नाम सुना है?
1: हाँ जी शालनी, टार्डिग्रेड इतना छोटा जीव है कि इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसकी लंबाई लगभग 0.5 मिलीमीटर होती है और इसे प्यार से वाटर बियर या मास पिगलेट भी कहा जाता है।
0: अच्छा, लेकिन ये बताओ कि इसे खास क्या बनाता है?
1: हाँ, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी अद्भुत सहन शक्ति। यह भीषण ठंड, तेज गर्मी, अत्यधिक दबाव, विकिरण और यहाँ तक कि अंतरिक्ष जैसे वातावरण में भी कुछ समय तक जीवित रह सकता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तो यह अपने शरीर के लगभग सारा पानी निकालकर एक निष्क्रिय अवस्था जिसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं, में चला जाता है। अनुकूल माहौल मिलते ही यह फिर से सक्रिय हो जाता है।
0: वाकई दोस्तों, प्रकृति का यह करिश्मा हैरान कर देने वाला है। क्या वैज्ञानिक भी इस पर शोध कर रहे हैं अर्चिता?
1: बिल्कुल, वैज्ञानिक टार्डिग्रेड का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि इसकी कोशिकाएं इतनी कठिन परिस्थितियों में कैसे सुरक्षित रहती हैं। भविष्य में इस शोध से अंतरिक्ष यात्राओं जैसे जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान में नई संभावनाएं खुल सकती हैं।
0: तो दोस्तों, आकार भले ही छोटा हो, लेकिन टार्डीग्रेड हमें सिखाता है कि असली ताकत परिस्थितियों से हार मानने में नहीं, बल्कि उनके अनुकूल स्वयं को ढालने में होती है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अब ये गीत।

0: चलिए दोस्तों, अब समय है आज के शब्द का, जहां हम सीखते हैं रोजमर्रा में काम आने वाले एक हिंदी और एक अंग्रेजी का शब्द, उसका सही अर्थ और उसका प्रयोग।
1: आज का हिंदी का शब्द है संप्रभुता, जिसका अर्थ है किसी देश या राज्य की उस सर्वोच्च शक्ति और स्वतंत्रता से है जिसके तहत वह अपनी आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है और किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होता। सरल शब्दों में यह एक राष्ट्र का अपने क्षेत्र और नागरिकों पर अंतिम और निरपेक्ष अधिकार है। इसके कुछ समानार्थी शब्द हैं संप्रभुता, स्वायत्तता, स्वतंत्रता, आजादी और स्वशासन। वाक्य में इसे हम कुछ यूं कह सकते हैं, संप्रभुता त्यागने से शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। राज्य की संप्रभुता मायने रखती है। सच्ची डिजिटल संप्रभुता पसंद और नियंत्रण के बारे में है।
0: और अब बात करेंगे हम आज के अंग्रेजी के शब्द की, जो कि है नोटोरियस, NOTORIOUS, एंड इट्स मीनिंग इज टू बी फेमस और वाइडली नोन फॉर समथिंग बैड, निगेटिव और अनफेवरेबल। और नोटोरियस का हिंदी में अर्थ होता है कुख्यात या बदनाम। और इसके सिनोनिम्स होंगे इनफेमस, डिसरेप्यूटेबल, इल फेम्ड, स्कैंडलस। एंड इन सेंटेंस वी कैन से इट एज द सिटीज डाउन टाउन इंटरसेक्शन इज नोटोरियस फॉर इट्स सीवियर ट्रैफिक जैम एंड लॉन्ग डिलेज।
1: दोस्तों, नए शब्द सीखते रहिए, अपनी भाषा को समृद्ध बनाइए और ज्ञान की इस यात्रा में हम अब बढ़ते हैं इतिहास की तरफ।
0: इसी के साथ अब समय आ गया है दोस्तों कि जानने का कि आज के दिन इतिहास में क्या कुछ घटित हुआ था। 14 जुलाई 1779 में फ्रांस की जनता ने बेस्टील किले पर कब्जा किया और इसी घटना से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। और आज भी 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है दोस्तों।
1: 14 जुलाई 1790 में फ्रांस में पहली बार फेटे दे ला फेडरेशन का आयोजन हुआ, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना।
0: और इसी के साथ सन 1853 में आज ही के दिन न्यूजीलैंड में पहली बार आम चुनाव आयोजित किए गए, यह देश की लोकतांत्रिक इतिहास की महत्वपूर्ण शुरुआत थी।
1: 14 जुलाई 1862 में ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध चित्रकार गुस्ताव विलम का जन्म हुआ।
0: और वर्ष 2015 में 14 जुलाई के दिन ही विश्व की प्रमुख शक्तियों और ईरान के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता जैक पॉ हुआ, जिसे वैश्विक कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता

0: माना गया था।
1: तो श्रोताओं, 14 जुलाई हमें यह बताता है कि इतिहास केवल बीती हुई घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि भविष्य के लिए सीख और प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, कहते हैं ज्ञान वही है जो सही समय पर सही जवाब बनकर सामने आए। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे का।
0: बिल्कुल, यहाँ सिर्फ सवाल नहीं पूछे जाते हैं बल्कि हर दिन आपके ज्ञान, आपकी जिज्ञासा और आपकी सोच को मिलता है एक नया मंच। कौन जाने आज का सही जवाब आपको भी हमारे विजेताओं की सूची में शामिल कर दे।
1: लेकिन आज का सवाल पूछने से पहले ताइयां तो बनती हैं उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने कल के प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देकर अपनी शानदार पहचान बनाई है।
0: तो चलिए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के प्रश्न पर, जो कि है एरो इंडिया 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जो कि जिसका सही जवाब है बेंगलुरु में स्थित येलाहांग का वायु सेना स्टेशन पर।
1: और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले हमारे विजेताओं हैं और इसी जवाब के साथ ही नाम मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी, रवि मौर्य सिमरौल आजमगढ़, चंदा चंदौली से, दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाक से, और इसी के साथ हैं बाबू दिव्यांश। रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज शिवम धीरज चिंता वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा, और नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदयाल शिवदे शिवाबाई बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
1: ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा वेदिका वंश निकेश धर्मेंद्र मेघा नंदिनी हर्षिता और ममताबाई वर्मा। संगीत की नगरी खंडवा से हैं श्यामाबाई रायंकवार।
0: आप सभी विजेताओं को ढेर सारी बधाइयां। उम्मीद है कि आपकी यही सीखने की लगन यूं ही बनी रहेगी और आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। दोस्तों,
1: तो अब इंतजार खत्म क्योंकि पेश है आज का नया सवाल। जरा ध्यान से सुनिएगा तो हो सकता है इसका जवाब आप भी दे पाए और आपको भी पता हो।
0: तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों कि हरगिला पक्षी प्रजाति मुख्यतः भारत के किन दो राज्यों में पाई जाती है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, हरगिला पक्षी प्रजाति मुख्यतः भारत के किन दो राज्यों में पाई जाती है।
1: अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो बिना देर किए हमें अपना उत्तर भेजिए, हमें हमारे इंस्टाग्राम यूथ AIR वाराणसी पर या फिर हमारे ईमेल youth@gmail.com पर भी अपना जवाब भेज सकते हैं। हो सकता है अगली बार जब हम विजेताओं का नाम घोषित करें तो उनमें आपका नाम सबसे पहले सुनाई दे। तो देर किस बात की, सोचिए जवाब दीजिए और बन जाइए हमारे अगले क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर।
0: फिलहाल आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा, पर तब तक के लिए आइए सुनते हैं ये एक गीत।

0: दोस्तों कहते हैं ना कि जिंदगी बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कभी-कभी बस एक पल, एक फैसला या एक छोटी सी जानकारी इंसान की पूरी दिशा ही बदल देती है।
1: बिल्कुल। और अफसोस की बात यह है कि कई बार लोग मेहनत तो पूरी लगन से करते हैं, लेकिन सही अवसर की जानकारी समय पर न मिलने के कारण मंजिल उनसे दूर रह जाती है।
0: इसलिए कहते हैं कि तैयारी जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है सही समय पर सही सूचना का मिलना, क्योंकि एक नोटिफिकेशन, एक भर्ती या फिर एक आवेदन की तारीख आपके सपनों की शुरुआत बन सकती है।
1: कौन जाने जिस अवसर का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, वह आज की ही रोजगार सूचना में आपका इंतजार कर रहा हो।
0: तो अपनी उम्मीदों को बनाए रखिए, तैयारी को जारी रखिए और अगले कुछ मिनट हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर PO और मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इस भर्ती के तहत 6,715 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी।
1: आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 21 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
0: वहीं अगर आयु सीमा की बात करें तो 20 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होंगे। सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देश के 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में की जाएगी।
1: अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जो कि है www.ibps.in पर।
0: दोस्तों, जब तक आप जानकारी बटोरते हैं तब तक आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, मंजिल से ज्यादा कीमती सफर होता है, इसलिए सफर हमेशा सुरक्षित होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय जल्दबाजी नहीं, समझदारी दिखाइए।
0: श्रोताओं, बरसात की फुहारें मौसम को तो सुहाना बना देती हैं, लेकिन सड़क पर यही बारिश थोड़ी सी लापरवाही को बड़े हादसे में बदल सकती है।
1: याद रखिए, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए वाहन हमेशा निर्धारित गति पर चलाइए।
0: बिल्कुल हर्षिता, ऐसे मौसम में सबसे जरूरी है

0: की रफ्तार को कम रखें क्योंकि गीली सड़क पर ब्रेक लगाने से सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा दूरी लग सकती है।
1: अगर बारिश तेज हो रही हो तो हेडलाइन जलाकर चलें ताकि सामने से आने वाले वाहन आपको आसानी से देख सके, लेकिन हाई बीम का इस्तेमाल तभी करें जब उसकी जरूरत पड़े।
0: और हाँ, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें ताकि अगर आपको अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में आप हों तो यह दूरी आपकी और दूसरों की सुरक्षा कर सकती है।
1: बारिश के दौरान सड़क पर बने गड्ढे पानी से ढक जाते हैं, इसलिए पानी भरे सड़क पर तेज गति से वाहन चलाने से बचे और सावधानी से आगे बढ़े। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट जरूर पहने और चारपहिया चालक सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। सुरक्षा के ये छोटे छोटे कदम बड़ी दुर्घटनाओं को बचा सकते हैं।
0: श्रोताओं, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यदि किसी जरूरी कॉल का जवाब देना भी हो तो पहले एक सुरक्षित स्थान पर अपने वाहन को रोकें और फिर उसको अटेंड करें, उस कॉल को।
1: जी हाँ श्रोताओ, बारिश में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। कुछ मिनट देर से पहुंचना किसी दुर्घटना का शिकार होने से कहीं बेहतर है। तो आइए इस बरसात हम केवल अपने सफर का ही नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: धीमी रफ्तार अपनाइए, सावधानी से वाहन चलाइए और इसके साथ ही बारिश का आनंद भी लीजिए।
1: सुरक्षित ड्राइविंग केवल आपकी नहीं बल्कि हर राहगीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसलिए सुरक्षा से कभी समझौता मत कीजिए। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और सफर को सुखद बनाइए। सुरक्षित ड्राइविंग कीजिए।
0: दोस्तों, इसी के साथ हमें अपनी ये दो रेडियो दोस्त यानी मुझे जयशालिनी को
1: और मैं हर्षिता
0: को दीजिए इजाजत, पर जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको इस गीत के साथ। तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एक कार्यक्रम के संबोधित करत कहने कि पिछला 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था आप प्रति व्यक्ति आय के 3 गुना कैले में सफलता मिलल बा।
1: हमें 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वुमेन वर्क फोर्स को प्रदेश के अंदर 3 गुना से अधिक उनकी उपस्थिति देश के अंदर शासकीय सेवा हो या फिर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कार्रवाई हुई है उनमें उनकी उपस्थिति वहाँ हुई है। ये जो आंकड़े हैं ये केवल आंकड़े नहीं है।
0: मुख्यमंत्री कहने कि प्रदेश आज हर क्षेत्र में बढ़िया परफॉर्म कर रहा हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहले हमें कि भूमि अधिग्रहण के पूरा प्रक्रिया के प्रबंधन बदे रेल भूमि पोर्टल लॉन्च कर जाए। भारतीय रेलवे के आधुनिक बनौले के उद्देश्य से कल गए सुधारण पर आज नई दिल्ली में संवाददाता लोगों की जानकारी देते उनके कहने की उनका मंत्रालय निर्माण क्षेत्र के साथ ही कई गो सुधार कैले हो। श्री वैष्णव कहना कि आप कंटेनर में और वर्कन का परिवहन कर जा सकेला। वहाँ के कहने की बिजली संयंत्र में पैदा होके वाले फ्लाई एशो के अब कंटेनर में भेजल जाए।
2: अगर हम फ्लाई एश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई एश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई एश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई एश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए महीना के 26 तारीख के आकाशवाणी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपन विचार साझा करिए हैं। यह कार्यक्रम का 136वीं कड़ी हुई। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम बदे अपन विचार और सुझाव भेज सके हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप चाहे MyGOV ओपन फोरम के जरिए से ऑनलाइन अपन सुझाव दे सके हैं। लोग 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देके आ SMS में पावर लिंक का अनुसरण करके सोझे प्रधानमंत्री के अपन सुझाव भेज सके हैं। आगे वाला अंक बदे सुझाव ए महीना के 24 तारीख ले मंजूर कर जाए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा में हेरा फेरी के आरोपी लोकुश मिश्रा के बन रहल मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण आखिरी नोटिस चस्पा कैले हो। और यह मामला में काल भैल सुनवाई के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज प्रतिभा नारायण सज्जो 8 आरोपियों के न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा देने। अब आरोपियों का पेशी 27 जुलाई के हुई। वाराणसी के ज्ञानवापी मामला के आपसी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित कैले के उद्देश्य से आज ओजा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दोनों पक्षन को बैठकी आयोजित कर गई। बैठकी के बाद यह मामला में दोनों पक्ष साफ कहने की ज्ञानवापी विवाद का आखिरी समाधान का फैसला न्यायालय से संभव बा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA NEET UG के पुनः परीक्षा के OMR सीट जारी कर ले हो। एक रिपोर्ट
3: NTA.NIC.IN पर अपने आवेदन नंबर पर लॉगिन कर OMR सीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपनी चुनी हुई विकल्प का निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। समाचार
0: केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वो वीडियो का खंडन कैले बा जेमे दावा कैल गए हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एगो कार्यक्रम के दौरान कहले रहने कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश हो। पत्र सूचना कार्यालय का तथ्य जांच इकाई कहलस की ये दावा फर्जी बा आ प्रधानमंत्री ऐसा कोनो बयान नहीं दे ले हमें। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर।

यानी 1242 किलोहर्ट्स, और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सितार वादन। कलाकार होंगे पंडित निखिल बनर्जी।

कार्यक्रम खेल दर्पण का प्रसारण समय होगा रात्रि 10 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे ए हरिहरन। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में केले की खेती विषय पर डॉक्टर सुधाकर सिंह से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत के अलावा किसान भाई डॉक्टर ज्योति सिन्हा के गाए लोकगीत भी सुन सकेंगे। फिल्म संगीत के कार्यक्रम शाम 6:10 पर। शाम 7 बजे शाम 7:31 पर कार्यक्रम रस रंग में और रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम रस माधुरी में आप सुन सकेंगे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब सुनिए कल यानी दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभारंभ पर आधारित विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर और दोपहर 12:45 पर आप सुनेंगे संतूर वादन, कलाकार होंगे कुमार सारंग चौधरी। और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा बांसुरी वादन, कलाकार होंगे निखिल दास। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगे शब्बीर कुमार और अलका याग्निक और रात्रि 8 बजे कलाकार होंगे उषा टंडन और राहत अली।

कार्यक्रम कानून और हम का प्रसारण समय होगा रात्रि 10 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। शाम 6:30 पर कृषि जगत में अन्य कार्यक्रमों के अलावा किसान भाई गुलाब चंद्र विश्वकर्मा और साथी के गाये लोकगीत भी सुनेंगे। इन्हीं के गाये लोकगीत आप सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर भी सुन सकेंगे। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में मूंग की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना का समय होगा सुबह 6:10 पर। कार्यक्रम विचार बिंदु का प्रसारण समय होगा सुबह 6:30 पर। सुबह 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में बच्चों की समसामयिक बीमारियां विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर प्रीतम कुमार। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का प्रसारण समय होगा सुबह 6:40 पर। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस आप सुन सकेंगे सुबह 7 बजे। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 11 बजे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा दोपहर 12 बजे।

दिन में 1:15 पर महिलाओं के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में डॉक्टर शशिबाला सिंह के काव्य पाठ के अलावा महिलाएं गीत संगीत का भी आनंद ले सकेंगी। शाम 5:15 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युवावाणी में होगी आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और साथ ही युवा साथी गीत संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में मधुरिमा सुबह 8:45 पर, झंकार सुबह 10:00, कुछ बातें कुछ गीत दिन में 2:30 पर, रसरंग शाम 7:31 पर और रसमाधुरी रात्रि 8:30 पर आप सुन सकेंगे। एक बार फिर बता दे रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभारंभ पर आधारित विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकार

0: आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, पहले ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहला गीत है फिल्म

कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहला गीत है फिल्म जन्म जन्म के फेरे से। आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की। शब्द रचना है भरत व्यास का और संगीत से संवारा है एसएन त्रिपाठी ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म क्रांति से, आवाजें महेंद्र कपूर और मीनू पुरुषोत्तम की, गीतकार मनोज कुमार और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: और ओ मोहन भैया,
1: एकदम बढ़िया बिरजू भैया का।
0: ए घड़ी देखात ना आवा मोर भैया, पता न चलता आज लौकबो कैला भैया, तो जवन कनई में कनवछल बड़ा हो के का करतला भैया।
1: भैया देखा साल भरे के काम चलत था आ उमे देखा सवेरे से लेके पूरा दिन लगा रह गेलिए, खर मिटाओ खाए का समय ना मिलला, वहीं देखा ली तले तुहु आ गिला जो ना, आ देखा दिन भर लेव में जो ना।
0: ते यानी तो मतलब रोहिणी के जोन बिया पर ले गांव का गिराव रोपत था, तोरो मन हिरोहत लगी, कब बढ़ो बिया या हमहू तनी कुछ रोपाई कराए दे।
1: भैया जौने की देखा अगर वो ना रोपम ना तो देखा घरे के बच्चा का खइया, उनकर पढ़ाई लिखाई दवाई इकुल कहाँ से हुई। तो मन के खेती किसानी के काम बाय तो न करके हमन के घर परिवार चलत बाय।
0: हाँ भैया, घड़ी देखा तो दऊ भी नाराज बना हो, मशीने दिन रात पीटे के पड़त बा भैया।
1: भैया देखा ये तो बहुत सही बात कह दिला कि जौन घाम लगत है ना कि पगड़ी बनले के बाद वो घाम जौन है कि कपारे में लग जाता, आ ओकरे बाद जो ना इहो कहम ना कि देखा दिन भर जो ना कि ताले में अगर देख ला ना तो चारों साइड में जो ना कि खाली जो ना कि धाने रोपाद बा।
0: देखा भैया लाइन कट जात बने, जे आओ थे तो ध्यान यह रहता कि भैया चला पंपिंग सेट चलावा, नहीं तो दऊ का कोनो ठिकाना ना बा।
1: हाँ आ कहीं कहीं देखा यो बाय कि कहीं नहर भी में भी पानी आवत
0: हाँ
1: बाय जो
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: आ सब अपन अपन जेकर जहाँ जोन सुविधा बा वैसे अपन जो ना रोपाई के काम शुरू कर देले
0: ये
1: हाँ।
0: भैया हमरे कह के मतलब कि नहर आ मशीन के भैया कितना सहारा लगा, दऊ जब बरिस देवे आ नहीं तो इतना चचहाव लगल बा कि सभी के भाई पानी चाहिए।
1: एकदम सही कला देखा इहो कह हमने कि देखा जब दऊ जब बरसे ना ना तो रोपनी जोन गीत गावे शुरू करनी जो ना ताले में तो इतना सुंदर लगेला कि समझ रखा कि लगेला कि पूरा हरियाली चारों साइड में हो गई बा ना।
0: देखा ये भैया, अब हमन तो बतकही करते हैं या
1: हाँ
0: देखा, हम हन जैसे किसान भाई लोग के तरह तरह का हमन के सरकार योजना का लाभ देत बा, तो
1: हाँ
0: वैसे ही भैया अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी सरकारी योजना का लाभ सरकार देत है।
1: एकदम सही कला है। देखा सरकार का देखा उद्देश्य यह है कि समाज का देखा हर वर्ग का महिला जो ना कि पढ़ लिख करके हुनरमंद होकर के अपने के समाज में स्थापित करें, उनमें देखा अल्पसंख्यक समाज के जो महिला बहन हैं इन लोग ना उनके लिए भी देखा सरकार तरह तरह की योजना चलौले है ताकि वो जो ना कि पढ़ लिख के आगे बढ़ें आ अपन नाव करें दुनिया में।
0: अब देखा भैया यही में एक योजना नई नई रोशनी,
1: हाँ
0: ये योजना के अंतर्गत हमारे अल्पसंख्यक महिला बहन लोग के ना
1: हाँ हाँ
0: ई है भैया कि ओके आत्मनिर्भर बना के चतुर चलाक, यानी हो चतुर
1: हाँ
0: चलाक बनावल जाए था कि भैया तू बैंक संबंधित जौन काम है चाहे जौन प्रणाली संबंधित काम बा ओके बढ़िया से जागरूक होके जान जा।
1: आ ये देखा है कहला है ना बिरजू भैया तर ई जो नई रोशनी बतौला है ना ओकरे संगे संगे और बहुत योजना आई देखा कुछ हमहूँ जाना था जो हमारे बुद्धि भगवान दे ले बता देते।
0: हाँ भैया बतावा।
1: देखा देखा कुछ एक ठे योजना है ना कि सीखो और कमाओ योजना, इनमें देखा कौशल विकास प्रदान करके जो महिला बहन लोगन के उनके रोजगार से सीधे जोड़ल जाला ताकि वो हुनरमंद हो जाए, उनके हाथे में कोनो हुनर हो जाए कौशल विकास से ट्रेनिंग ले करके आ वो अपन विकास करत हैं जो ना। ओकरे संगे संगे देखा इहो बा ना कि देखा कुछ बहन लोग हैं जो ना अल्पसंख्यक समाज का जो ना स्कूल में ना जानी मदरसा में ना जानी स्कूल छोड़ देवे नहीं तो उनके लिए देखा नई मंजिल योजना भी चलत है जिनमें जो ना कि उनके कौशल विकास का प्रशिक्षण के साथ साथ उनके जो ना कि शिक्षा से जोड़े का प्रयास जो
0: उनके
1: ना
0: भैया औपचारिक शिक्षा
1: हाँ
0: भी दहल जाते।
1: दहल जाते हो जो ना, आ ऐसे जो ना कि वो अपन विकास करके अपने परिवार के देखत हैं समाज के देखत हैं अपने दोनों परिवारन के जोड़त हैं, तक कुल मिला के देखा कहम ना कि सरकार तरह तरह की योजना चलौले है अब ही बहुत योजना
0: आ
1: है।
0: देखा भैया कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण ले बदे महिला लोग के 33% का छूट भी बा।
1: हाँ ये बात देखा बहुत अच्छी बात बतौला हा देखा ये दोनों हमारे दिमाग में ना रहला लेकिन बता देला बहुत अच्छा खेला। आ देखा यो कहम ना कि बिरजू भैया कि जोन उस्ताद योजना चला था जो न महिला बहन लोगन के लिए उनमें भी देखा जोन महिला बहन शिल्पकार हैं चाहे दस्तकार हैं उनमें उनके 33% का लाभ दे करके उनके सहायता प्रदान करल जाता, जैसे ना कि वो पारंपरिक जो उनकर हुनर बा जैसे वो करत आवत बाणी जो ना अब ओके थोड़ा और विस्तृत स्तर पे ले जाके बढ़िया काम करें या बढ़िया कमाई भी करें।
0: आ देखा एक भैया साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना है,
1: हाँ
0: ये योजना में न जवन छात्रा

0: जौन बाणी अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा प्राप्त अगर करत हैं तो उनके बदे भी सरकार वित्तीय सहायता भी देत बा।
1: हाँ इहो सही बात कहला हा। आ संगे संगे देखा यो के बिरजू भैया ना कि देखा जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम चलत है ओकरे तहत भी देखा जो अल्पसंख्यक समाज के बहन लोग हैं उनके देखा उज्ज्वला योजना में आ प्रधानमंत्री आवास योजना में चाहे शहर का होगा चाहे गांव का होगा ये लोग के भी देखा प्राथमिकता के आधार पर लाभ पहुंचावल जाता है। तो ई कुल देखा मिला के जो है ना कि एकर मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में जौन अल्पसंख्यक समुदाय के बहन लोग हैं उनके जो है कि हर तरह से आत्मनिर्भर बना करके और उनके आगे बढ़ावा का सरकार का उद्देश्य
0: आप
1: है।
0: देखा भी छात्रवृत्ति के साथ साथ ना
1: हाँ
0: एक और हमार सरकार का पहल बा
1: हाँ हाँ
0: NMDFC ऋण योजना।
1: हाँ हाँ हाँ
0: ये योजना के समझ ला कि उद्देश्य है कि कम ब्याज दर पर हमार सरकार ऋण मुहैया करावे ले आ स्वरोजगार के खातिर माइक्रो क्रेडिट और टर्म लोन के जरिए
1: हाँ
0: अपन
1: हाँ हाँ
0: व्यवसाय शुरू करे का वित्तीय सहायता हमार भारत सरकार
1: तो
0: दे दे।
1: कहे के मतलब तो रही है बिरजू भैया हम समझत ही का कहल चाहत हुआ कि मतलब हर तरह के सहायता उनके चाहे पढ़ाई के हो गए चाहे रोजगार के हो गए और चाहे जो है कि दस्तकारी के हो गए शिल्पकारी के हो गए हर तरह का सहायता अल्पसंख्यक समाज के बहन लोगन के सरकार देते आ बहन लोगन के देखा एकर लाभ भी उठावे के चाहिए।
0: एकदम लाभ उठाओं भैया, अपन भविष्य के संवारें, अपन बाल बच्चन के पढ़ाओं लिखाओं सुदृढ़ बनाओं। तो ये
1: हाँ
0: भैया देखा बात बत कही तो हुई हो
1: हाँ
0: लेकिन तनि हई एक ठे संदेश है पंच लोग की सुनवा दे भैया।
1: सुनवा दा
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: देखा मोहन भैया, सनेस तो होगल हो,
2: हाँ।
1: लेकिन भैया आज के बातचीत में
2: हाँ
1: का सुनवाओ था तनी पंच लोग के।
2: देखा ये कहमने कि देखा किसान भाई लोग तरह तरह के नगद खेती करे ना, आ नगद खेती के मतलब ये कि जो ना कि साझे के तोड़ला बिहान ले जाके सट्टी में पहुंचा देला, 10 रुपया हाथे में लेके घरे आ गिला,
1: नगद के भैया आमदनी।
2: हाँ तो देखा तरह तरह के उसमें जो ना सब्जी से लेकर के फल से लेकर के फसल से लेकर के हर तरह के जो ना कि किसान भाई लोग खेती करत हुआ।
1: हाँ भाई, जैसे दो पैसा आ जाए
2: जो ना कि आउ देखा जरूरी भी है। तो देखा वही जरूरी में देखा एक ठे खेती हुआ जो ना केला का खेती, समझला। तो केला का खेती जो ना कैसे होके का ओकर व्यवस्था होके ऊपर कैसे कब बुआई होके ये सब का जानकारी देखा जो ना कि ये डॉक्टर सुधाकर सिंह भैया हुआ और उनसे देखा अपने दिनेश कुमार सिंह भैया बतियोले हुआ, तो हूँ सुना किसान भाई लोग भी सुना।
1: हाँ पंच लोग सुना।
3: डॉक्टर सुधाकर सिंह, आप कृषि विज्ञान केंद्र में उद्यान विशेषज्ञ रह चुकल बाटे। आज हम आपसे केला के बागवानी के संबंध में जानल चाहब कि अगर किसान भाई बाग लगावे चाहते हैं केला के, तो वो कौन तरह से लगावे, कौन कौन सी बात उनका ध्यान में रखे चाहिए।
4: केला जो है बागवानी फसलों में एक प्रमुख फसल है, बहुत प्राचीन काल से लगाई जाती है। इसका प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन के साथ साथ पोषक तत्वों की मात्रा भी इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। यह 12 से 14 महीने की फसल है, कम समय में अधिक रिटर्न देती है किसान को। इसके लिए जो सबसे पहले कि एक अच्छी भूमि का चयन करें, जो मतलब उत्पादक जमीन हो, जीवांश युक्त हो और जल निकास की समुचित व्यवस्था हो तथा साथ में सिंचाई की भी अपनी व्यवस्था हो। इसके लिए आपको खेत की तैयारी मई के महीने में, अगर किसान भाई ढांचा बो सकते हैं हरी खाद के रूप में, ढांचा सा नहीं बो करके एक महीने से सवा महीने की फसल जब हो जाए तो उसकी पलटाई कर दें और खेत को पूरी तरह से समतल कर दें। यहाँ विभिन्न प्रजातियों में विभिन्न दूरी पर लगाने की संस्तुति की गई है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र से। जैसे राबुस्टा प्रजाति है, जो बढ़ने वाली प्रजातियां, उनको 2-2 मीटर पर। अब थोड़ा सा ड्वार प्रजातियां आ गई, जैसे बसराई ड्वार्फ है, हरी छाल है, G9 केला है, ग्रैंड नेने है, कैंपियर गंज है। ये सब प्रजातियां जो अधिक उत्पादन देने वाली है, इनको जो है सघन बागवानी के रूप में लगाने की संस्तुति की जाती है।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो इनको जो है 2 मीटर कतार से कतार की दूरी और पौध से पौध की दूरी जो है 1.5 मीटर की दूरी पर लगाने की संस्तुति।

0: किया। अब इसके लिए आपको इतनी दूरी पर कतारें करके कतार की दिशा जो है उत्तर से दक्षिण तरफ करना चाहिए, जिससे हवा क्रॉस कर जाए। उसके बाद 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर गहरा, अगर अच्छी जमीन है तो इतने से काम चल जाता, नहीं थोड़ा सा अगर मीडियम जमीन है तो 45-45 सेंटीमीटर घनफीट का गड्ढा खोदना चाहिए। गड्ढा खोद करके एक सप्ताह खुला छोड़ देते हैं मई के महीने में, फिर सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम एक गड्ढे में 15-20 किलो, साथ में नीम की खली 250 से 500 ग्राम तक, और कार्बोफ्यूरान 20 से 25 ग्राम प्रति गड्ढा डाल करके गड्ढे को अच्छी तरह भर देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये तो गड्ढे तथा खेत की तैयारी की बात हुई। उन्नत प्रजातियां में मैंने बताया कि G9 इस समय सबसे अच्छा लोकप्रिय केला की प्रजाति है, जिसकी फलियां भी बड़ी होती हैं और रोगों के प्रति विष में अवरोधी पण है। और या हरी छाल का मिल जा, बस राइड वाल जिसको बॉम्बे ग्रीन भी कहते हैं, ये प्रजातियां भी मिल जाती है। दूसरा इस समय सबसे अच्छा जो है टिश्यू कल्चर केला, जो ऊतक संवर्धन से तैयार किया जाता है, तो उसमें डिफिनिट एक ऊंचाई का होता है, पौधा गिरने वने का वो नहीं रहता है।
1: अच्छा,
0: और उसमें रोग बीमारियां भी नहीं आती, फलियां एक समान आती है।
1: हाँ।
0: कम समय में तैयार हो जाती है फसल, तो उसके राइजोम को लेकर लगाने की संस्कृति की जाती है। तो केला को जो है जून के लास्ट में या जुलाई के महीने में लगाने की संस्तुति की जाती है। इसके लिए जो अच्छे कंद है, जिसको राइजोम कहते हैं, कम से कम 500 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक के कंद जो है लेकर के, और उसमें सतर्कता ये बरतनी कि दो तरह के इसके राइजोम होते हैं, एक वाटर सकर होता है, दूसरा होता है स्वाट सकर। वाटर सकर देखने में तो बहुत मजबूत होता है, पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती है लेकिन फलत अच्छी नहीं करता है।
1: अच्छा,
0: इसके लिए जो तलवार नुमा पत्तियां होती है, जो नुकीली पत्ती वाली होती है, जिसको स्वाट सकर कहा जाता है, उनके कंद को लेना चाहिए। और किसी जो सरकारी केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं या ICR का कोई सेंटर है, वहां से इनके सकर्स को लेना चाहिए, या टिश्यू कल्चर से जो तैयार किए गए हैं उस विधि से तैयार किए उनसे कंद लेना चाहिए, और लेकर के इसको शोधित करके टाइकोडर्मा विरिडी या हार्जेनियम जो भी प्रजाति उपलब्ध हो जाए कृषि विभाग द्वारा, 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना लें बड़े बर्तन में, 100-200 लीटर के बर्तन में घोल बना करके कंद को आधे घंटे के लिए डुबो दें, जिससे इनका रोग रोधन हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फफूंद जनित बीमारियां, वायरस की बीमारियां आती हैं। इनको शोधित करके छाया में पेड़ के नीचे सुखा लेना चाहिए, हार्डनिंग करके फिर शाम के समय जो गड्ढा आपने तैयार किया है उसमें इनकी रोपाई करनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: रोपते समय ध्यान दें पॉलिथीन में आया हुआ पौधा तो पॉलिथीन को हटा दें, सिर्फ कंद को लगाएं, और कंद को लगा करके कम से कम 1 इंच नीचे मिट्टी की सतह से दबा दें, और उसके बाद हल्की उस खेत की पूरी सिंचाई कर दें। इस तरह से जब आप केला लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ जो है शुरुआत से ही अच्छी हो जाती है।
1: तो सिंचाई तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगा।
0: हाँ, केला को महक धान पान और केला तीनों पानी के चेरा, इनमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो बरसात में तो उतना पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठंडी में भी 10 दिन 15 दिन पर, लेकिन गर्मी में 6 दिन 7 दिन के अंतर्वल पर। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कर दिया कि आप ड्रिप इरिगेशन अगर किसान लगा लेता है तो उसमें 25 से 30% पानी की बचत तथा उत्पादन में भी 40% का असर पड़ता है।
1: अच्छा,
0: तो ड्रिप इरिगेशन कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर 50% अनुदान मिल रहा है, आप जो है 50% अनुदान पर जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपने खेत में लगा लें, जिससे आपको कम पानी में और फसल के उत्पादन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसका एक फायदा होता है कि पूरे खेत में पानी फ्लडिंग ना होकर के और सिर्फ पौधे को मिलेगा तथा खरपतवार की उतनी समस्या नहीं आएगी।
1: लेकिन मेड़ और चढ़ावे में दिक्कत ना है?
0: नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मेड़ चढ़ाने के बाद पाइप को फैला दीजिए किनारे किनारे, पहले जो है बंड चढ़ा दीजिए, क्योंकि अर्थिंग तो करना पड़ेगा, क्योंकि केला जब फल लेता है तो अपने घर के बाहर से एक तरफ झुक जाता है, क्योंकि जो अच्छी प्रजातियां हैं G9 उसमें कम से कम 30 से 40 किलो तक एक एक घर होते हैं, 250 से 300 ग्राम तक एक एक फलियां होती हैं।
1: हाँ।
0: तो ये सावधानी बरतें कि जो बरसात के बाद जो है उसमें मिट्टी चढ़ा दें, जब 3-4 महीने की फसल हो जाती है तो मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने के बाद मिट्टी चढ़ाते हैं लोग 60 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर चौड़ाई में जो है 20 नाली खोदते हैं, नाली की मिट्टी दोनों तरफ पौधे के ऊपर डाल देते हैं, तो मिट्टी भी चढ़ जाती है और आपको पानी देने में भी सुविधा हो जाती है।
1: अच्छा, कौन सहारा वहारा?
0: सहारा देने की वही बता रहे कि इसमें जो प्रमुख कार्य है, क्योंकि फल बाहर से पौधा लटकने लगता है या बरसात में तेज हवा चलती है तो झुक जाता है, तो बांस की दो बांस का जो है बल्ली लेकर के इसको क्रॉस में बांध देते हैं और पौधे को सपोर्ट दे देते हैं।
1: अच्छा,
0: कि जिससे पौधा गिरने ना पावे, ये करना चाहिए। साथ में सूखी पत्तियां जो होती हैं, जो पुरानी पत्तियां होती हैं सूखने लगती हैं, इस पर रोग पनपने लगता है, तो इनको हम हमेशा हटाते रहना चाहिए, जला देना चाहिए, जिसको ट्रेसिंग कहते हैं। इसके अलावा आप डिसबडिंग, जैसे केला फल गया 12 महीने के बाद, इसमें 10 महीने के बाद फूल आ जाता है, तो उसका जो अगले वाला डंठल होता बढ़ता रहता है, अननेसेसरी जो है खुराक लेता रहता है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो आगे वाला भाग होता है उसको कट कर देते हैं।
1: अच्छा, उसमें छोटा छोटा फली भी आ जाती है।
0: हाँ, फली आ जाती, तो अगर वो बढ़ता रहेगा तो फली मोटी नहीं होगी। तो अगले भाग को जो नर पुष्प होता है उसको काट देते हैं कि अब आगे न बढ़ने पाओ।

0: खुराक पौधा ले रहा है, मैंने पहले बताया कि बहुत हैवी फीडर क्रॉप है, इसको बहुत खाद की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए लगाते समय भी खाद देना चाहिए, साथ लगाने के दूसरे महीने, चौथे महीने, छठवें महीने, आठवें महीने मुख्य रूप से खाद देने की संस्तुति की जाती है। इसमें 600 ग्राम जो है नेत्रजन और 500 ग्राम जो है फास्फोरस और वही फिर 600 ग्राम पोटास, ये तीनों को जो है चार भाग में बांट करके दूसरे चौथे छठवें आठवें महीने में देना चाहिए पौधे के पास।
1: अच्छा।
0: या अगर आप फर्टिगेशन कर सकते हैं तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, एक टैंक में लिक्विड फर्टिलाइजर भी आती हैं या नहीं आती तो इसको घोल बना करके पौधे में सप्लाई कर सकते हैं। दवा भी लोग डालते हैं और फर्टिलाइजर भी डालते हैं तो एक समान रूप से पूरे खेत में पानी भी जाता है, लेबर श्रमिक की बचत होती है तो आपकी लागत कम होती है और आय बढ़ जाती है। ये नई तकनीकी है कि किसान भाई ड्रिप इरिगेशन लगाएं, फर्टिगेशन लगाएं, साथ में केले के ऊपर देखेंगे जब फलियां लग जाती हैं तो तमाम बीटल्स आ जाते हैं, काला काला धब्बा कर देते हैं, एंथ्रेक्नोज बीमारी आती है, तो इसको आजकल जो घार होती है उसको ढकने के लिए जो है पतला थिन कपड़ा है जिसमें एयर पास तो करती है और धूप भी जाती है तो इसके एक बैग टाइप का बना करके बैगिंग कर देते हैं, पूरे घर के ऊपर चढ़ा देते हैं।
1: अच्छा।
0: मैंने भी अपने केंद्र पर ट्रायल किया था, मिला था मुझे ऑन फार्म ट्रायल तो उसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा था।
1: अच्छा।
0: बीटल का एकदम अटैक नहीं था, फल बिल्कुल साफ थे। इसके बाद जो है बनाना बीटल के साथ साथ देखे होंगे इसमें पनामा बिल्ट, इसको किला का सूखना कहते हैं
1: जी,
0: या सिंगाटोका डिजीज जो वायरस द्वारा होता है कि पर्णचित्ती दाग इसको कहते हैं, पूरे केले की पत्तियां बैगनी पड़ के काली पड़ जाती हैं। तो इस सब के लिए एक तो बीज शोधन आपने किया, दूसरा बीच बीच में फफूंदी नाशक जैसे आता है कापर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के पानी की दर से 15 से 20 दिन के इंटरवल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। अगर रोग की अधिकता है नहीं तो 1 महीने 2 महीने पर करिए, अगर रोग ज्यादा है तो 15 दिन पर छिड़काव करते रहना चाहिए।
1: अच्छा, जैसे मान लें कि एक फल तोड़ाई कर लें और निकाल लें घर, फिर क्या करे पड़ेगा?
0: वही सबसे इसको हम कहते हैं डी सकरिंग करना। 6 महीने की जब आपकी फसल हो जाती है तो उस बीच में बहुत सारे जो है सकर्स निकलते हैं जिनको अवांछनीय कहते हैं, वो केवल खुराक लेते हैं, तो इनको निकालते रहना चाहिए बराबर। जब 6 महीने की फसल हो जाए तो रेटून क्रॉप के लिए एक जो मैंने बताया कि 60 सकर्स में आप पहचान लेते हैं कि जो नुकीली सकर्स निकली उसको छोड़ करके अन्य को काट देना चाहिए।
1: अच्छा।
0: तो जब आपकी फसल 14 महीने में घार कट जाते हैं तो मेन फसल को काट देते हैं, जो मेन जिस पर फसल लग रही है उसको काट देते हैं और इसको दूसरी फसल, तो ये आपका मतलब चक्र जो है चलता रहता है कि आपको
1: वही छोड़
0: उसी को फिर उसी तरह से आप खाद पानी देते हैं तो रेटून क्रॉप इसको कहते हैं, वो आपकी तैयार होती रहती है। तो किसान को
1: पेड़ी कब तक लेनी चाहिए?
0: तीन चार पेड़ी तक ले सकते हैं, उसके बाद उठा करके पेड़ नया। तो किसान को एक फायदा होता है कि उसी में से अच्छे सकर चुन करके अपनी नर्सरी में वो रखता जाता है, जो 60 सकर होते हैं उनके कंद को आप कहीं कलेक्ट करते रहिए तो उससे अतिरिक्त आय कर सकते हैं, बेच करके या अपने यहाँ फिर किसी खेत में दूसरे लगा दीजिए। जैसे एक खेत में आपने लगाया हुआ है तो जो सकर आप निकाल कर फेंकने की बात कर रही थी कि आप फेंक दीजिए, फेंक करके ना किसान जो वाटर सकर उनको तो फेंक दीजिए या जला दीजिए, लेकिन जो 60 सकर हैं उनको जो किसान जो चतुर किसान होता है वो कहीं छांट करके अपने नर्सरी में एग्रोनेट के नीचे या पेड़ की छाया के नीचे
1: वो का बेच भी सकते
0: हैं, बेच सकते हैं या अच्छे रेट पर अच्छे बिक जाते हैं
1: जी।
0: तो उससे आपका लागत कम हो जाती है और अगली फसल के लिए आपको पौध सामग्री मिल जाती है। ये सावधानियां जो है केले की खेती के लिए, और केला के लिए कहावत है कि केला रहे अकेला, अगर उसमें कई सकर निकल जाएंगे तो फिर पूरा कर लेंगे।
1: अच्छा, सब्जी वाला कुछ अलग रहा तो केला का?
0: हाँ, केला सब्जी वाला कैंपियरगंज है, हजारा केला है और एक विलियम्स, तीन प्रजातियां हैं जो सब्जी के लिए प्रयोग करते हैं किसान।
1: ये सब पकती नहीं का?
0: पकती है लेकिन वो टेस्ट नहीं होता उसमें, जो मीठापन केले का होना चाहिए, स्वीटनेस होना चाहिए, उन प्रजातियों में नहीं होता है
1: जी। उस रेट होकर भी अच्छा
0: रेट, अच्छा केला, कच्चा केला भी लगभग लगभग उसी रेट के बिकता
1: है, वही रेट में रहा,
0: वही रेट उससे कम नहीं बिकता है
1: जी।
0: लेकिन चूंकि अपने यहाँ प्रचलन में साउथ में तो उसको बहुत यूज करते हैं सब्जी के रूप में, अपने यहाँ उतना ज्यादा लोग यूज नहीं करते, जो बहुत शौकीन होते हैं ले जाकर के वो तल कर करके। हमारे यहाँ केले का हम लोग चिप्स बनवाते थे।
1: तो आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दें आज, केला के बागवानी अगर किसान भाई करे चाहते हैं तो कौन तरह से करें, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मोहन भैया।
3: हाँ बिरजू भैया, देखा भैया
2: केला के खेती के बारे में।
3: हाँ,
2: डॉक्टर सुधाकर सिंह और दिनेश कुमार सिंह कितना बढ़िया उनसे पूछला। हाँ
3: हाँ,
2: कितना बढ़िया ऊपर आए के बतौला भैया।
3: देखा यो बात बताऊना है कि देखा एक घरी जो है ना कि केला का खेती करे का सीजन भी चलत है जुलाई के महीना में, में जेके केला खेती करे के बाद अपन केला लगावत बा, खेत के तैयारी से लेकर के आज इतना ओकर प्रक्रिया हुआ, सबकर जानकारी देखा जो ना दिनेश भैया पूछना है, आज देखा सुधाकर सिंह भैया
2: देखा
3: बताऊंगा।
2: यो बताऊ ना भैया कि केला के खेती करे से पहले
3: हाँ।

0: वही से ही तैयारी शुरू कर दे के, जुताई कह के बढ़िया से खाद गोबर माटी में दे के
1: हाँ
0: आ ओके बढ़िया से विधि से ओके बोआई करे के बदे बताऊंगा। हाँ
1: अच्छा, तो ये तो बात हो गई, लेकिन अभी है कि केले की के खेती पर रबा कि आगे भी बढ़वा।
0: नहीं नहीं भैया देखा अब पंच लोग भी जो होते हैं कि भैया कुछ मरमंसान लोग कर रहे हैं, खाली बत कहिए मन की सुनवाई है लोग।
1: तो देखा ये डॉक्टर ज्योति सिन्हा भाई, नहीं इनकर गौनैया तो हूँ सुना, पंच लोग भी सुना।
0: एकदम सुनवा दा भैया।

0: मोहन भैया।
1: देखा राजा रहबो लड़िकवा बरिस दिनवा, ये देखा डॉक्टर ज्योति सिन्हा बहन के देखा गौनई रला आ कितना बढ़िया गौनई सुनौनी कि दिन भर का थकान जोन रला ना,

0: एकदम भैया,
1: वो एकदम सब दूर हो गए एकदम से।
0: पांच लोग भैया एकदम बैठ के दुआरे पर मैं थकारी दूर कर ले भैया भैया।
1: हाँ तो देखा आप कहब ई ना कि बिरजू भैया कि हमन के देखा लगे हाथे जो ना कि काल जो अपने पंचायती में जो कार्यक्रम होए वाला है ओकर भी जानकारी अपने किसान भाई लोग के दे देवे के चाहिए।
0: तो देखा भैया, कल बिहान अमन की 6:05 पर
1: हाँ
0: खेती के बातें में विषय रही मूंग की खेती,
1: अच्छा
0: और ये विषय पर जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह भैया।
1: अच्छा और तो एक जानकारी हमू दे दही
0: भैया सांझ के बेला का तू बताया था पंच लोग भैया लोग
1: देखा
0: को।
1: साझी के जो अपन कृषि कृषि जगत कार्यक्रम होला ना 6:30 पर उनमें देखा बातचीत सुनवाओल जाई जैसे अभी सुनला है ना कुछ समय पहले कि केले का खेती का बातचीत वैसे ही देखा अब आंवले का बागवानी कैसे करल जाए ये विषय पर जो है बातचीत सुनवाओल जाई डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से सतीश कुमार यादव भैया का बातचीत है तो सुनिया पंच लोग भी सुनिए आई बड़ा देखा नगद के बत कही एक बात बता देती
0: हाँ
1: एक
0: भैया,
1: एक सुनिया जरूर जो ना आ देखा।
0: ये भैया देखा बात बत कही तो बता देने जा,
1: हाँ
0: लेकिन है देखा हो बरसात के दिन चलत है जल्ला
1: हाँ ये
0: आए में देखा हमरे किसान भैया लोग के देखा हो इतना लोग काम धंधा में भिरायल रहन लोग,
1: हाँ
0: तो हम तो कहब कि भैया देखा काम तो जिंदगी भर रही हो लेकिन अपन
1: अरे
0: सावधानी भी बहुत
1: अरे
0: जरूरी है।
1: भाई जैसे जिंदगी रही तब न कमवा करबा।
0: जान है तब जहान भैया,
1: हाँ
0: तो कहीं भी जाए अन्हारे तो लाइट ले लें, टार्च जेके कहल जाला,
1: हाँ
0: आ डंडा उंडा भी एक आठ ले लें भैया, ताकि किरौना फतिंगा भी तो निकलने समय न भैया।
1: आ देखा गोड़े में कुछ जरूर रखी जूता चप्पल पहले रहें इना कि
0: हाँ,
1: बिना नंगे पाँव चल दें खेते
0: अब
1: में।
0: मान लीजिए से बरसात दिन ब खेते डाड़े बाण, तो हम कहब कि नहीं जूता चप्पल बात टारचवा रही लइटिया, तो जान न जे किरौना फतिंगा में कि भाई
1: हाँ
0: का आगे बा ना बा।
1: आ देखा यो कहा हमने कि देखा अगर गोजी ले ले हुआ ना डाणे मेड़े जात हुआ या खेते से वापस घरे आवत हुआ तो देखा तनी ठोकर ठठावत चले।
0: हाँ
1: हाँ
0: एकदम सही कला भैया कि
1: कारण देखा
0: हाँ
1: ये है ना कि बिरजू भैया देखा कारण ये घड़ी है कि देखा जितना छोटा मोटा जीव जंतु हो ना कुल खेते से निकल के डणवे पे आके बैठा ना।
0: हाँ ठोक ठठा देले उन्हों के आहट मिल जे, अपन हट बढ़ जे भैया,
1: हाँ
0: देखा जान का सबके मोहे हो।
1: हाँ
0: हाँ तो हम तो कहब कि भैया देखा सावधानी बहुत जरूरी है।
1: आ देखा एक बात और देखा बतावल चाहती देखा बिरजू भैया
0: बताओ बताओ मोहन
1: देखा
0: भैया।
1: ये कहम ना कि देखा बिहाने दिसे एक जानी यार ना जानकारी हमें देना है कि देखा राती के लोग जो है कि सुतर हैं खटिया बिछा करे अगर देखा राती के कहीं उनके उठा के जरूरत पड़ल तो झटका में उठ के चल दिया लेकिन देखा ऐसा ना करे के चाहिए भैया पहले जो ना अगर राती के उठा के जरूरत पड़ गई खटिया पड़ ले तो तनी खटिया के नीचे भी देख ला आ तनी अगल बगल भी देख ला फिर ओकरे बाद उठा।
0: हम तो कहते ये भी हर घड़ी अपन लठिया डंडवा लइटिया मूर्तरिये रखा ना, का
1: हाँ
0: दिक्कत
1: हाँ
0: है।
1: रख ले रहा तनी
0: हाँ
1: वो से सुविधा रही।
0: हाँ तो ये भैया देखा हो
1: हाँ
0: मोहन भैया, हमारे के बात बत कही करत करत पता न चल समय देखा निकल गिल हो, आप
1: हाँ
0: पंच भैया लोग से हमन के आज्ञा लहले के काम बा, आ
1: हाँ
0: हमनों के देखा सरसों के घरे दुआरे आड़ धैले के काम
1: हाँ
0: बा।
1: ये एकदम सही बात कला
0: हाँ
1: तो
0: तब
1: हाई
0: मोहन
1: अपन
0: भैया तब चलल जाओ ना,
1: एकदम चला भैया
0: तब
1: छाता उठा
0: पंच
1: ला पहले
0: हाँ
1: छातावा ले
0: हाँ
1: ला
0: हाँ हाँ लेते भैया, तब पंचो
1: राम राम।
0: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे एक किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत। यही आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म संग्राम से, आवाजें कुमार सानू और सुनंदा की, शब्द रचना है समीर का और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म सनम से, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक, गीतकार समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म दिलवाले से, आवाज कुमार सानू की, गीतकार समीर और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यही आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार रीता देवी पत्नी राम अनंत यादव, जो ग्राम विशनपुरा पोस्ट विशनपुरा थाना शहाबगंज जनपद चंदौली की रहने वाली हैं, ये दिनांक 22 जून सन 2026 को अपने तीन बच्चों रवि उम्र 8 वर्ष, रिया उम्र 5 वर्ष और राज उम्र 24 दिन को लेकर दोपहर 1 बजे अपने घर से मार्केट के लिए गईं और लापता हैं। रीता देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 28 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा लंबा, आंखें व बाल काले, लंबाई 4 फीट 9 इंच। लापता होने के समय ये पीले रंग की साड़ी पहनी थी। रीता देवी और इनके तीनों बच्चों के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो वो कृपया अपने निकटवर्ती थाने या कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार मोहम्मद साहिल पुत्र जमील अहमद, जो

भिसौड़ी दुल्हीपुर थाना मुगल सराय जनपद चंदौली के निवासी हैं। ये दिनांक 12 जून सन 2026 को दिन में 3 बजे से लापता हैं। मोहम्मद साहिल के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 18 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, इकहरा बदन है। मोहम्मद साहिल के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो वो कृपया अपने नज़दीकी थाने या कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार अनुपमा कुमारी पुत्री दिनेश यादव जो ग्राम महुरा प्रकाशपुर पोस्ट बरहन थाना धीना जनपद चंदौली की निवासिनी हैं, ये दिनांक 14 जून सन 2026 से कहीं लापता हैं। अनुपमा कुमारी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 20 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा गोल, आंखें व बाल काले, शरीर की बनावट सामान्य पतली है, लंबाई लगभग 5 फीट है, जो लापता होने के समय नीला स्कर्ट और हल्का नीला जींस पहनी थी। अनुपमा कुमारी के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो वो अपने निकटवर्ती थाने या कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करने की कृपा करें। खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप शाम 7:20 पर सुनेंगे, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। हमारा अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में 3 गुना हुई प्रदेश के आम नागरिक की आय, 9 लाख लोगों को मिला रोजगार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को गति देगा वन नेशन वन इलेक्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और आषाढ़ मास की अमावस्या पर चित्रकूट में उमड़ी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर की कामदगिरी की परिक्रमा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। आज लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2017 से अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और

0: सुशासन के कारण देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। आज प्रदेश गन्ना, चीनी और एथेनॉल उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इन 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की।
1: हमने 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को प्रदेश के अंदर 3 गुना से अधिक उनकी उपस्थिति देश के अंदर शासकीय सेवा हो या फिर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कार्रवाई हुई है उनमें उनकी उपस्थिति वहाँ हुई है। ये आंकड़े वह है जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान के उस संकट से उभारने में मदद की।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी व्यवस्था होगी जो समय, पैसों और संसाधनों की बचत करेगी। बैठक में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और राष्ट्रहित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है जिसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी और विकसित भारत के संकल्प को गति मिलेगी। वहीं कृषि मंत्री सूर्य शाही ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराना देश हित में है, इससे बार बार चुनाव पर होने वाला पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम होगा और जनता को भी सुविधा होगी।
2: 1952 से लेकर के 1967 तक देश के सभी पार्लियामेंट्री चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। एक साथ चुनाव होने के नाते समय की बहुत बड़ी बचत हुई और आर्थिक रूप से भी जो आज भारी दबाव पड़ रहा है बार बार के चुनाव से, उससे उस समय राहत थी हमारे देश के भीतर। वन नेशन वन इलेक्शन का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ हों तो देश की विकास की गति तेजी से बढ़ेगी और आर्थिक गति भी उससे बढ़ सकती है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 30वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस समारोह में 279 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। इस दौरान उत्कृष्ट शिक्षकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों और स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ नारायण प्रसाद को गवर्नर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाएं चला रही है जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने R3 भाषा मूल्यांकन का फ्रेमवर्क जारी किया है जिसके तहत तीसरी भाषा यानी R3 का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर की आंतरिक परीक्षाओं के जरिए किया जाएगा। इस साल R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि जो छात्र R3 पास नहीं कर पाते हैं उन्हें भी 10वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन 10वीं कक्षा में रहते हुए उनके लिए इसे पास करना आवश्यक होगा। CBSE ने स्पष्ट किया कि 8वीं कक्षा वाला 3 भाषाओं का कॉम्बिनेशन 9वीं कक्षा में भी जारी रहेगा और इनमें से किसी एक को R3 के तौर पर चुना जाएगा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एंटी करप्शन कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। पुलिस की टीम कल सुबह इनकी कस्टडी लेकर पूछताछ करेगी। वहीं आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर आज अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस चिपका दिया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण में OSD महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 3 जुलाई को जारी नोटिस के बावजूद लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा की ओर से कोई पत्रावली या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अब ADA ने उन्हें 15 जुलाई तक मानचित्र और अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि निर्धारित समय तक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
3: इनकी पत्नी सुप्रिया जी हैं, उनके द्वारा एक निर्माण किया गया है और उस निर्माण का नक्शा हमारे यहाँ से स्वीकृत नहीं है, इसीलिए जब चालानी कार्रवाई प्रस्तुत की गई है JEE के द्वारा तो उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई। पहली नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हुई इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई जिसमें 15 तारीख नियत। अब ये प्रोसीडिंग है जो नगर नियोजन अधिनियम 1973 है उसकी प्रोसीडिंग अगली कार्रवाई की जाएगी।
0: सुप्रीम कोर्ट की पहल पर वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के उद्देश्य से आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दोनों पक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं के साथ संबंधित पक्षकार भी मौजूद रहे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद भी किसी प्रकार की सहमति नहीं बन सकी और वार्ता बेनतीजा रही। बैठक के

0: बाद दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी विवाद का अंतिम समाधान न्यायालय के निर्णय से ही संभव है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चित्रकूट में आज आषाढ़ मास की अमावस्या मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी की परिक्रमा की। पेश एक रिपोर्ट।
1: आषाढ़ मास की अमावस्या के अवसर पर आज सुबह से ही चित्रकूट में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और भगवान मदगजेंद्रनाथ और कामतानाथ मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों और मठों में जाकर देवी देवताओं के दर्शन किए। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा का सिलसिला भी पूरे दिन जारी रहा। भक्तों की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र और आसपास के इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरों की मदद से की जा रही है। रामघाट, निर्मोही अखाड़ा, टेम्पो स्टैंड, यूपीटी तिराहा, चित्रा गोकुलपुर, परिक्रमा मार्ग तथा मेला क्षेत्र के अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 में हितधारकों को सुविधाएं देने के लिए इसके प्राविधानों में संशोधन किए हैं। पेश एक रिपोर्ट।
2: SOP संशोधन के अनुसार अब होम स्टे प्रतिष्ठान में कम से कम एक और अधिकतम 8 कमरे पंजीकृत कराए जा सकते हैं। 9 कमरों से अधिक भवन वाली इकाइयां इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 16 बिस्तरों वाली डॉर्मेट्री भी इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र इकाई मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑटो रिन्यूअल पंजीकरण समाप्ति की तिथि से 3 माह पहले पोर्टल पर कराया जा सकेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल ने सभी प्राधिकरण और विभागों को EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीनें चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। आज इस संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और सतत परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों के साझा प्रयासों से प्रदेश में आधुनिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जाए। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस दौरान उमस भरी गर्मी की स्थितियां बने रहने का भी अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में 3 गुना हुई प्रदेश के आम नागरिक की आय, 9 लाख लोगों को मिला रोजगार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को गति देगा वन नेशन वन इलेक्शन। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमा शंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और आषाढ़ मास की अमावस्या पर चित्रकूट में उमड़ी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर की कामदगिरी की परिक्रमा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 और 27 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम।

कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म यार मेरा से, आवाजें सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म गोरा और काला से, आवाजें मुकेश और लता मंगेशकर की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म बेगुनाह से, आवाज किशोर कुमार की, शब्द रचना है निदा फाजली की और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म पारस से, सुमन कल्याणपुर की आवाज और कमल जलालाबादी के बोल और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म पारसमणि से, आवाजें मुकेश और लता मंगेशकर की, फारूक कैसर के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म मेरी हुजूर से, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

0: दिल भर, ओ दिल भर, दिल भर हमने
1: अपना दिल लगाना। कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म गंगा की लहरें से, आवाज किशोर कुमार की, मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना और चित्रगुप्त का संगीत।

इसी गीत के साथ रसरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:14 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं ए हरिहरन।

इसी नगमे के संग सुगम संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज के कलाकार थे ए हरिहरन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 और 14 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रस माधुरी। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म तीसरी कसम से। आवाज मुकेश की, रचनाकार शैलेंद्र और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म बॉम्बे का चोर से। आवाज किशोर कुमार की, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म खानदान से। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि।

0: संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म असली नकली से। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे

डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म दुलारी से शमशाद बेगम की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद का संगीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म बेदर्द जमाना के आ जाने से। आवाज मुकेश की, गीतकार भरत व्यास और संगीतकार कल्याण जी आनंद।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम रस माधुरी यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने

0: कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकुलस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और ये फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौते के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की

0: अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
1: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title

0: The voice of justice is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional trust.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chase a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
4: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
3: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said The deputy chief of mission of the embassy of Iran in New Delhi was

0: Minister of Civil Aviation Kinjarapura Mohan Naidu announced that Dholera International Airport will be operational within 3 months. Talking to media after reviewing the progress of the project, the minister said 80% project work completed and the government aims to complete the remaining terminal construction and secure the necessary licensing with the next 3 months to commence flight operations. Benchmark domestic equity indices ended around 0.7% lower today. We have a report.
1: Sensex fell by 561 points to close at 77,055, while Nifty declined by 159 points to settle at 24,052. In the broader market on the NSE, the Nifty Midcap 100 index slipped 0.44%, while the Nifty Smallcap 100 index fell nearly 1%. In the foreign exchange market today, the rupee depreciated by 58 paise to close at 96 rupees and 20 paise against the US dollar. With Abhishek report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: On to sports. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In cricket, England have set a target of 259 runs for India in the first of the three-match ODI series at Edgbaston, Birmingham. In reply, India were 97 for 2 in 19 overs when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. And in men's cricket, India chased target of 259 runs set by host England in first ODI at Birmingham. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। भारत ने आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और आजादाना नकलो हमल की बात दोहराई है। उसने महाजराई के देरीना हल की खातिर ईरान और अमेरिका से एक बार फिर बातचीत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहिदा कल से नाफिज हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई फराहम होगी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी की मुद्दत में मजीद 10 दिन की तौसी कर दी है। फीफा आलमी कप में आज रात टेक्सास में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और मर्दों के क्रिकेट में बर्मिंघम में पहले एक रोजा बैन अलावामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत की जीत के लिए 259 रन का निशाना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों और अमरीका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफे के पेश नजर वो मगरबी एशिया के वाकयात पर करीबी नजर रख रही है। वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात दोहराई कि भारत आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज बिला रुकावट नकलो हमल और तजारती सरगर्मियों की हिमायत करता है।
3: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
2: भारत ने आज आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान दो बहरी जहाजों एमटी अलबहिया और एमटी मोम्बासा पर हमलों पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। इन दोनों बहरी जहाजों में मजमूई तौर पर 46 अफराद सवार थे जिनमें 30 भारतीय मल्ला भी शामिल हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली में ईरान के सिफारतखाने के मिशन के नायब सरबराह को आज सुबह वजारत की जानिब से तलब किया गया था।
3: जो दो जहाज जिसपे कल रात

0: हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है, और मैं कह सकता हूँ कि जितने भी देश है दुनिया में उस सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ है उस सबसे ज्यादा नाविकों की हमारे देश की लोगों की जान गई है।
1: पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में एहतजाजों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में जारी एहतजाज उन इलाकों में पाकिस्तान के दहाइयों से चले आ रहे सिलसिलेवार इस्तेहसाल, बुनियादी हकूक फराहम न किए जाने और इंतजामिया के जुल्म और जबर का बराह रास्त नतीजा है।
0: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तिजारती मुआहदा CETA कल से नाफिज हो जाएगा। इस तारीखी मुआहदे के तहत बरतानवी बाजार में 99% महसूल तक भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई हासिल होगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए कॉमर्स के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इकतसादी तिजारती मुआहदे को ये कहते हुए भारत के तिजारती सफर में एक फैसला कुन संगे मील करार दिया कि ये दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल पर मबनी इक्तिसादी शराकत दारी कायम करेगा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि भारत बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तिजारती मुआहदे का नफाज भारत के आलमी सतह पर मरबूत, लचकदार और मुसाबकती मईशत बनने के सफर में एक अहम कदम है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इस मुआहदे को अवाम पर मरकूज मुआहदे के तौर पर तैयार किया गया है जिसके फवायद पूरे मुआशरे को हासिल होंगे। CETA और DCC के एक साथ निफाज से भारतीय बरामदात के लिए अहम इम्कानात पैदा होंगे। भारतीय बरामदकारों को मुख्तलिफ शोबों में बरतानिया के महसूल मुकम्मल तौर पर खत्म होने से फायदा होगा। डिब्बाबंद खुराक पर 70% तक, समंदरी अशिया पर 21% से ज्यादा, इंजीनियरिंग साजो सामान और मोटर गाड़ियों के कलपुर्जों पर तकरीबन 18%, चमड़े और फुटवेयर अशिया पर 16% तक, टेक्सटाइल और कपड़ों पर तकरीबन 12% तक जो महसूल था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इससे बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदकारों की मुसाबिकती सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। किसानों, माहीगीरों, MSMEs और मैन्युफैक्चरर्स के लिए नए इम्कानात पैदा होंगे और आलमी वैल्यू चेन में भारत की पोजीशन मुस्तहकम होगी। दिल्ली से अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बड़ी पॉलिसी इस्लाह का ऐलान करते हुए कहा है कि अब जरई खाद रिवायती बंद डब्बों की बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट की जाएगी। भारतीय रेलवेज की जदीदकारी से मुतालिक असलाहत पर आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने आने वाली राख यानी फ्लाई एश के ट्रांसपोर्ट में भी बड़ी इसलाह का ऐलान किया जिसके तहत इसे खुले रेलवे वैगन्स के बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। रेलवे के वजीर ने मजीद कहा कि कंटेनर पर मबनी नए निजाम से लोडिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान होने वाली धूल की आलूदगी में कमी आएगी। जनाब वैष्णो ने कंटेनर पॉलिसी के तहत मरबूत लाइसेंस निजाम का भी ऐलान किया।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई एश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई एश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई एश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला तनाजे की रोजाना की बुनियाद पर समाप्त करने पर राजी हो गया है। ताहम भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त गुजारों की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें तनाजे से पहले की सूरत हाल बहाल करने के लिए उबूरी हुक्म जारी करने की दरखास्त की गई थी। पहले की सूरत हाल के मुताबिक मुसलमानों को मुकर्रर करदा दिनों में हिंदुओं की पूजा के साथ साथ जुमे के रोज नमाज अदा करने की इजाजत हासिल थी। بینچ نے ریاست کو حکم دیا ہے کہ وہ مذکورہ آراضی سے متصل ایک کھلی جگہ فراہم کرے تاکہ مسلم

फरीक जुमे के रोज दोपहर 1 बजे से सपहर 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा कर सके। बेंच ने वाजे किया कि ये इंतजाम आर्जी बुनियादों पर है जब तक के मामले का हतमी फैसला नहीं हो जाता। बेंच ने दोनों फरीकों से तहमुल बरतने की अपील की और इस मामले को इंतहाई हसास करार दिया। भारत कल से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वुजरा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस 2 रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वुजरा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत, जिसका उनवान है लचक, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारियत की तामीर, इसके तहत यह इज्तिमा होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान वुजरा समाजी तहफ्फुज को फरोग देने, मेहनत की मंडियों को बाजाब्ता शक्ल देने, खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने और अफरादी कुव्वत में उन्हें शामिल करने समेत 4 तरजीही मौजूदात पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट एलामिये को गौर खौज के बाद अपनाया जाएगा। इस एलामिया का मकसद ब्रिक्स ममालिक में मेहनत के बाजार की पॉलिसियों, मेहनत कशों की बहबूद, हुनरमंदी के फरोग और शमूलियाती रोजगार पर तआवुन को तकवियत देना है। इसके अलावा एलामिया का मकसद काम की बदलती दुनिया में लचक और पायदार तरक्की को फरोग देना भी है। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मस्नूई जहानत नौजवानों के हुनर को मौसर तरीके से निखार सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट से मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने स्किल इंडिया मिशन के तहत समाजी तहफ्फुज पहल के मुख्तलिफ हुकूमती इकदामात और प्रोग्रामों को नुमाया किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में जारी वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी SIR की मुद्दत में 10 दिन का इजाफा कर दिया है। कमीशन के नए शेड्यूल के मुताबिक हरियाणा और आंध्र प्रदेश में बूथ लेवल अफसरान BLO इस महीने की 24 तारीख तक घर घर जाएंगे। इससे पहले यह मुद्दत आज 14 जुलाई को खत्म हो रही थी। कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों का मुसविदा 31 जुलाई को शाया किया जाएगा, जबकि हतमी वोटर फहरिस्त की इशात 3 अक्टूबर को होगी। इंतखाबी कमीशन ने यह भी इत्तला दी है कि दोनों रियासतों में 31 जुलाई से 30 अगस्त के दरमियान दावे और एतराजात दाखिल किए जा सकते हैं। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि ढुलेरा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 3 माह में कामकाज शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम मुकम्मल हो चुका है और हुकूमत का मकसद आइंदा 3 माह में टर्मिनल की तामीर के बकिया काम को मुकम्मल करना और लाजमी लाइसेंस हासिल करना है ताकि परवाजों का आगाज किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने BJP के सीनियर लीडर रामचंद्र गौड़ा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने जनाब गौड़ा को कर्नाटक में BJP का एक अहम सुतून करार दिया, जिन्होंने जमीनी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने और पार्टी वर्करों की नस्लों को तैयार करने में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। जनाब मोदी ने सोगवार कुनबे और उनके हामियों से भी दिली ताज़ियत का इजहार किया। बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को वसत देने की जानिब एक अहम कदम के तहत भारत मालदीव आजाद तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। ये बातचीत गुज़श्ता हफ्ते वर्चुअल तौर पर हुई थी। कॉमर्स और तिजारत की वजारत ने कहा है कि तरफ़ैन ने बातचीत के सभी पहलुओं पर खातिरख्वाह पेशरफ्त की और मुख्तलिफ मामलात पर वसीतर इत्तेफाक हुआ है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल तक ओडिशा में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद और कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उसने मजीद कहा है कि कल तक बिहार में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम ने रात भर चले सिलसिलेवार हमलों की लहर के दौरान 5 रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया और उन्हें नाकाम किया। हालांकि दीगर कई मिसाइल और ड्रोन्स दिफाई निजाम में सरायत करने में कामयाब रहे और उन्होंने राजधानी कीव को निशाना बनाया। यूक्रेन की फिजाइया के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल और 25 ड्रोन्स ने मुल्क भर में 17 मकामात को निशाना बनाया, जिनसे मलबे के गिरने की भी रिपोर्ट है। कीव में हमलों की वजह से 2 गोदामों में आग लग गई और 1 स्कूल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि फ्रांस के सालाना वेस्टेल डे
तकरीबात में शिरकत के बाद से पेरिस में हैं।

0: कहा कि यूक्रेन और उसके बैन अल-अक़वामी साझेदार अगले एक साल के अंदर मुश्तका तौर पर कम लागत वाले और बड़े पैमाने पर तैयार किए जा सकने वाले दिफाई निजाम तैयार कर सकते हैं। फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के टेक्सास के डेलास स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। यह मैच जीतकर फ्रांस लगातार तीसरी मरतबा फीफा आलमी कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब स्पेन साल 2010 में ट्रॉफी जीतने के बाद पहली मरतबा फाइनल में पहुंचने की भरपूर कोशिश करेगा। क्रिकेट में बर्मिंघम के एजबिस्टन में खेले जा रहे 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 259 रन का निशाना रखा है। जवाब में आखिरी खबरें मिलने तक भारत ने 22 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 47 ओवर्स और 5 गेंदों में 258 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जो रूट ने सबसे ज्यादा 76 रन जबकि लियाम डोसन ने 68 रन बनाए। भारत की जानिब से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए। शुभमन गिल की क्यादत वाली भारतीय टीम को आजमूदाकार खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से मजीद तकवीयत मिलेगी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। भारत ने आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और आजादाना नकलो हमल की बात दोहराई है। उसने महाजराई के देरी नहल की खातिर ईरान और अमरीका से एक बार फिर बातचीत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तिजारती मुआहदा कल से नाफिज हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई फराहम होगी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी की मुद्दत में मजीद 10 दिन की तौसी कर दी है। और मर्दों के क्रिकेट में बर्मिंघम में पहले 1 रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत की जीत के लिए 259 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, वेव्स ओटीटी और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30:19 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम में पहला गीत है मनहर उदास की आवाज़ में।

0: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का STD कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: कार्यक्रम में अगली आवाज है अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता की।

0: संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: कार्यक्रम में अगली आवाज है लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

क्या सफर है और क्या सामान है, जिंदगी है और दिले नादान है, क्या सफर है और क्या सामान है, मेरे गम को भी

0: आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहनी सी चाह हो जैसे। आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहनी सी चाह हो जैसे। और लोग यूं छुप के प्यार करते हैं कि प्यार करना गुनाह हो जैसे।
1: चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है।
0: यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है। कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा।

0: जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, ना जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। ना जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। और सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगे, जिन्हें खबर ही नहीं कुछ वफा के बारे में।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में इस रविवार दिनांक 19 जुलाई को आप सुनेंगे जोड़ों का दर्द समस्या और समाधान विषय पर जानकारी। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल। और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 और बनारस का STD कोड है 0542। तो हमें जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम, आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम में अगली आवाज है सोनू निगम की।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम अंजुमन यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम अंजुमन में आज के कलाकार थे मनहर उदास, अनुराधा पौडवाल, बाबला मेहता, लता मंगेशकर, उदित नारायण, अल्ताफ रजा और सोनू निगम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में
1: है। हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
2: खेल दर्पण।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेल दर्पण का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं मिथिलेश श्रीवास्तव। आज के अंक की प्रस्तुति है आकाशवाणी बरेली की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो विशेष खिलाड़ियों से और जानेंगे इन खिलाड़ियों का खेल, कैसे इन्होंने मैदान पर अपना परचम लहराया और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित शर्मा है
0: जी,
1: और मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से बिलोंग करता हूं और मैं बरेली सेंटर में हॉकी कोच के रूप में प्रशिक्षित हूं।
0: बचपन में जो है यही पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से नवाब बनोगे और खेलने से खराब हो गए। तो आपकी लाइफ में क्या था?
1: मेरे लाइफ में भी ऐसा ही था। तो जो मेरे पिताजी थे वो मध्य प्रदेश पुलिस से अभी रिटायर हुए हैं
0: जी जी,
1: वो भी कबड्डी खेला करते थे और स्विमिंग खेला करते थे।
0: अच्छा,
1: तो उस तरीके से तो जैसे कि आजकल माहौल होता है, जो पहले क्रिकेट हम लोग, मैंने पहले सबसे पहले क्रिकेट ज्वाइन किया, फिर उसके बाद जो हमारे जो कॉलोनी था और कॉलोनी में एक दर्पण हॉकी स्टेडियम था,
0: अच्छा,
1: तो वहां पे हॉकी का काफी पुराना चलता था। फिर वहां जाके मेरे पिताजी वहां लेके गए, फिर वहां से मैं धीरे धीरे करके हॉकी खेलना स्टार्ट किया,
0: हॉकी खेलना शुरू किया। लेकिन
1: जी
0: क्रिकेट नहीं जमा आपको?
1: नहीं, क्रिकेट नहीं जमा। क्रिकेट थोड़ा सा अच्छा गेम है,
0: हाँ।
1: पर यह है कि बस क्रिकेट के लिए थोड़ा सा एक खिलाड़ी है वही बैटिंग आने के लिए काफी देर तक वेट करना पड़ रहा है और थोड़ा सा
0: कई बार नहीं भी आती है,
1: नहीं भी आती है।
0: हाँ। तो इसलिए आपको ये लगा कि हाँ हॉकी में भाई
1: हाँ
0: हमेशा आपको एक्टिव रहना है।
1: एक्टिव रहना है।
0: अच्छा, लेकिन फुटबॉल में भी तो ऐसा होता है?
1: हाँ, फुटबॉल भी खेला है हमने।
0: अच्छा,
1: फुटबॉल जो ऐसे कभी कभी जो बारिश होती थी उसका स्कूलों में और उसके बाद जो हमारे जो पास के पार्क वगैरह होते थे उसमें हम हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेला करते थे।
0: अच्छा, लेकिन हॉकी को फिर आपने क्यों चुना?
1: हॉकी को इसलिए चुना क्योंकि जब हम पहली बार वहां पे देखा, हमने वहां पे बाहर खड़े हुए कॉलोनी में खड़े हुए थे, पास में ही है कॉलोनी में हमारे, तो देखा वहां पे सर अगर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एक अविनाश भटनागर जी थे सर हमारे कोच, आज भी प्रैक्टिस करवाते हैं।

0: एक रईस कुरैशी जी थे, वो दोनों वहां पे प्रैक्टिस करवा रहे थे। हमने उनको देखा तो ऐसे ही खड़े हुए थे। फिर हमारे जो सीनियर थे उन्होंने बोला हॉकी अगर खेलना है ना, हाँ खेलना है, बोला आ जाओ। फिर वहां पे जो हॉकी प्रोवाइड करवा दी जाती थी, तो
1: अच्छा
0: वहां जाके एक दो दिन खेला, एक दो दिन खेला, उसके बाद जो हॉकी अच्छा लगा और कॉलोनी से भी काफी बच्चे जाते थे, तो खेलते खेलते वो हमारा मन लगने लगा
1: मन
0: उसमें।
1: लग गया एक तरह से, कहा जाए तो फिजिबिलिटी जो
0: हाँ
1: उपलब्धता आपके आसपास थी वो
0: वो,
1: हॉकी
0: हाँ
1: की
0: जो
1: रह सकती है।
0: एनवायरनमेंट वहां पे जो हॉकी का था, दर्पण में, दर्पण जो कॉलोनी है वो काफी सारा, मतलब हर तीसरे चौथे घर में से एक हॉकी खिलाड़ी है उधर।
1: अच्छा
0: हाँ काफी है।
1: बिल्कुल। तो और हॉकी की जहां तक बात की जाए, तो बचपन में आपने बताया कि पिताजी पुलिस में थे
0: हाँ
1: और स्विमिंग करते थे,
0: हाँ
1: स्विमिंग नहीं ट्राई किया आपने?
0: नहीं स्विमिंग नहीं किया, तो
1: अच्छा
0: वो स्पोर्ट्स से थे, तो उनका मतलब यही था कि बच्चे को खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल खेलना भी जरूरी होता है।
1: जरूरी है।
0: तो उनका ये कहना था कि आप पढ़ तो रहे ही हैं पर सुबह उठो कोई ना कोई एक गेम खेलो।
1: तो मतलब पिताजी का काफी एक
0: हाँ
1: सहयोग भी मिला
0: पिताजी
1: और
0: का
1: उनका
0: काफी प्रभाव
1: प्रभाव भी पड़ा,
0: भी रहा।
1: क्योंकि वो उनका नेचर भी था और
0: हाँ
1: उनका रूटीन भी था।
0: रूटीन भी था।
1: अच्छा, इसके बाद फिर जहाँ पढ़ाई की बात की जाए, खेल के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज किया आपने?
0: जब ऐसे मैं अभी जो असाई में कोचिंग कर रहा हूँ, तो मैं जब 9th क्लास में था, 8th क्लास में था, तो एक साई का ही सेंटर टीकमगढ़ में था।
1: अच्छा
0: तो टीकमगढ़ में मेरा चयन हुआ जो ट्रायल देने गए, तो वहां हमने हॉकी खेला। हॉकी खेलने के बाद फिर मैंने भोपाल में भी एक साई का सेंटर है वहां पे भी मैंने प्रयास किया, तो वहां पे भी मेरा चयन हुआ। फिर वहां मैं 3 से 4 साल, वहां चौहान सर थे,
1: अच्छा
0: वाई एस चौहान सर जो अभी रिटायरमेंट हो गए हरियाणा के थे, तो उनके अंडर में मैंने 3 से 4 साल वहां पे भोपाल में 2014 तक हॉकी खेली। उसके बाद जब हम आ गए, उसके ओवर एज हुए, तो उसके बाद फिर देखा, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब एक खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी जब वो पढ़ाई में जाता है तो थोड़ा सा बहुत चल जाता है, तो फिर धीरे धीरे थोड़ी सी मेहनत की और फिर थोड़ा और मेहनत की, फिर उसके बाद जो बैचलर होती है बीपीएड वगैरह वह किया, उसके बाद एमपीएड किया, फिर थोड़ा सर्टिफिकेट हो, जो हमारे सीनियर्स थे
1: जी
0: उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हाँ आप खेल बंद हो गया है तो थोड़ा इस लाइन में भी आप जा सकते हो, क्योंकि आजकल जो है स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो मेडल होता है, मेडल वालों के ही जॉब है। तो उसके बाद अगर आपके पास काफी सारे ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं वो जो एक मनोबल टूट जाता है उनका, जब खेल खेलने के बाद उनको जॉब नहीं मिलती है तो उनका मनोबल टूट जाता है, तो मैं तो उनको ये सबको यही बताना चाहूंगा, अगर मनोबल मत तोड़िए, उसके बाद आपके पास काफी लाइनें हैं, अगर आप उसमें आप घुस जाएंगे तो फिजिकल एजुकेशन में जब जाएंगे हॉकी के साथ साथ और दूसरे गेम के साथ साथ, तो काफी लाइन है, आप उससे टीचर भी बन सकते हो, आप कोच भी बन सकते हो, आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, तो काफी चीजें हैं। तो मतलब वहीं आप अपना गेम को ड्रॉप मत करो। ऐसे ही मेरे साथ मेरे जो सीनियर्स थे काफी, उन्होंने बताया मुझे कि हाँ अब तू बीपीएड कर, तो फिर मैंने बीपीएड किया जीवाजी यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला अब क्या है अभी तो जॉब नहीं मिल रही है, फिर उन्होंने बोला कि तू और पढ़ाई के, फिर मैंने LNIP से सर्टिफिकेट कोर्स किया, फिर मास्टर, फिर मैंने और पढ़ाई की, फिर LNIP में मास्टर डिग्री किया, फिर मास्टर डिग्री करने के बाद फिर सोचा कि हाँ
1: ये LNIP क्या है?
0: LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है,
1: अच्छा
0: जो
1: अच्छा
0: कि ये 1956 में बना हुआ था।
1: अच्छा
0: हाँ और भारत का मक्का फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है।
1: अच्छा
0: यहाँ से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, डायरेक्टर, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स प्रोफेसर होंगे अच्छे लेवल पे, वो इसी कॉलेज से पास आउट होंगे, और बेसिकली ये एशिया का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है
1: जी
0: फिजिकल एजुकेशन में, और कोचिंग में जैसे अपना NIS पटियाला माना जाता है। तो फिर वहीं से मैंने मास्टर डिग्री किया, मास्टर डिग्री के करने का जो घर ग्वालियर में ही था, तो वहां से डिप्लोमा भी करवाते हैं वहां पे, तो डिप्लोमा नहीं स्पोर्ट्स कोचिंग में, तो फिर मैंने वह डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग भी किया। जब वो डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर मैंने उसमें वैकेंसी आई हुई थी खेलो इंडिया सेंटर में, वहां मैंने अप्लाई किया, तो वहीं ग्वालियर में पास में जो वुमेन्स हॉकी अकेडमी है वहीं मैंने खेलो इंडिया सेंटर में ज्वाइन किया। जब मैं 2 साल मैंने वहां पे वर्क किया, उसके बाद फिर जो अपने जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SI, उसमें वैकेंसी आई, उसमें वैकेंसी के आने के बाद फिर मैंने वहां पे फिल किया, जो मैंने हॉकी इंडिया के लेवल 1 लेवल, जो हॉकी इंडिया ही कोर्सेज करवाती है, जो उसमें मतलब कोचेस के लिए लेवल 1 होता है, बेसिक होता है,
1: अच्छा
0: वो मैंने पास किया। उसके बाद लेवल 1 होता है वह मैंने पास किया, उसके बाद फिर हॉकी इंडिया के लेवल 1 पास किया, ओके इंडिया का लेवल टू पास किया, और उसके इंटरनेशनल लेवल वन जो कोचिंग होती है उससे आप इंटरनेशनल लेवल तक भी आप कोचिंग कर सकते हो।
1: अच्छा
0: तो वो है लेवल पास किया और उसका दूसरा भी पास किया और अभी तीसरा मैं करके आया हूँ।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ तो वह गया तो उसका मुझे साई के वैकेंसी में फायदा भी मिला और जो इंटरव्यू वगैरह है वहां पे इंटरव्यू भी हुआ। उसके बाद मुझे दिल्ली

0: इंटरव्यू के बाद मुझे भारत सरकार के ये सेंटर में बरेली में चयन हुआ।
1: जी, तो ये जो आप लेवल्स बता रहे हैं,
0: हाँ,
1: इनकी क्या वेटेज होती है, कैसे, क्या इसका
0: ये
1: महत्व होता है?
0: वेटेज आज के जमाने में जो अपडेट है, जो फॉरेन कंट्री में क्या रहता है, जैसे फुटबॉल के पहले लेवल चलते थे, तो लेवल ए लेवल बी टाइप के, जैसे ही हमारे जो FIH है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का, तो उनके द्वारा ये हॉकी के बेसिक लेवल स्टार्ट किए हैं। बेसिक लेवल में क्या होता है कि जो अपडेट आ रही है, नई नई हॉकी जो स्टार्ट हो रही है, कि कैसे आपको ग्रिप पकड़नी है, कौन कौन सी ग्रिप है, बच्चे को किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे इजी तरीके से हम उनको सिखा सकते हैं, और कैसे प्लेयर को एनालाइज करना है, कैसे प्लेयर को आइडेंटिफाई करना है, कैसी हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या हम टैक्टिस होंगे जब अपोनेंट से हम हार रहे हों, जीत रहे हों, क्या हमारी साइकोलॉजी होंगी ड्यूरिंग मैच, बिटवीन द मैच और आफ्टर मैच, तो वह चीज जो फॉरेन कोचेस होते हैं वह हमें आके इसमें 4 से 5 दिन का जो कोर्स होता है उसमें वो हमें अपडेट कराते हैं। फिर उसके बाद फिर वो हमारा रिजल्ट तैयार करते हैं और वो हमें टास्क देते हैं, फिर देन हम उसको पास करते करते आगे बढ़ते हैं।
1: अच्छा, मतलब एक कोर्स को पास किया, फिर
0: फिर
1: नेक्स्ट,
0: दूसरा
1: फिर
0: है, फिर
1: अच्छा
0: तीसरा
1: अच्छा
0: है ऐसे।
1: तो अभी आप जो तीसरा कोर्स पास करके आए हैं,
0: हाँ
1: ये इसमें क्या था, क्या मतलब इस लेवल का मतलब क्या था?
0: हाँ ये जो फेडरेशन इंटरनेशनल FIS लेवल 3 कोर्स था,
1: जी,
0: तो उसमें क्या था, ये इसमें जो हाई लेवल जो मैच चल रहा है अभी इंटरनेशनल, मतलब इसका जो कोर्सेज है वो सीधे भुवनेश्वर में होते हैं। भुवनेश्वर में जैसे FIH के जो मैचेस चल रहे होंगे इंटरनेशनल मैचेस, ड्यूरिंग द मैचेस उस समय हमें बुलाया जाता है, फिर हमें उस मैच के बारे में एनालाइज करवाया जाता है, फिर वो हमें बताया जाता है कि पहले हम खुद एनालाइज करेंगे उस मैच को, हम बताएंगे कि इस मैच में क्या क्या और कर सकता है। एक एक टीम दे दी जाती है, जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है तो मुझे इंडिया दे दी जाएगी और सामने वाले को ऑस्ट्रेलिया दी जाएगी, फिर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ तैयार बनाएंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस बनाने के बाद जब हम उनको प्रेजेंट करेंगे, देन हमारे जो उसमें जो गलतियां होंगी, फॉल्ट होंगी, जो फॉरेन कोचेस होंगे, जो इंडिया वाले कोचेस हैं, जो सीनियर कोचेस हैं जो FIH में हैं, वह उनको हमें बताएंगे कि हाँ ये आपकी थोड़ी सी गलतियां हैं, और फिर आपको कैसे उस मैच को एनालिसिस करना है, कैसे उसकी स्ट्रेंथ पकड़ना है, कैसे उसकी वीकनेस पकड़नी है।
1: अच्छा, और कौन कौन से लेवल होते हैं? 3 के बाद फिर अब क्या, 10 तक
0: हाँ
1: लेवल
0: नहीं,
1: होते हैं,
0: लेवल 4 रहते
1: फोर तक
0: हैं,
1: रहते हैं?
0: लेवल 4 रहते हैं,
1: अच्छा।
0: फिर 3 के बाद जो एजुकेटर्स हो जाते हैं, उसके बाद जो बेसिक लेवल्स होते हैं ना, उनके लिए आप उस पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
1: तो क्या इसके जरिए क्या कुछ सैलरी अपग्रेडेशन भी होती है?
0: नहीं, सैलरी अपग्रेडेशन
1: अच्छा,
0: नहीं होती, इसके जगह कुछ अपडेट होता है,
1: कुछ अपडेट होता है,
0: कुछ
1: मतलब
0: अपडेट
1: एक तरह
0: होता
1: से
0: है,
1: नॉलेज गेन कर
0: नॉलेज
1: रहे
0: गेन है, ये हमारे
1: हैं।
0: लिए ही फायदा है।
1: अच्छा, आपने तो राष्ट्रीय स्तर पे भी खेला है,
0: जी
1: तो पहला मैच कौन सा था आपका?
0: जी हमारा था मध्य प्रदेश वर्सेस छत्तीसगढ़ का था,
1: अच्छा
0: सबसे पहले मैं वहां पे गाजियाबाद में खेला था।
1: अच्छा
0: हाँ 2006-07 की बात है जब हमने खेला था, पहली बार मैच खेला, उसका जीते भी थे, छत्तीसगढ़ से मैच जीते थे, तो ऐसे ही फिर उसके बाद फिर हम औरंगाबाद गए, फिर दिल्ली में भी हुआ, फिर ऐसे धीरे धीरे करके काफी सारे जो नेशनल टूर्नामेंट थे वो खेले।
1: कौन से पोजीशन पे खेलते थे?
0: मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलता था।
1: सेंटर फॉरवर्ड।
0: जी
1: तो कुछ अगर यादें अगर साझा करना चाहें,
0: सेंटर
1: कोई
0: फॉरवर्ड के,
1: ऐसी कोई ऐसा मैच जो काफी डिफिकल्ट था, या आपके लिए डिफिकल्ट था, टीम के लिए भले ना हो?
0: हाँ काफी सारे मैच ऐसे होते हैं जब जब आप मैन मैन पोजिशन सेमीफाइनल्स होते हैं, तो ऐसे ही एक मैच था औरंगाबाद में सेमीफाइनल्स में, तो वह जो सेमीफाइनल मैच होते हैं उस समय आपके पास जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती, तो उस समय आपकी पहले क्या होती थी, 11 पोजीशन होती थी इंक्लूडिंग गोलकीपर से लेके फॉरवर्ड तक, तो 5 फॉरवर्ड होते थे, 3 डिफेंडर होते थे, 2 3 हाफ 2 डिफेंडर, एक गोलकीपर होता था। अब जो नया आ रहा है उसमें उन्होंने कर दिया कि 3 लेवल में बांट दिया उन्होंने, डिफेंडर, स्ट्राइकर और मिडफील्डर, तो उस समय जो हॉकी थी वो थोड़ी सी स्लो थी, है ना, अब जो है हॉकी थोड़ी सी फास्ट और होती जा रही है, तो उस समय पहले क्या रहता था कि जो कोचेस भी होते थे और जो साथ में वो ये कहते थे कि आप सिर्फ अपना काम करिए, तो ऐसे जब बॉल हमारे सेंटर में आती थी तभी हमारा काम होता था स्ट्राइकरों का, फॉरवर्डों का, कि हाँ हम जाके गोल करें। अब जो हॉकी चेंजेस है उसमें क्या रहता है कि स्ट्राइकर भी पीछे आएगा और डिफेंडर भी आगे जाएगा, मतलब कि आपको टोटल हॉकी है,
1: टोटल है।
0: स्ट्राइकर भी गोल मारेगा और डिफेंडर भी गोल करवाएगा आपका, तो पहले ऐसे काफी सेमीफाइनल मैचेस होते थे, उस समय हम सिर्फ बॉल का वेट करते थे, अगर हम पीछे जाते थे तो वहां से कोचेस जो होते वो कहते थे पीछे मत आ, फिर आगे गोल कौन करेगा, तो इस चक्कर में काफी मैच हार भी जाते
1: तो
0: थे।
1: कुछ टेक्निक्स जो है अपडेट हुई हैं। अच्छा,
0: हाँ
1: इसकी वजह से क्या कुछ रिजल्ट इम्प्रूव

0: हुआ है।
1: हाँ, ये जो टोटल हॉकी आया है
0: जी जी
1: उसमें क्या रहता है, स्ट्राइकर भी जो है गोल मारेगा, स्ट्राइकर भी मिडफील्डर है और मिडफील्डर भी स्ट्राइकर है और डिफेंडर भी स्ट्राइकर है और डिफेंडर भी मिडफील्डर है। उसमें क्या रहता है कि ऐसे कि हमारी जो इंडियन टीम के काफी जो डिफेंडर हैं अब वह भी आगे जाके मतलब काफी जो कोचेस की जो स्ट्रेटजी होती है कि हाँ आप आगे जाएंगे, डिफेंडर आगे जाएगा तो मिडफील्डर जो है वो पीछे आ जाएगा, उससे वो आपके जो एक प्लेयर इंक्रीज हो जाएगा जिससे आपको गोल मारने में फायदा मिलेगा।
0: जी, जी, जी।
1: तो आज के जमाने में जो है टोटल हॉकी है, आपको पूरा मैच खेलना है, आपको गोल भी मारना है, आपको डिफेंड भी करना है।
0: अब जैसे कि आपने बताया आप ग्वालियर के हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, क्या अंतर पाते हैं?
1: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में काफी अंतर है, जैसे कि बताया जाता है कि

0: है, जैसे कि बताता है, ये बताया जाता है कि यूपी उत्तर प्रदेश में काफी स्ट्राइकर्स माने जाते हैं अच्छे लेवल के, और मध्य प्रदेश में स्ट्राइकर प्लस मिडफील्डर भी होते हैं। पर जो यूपी है, यूपी की हॉकी मैंने देखा यहाँ पे आके, यूपी की हॉकी काफी अच्छी है।
1: अच्छा
0: यूपी में जो इतना मध्य प्रदेश में है लेवल है, बच्चों का लेवल है, काफी हॉकी है, पर यूपी की जो स्ट्रेंथ है काफी बड़ी है उसमें, और हॉकी भी काफी है। मतलब कि आपको एक जगह, एक सिटी में काफी आपको 2 से 3 3 ग्राउंड मिलने को मिलेंगे। तो बच्चों को यहाँ पे हॉकी का क्रेज काफी ज्यादा है, इसलिए आज के जो है इंडियन टीम में कम से कम 3 से 4 जो यूपी के हैं प्लेयर वो आपको मिलेंगे।
1: रोहित जी, जो आप साई के कोच हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम शिष्य आपसे गुरु मंत्र लेकर और आपके निर्देशन में सफलता की नई ऊंचाइयां छुएं, यही उम्मीद करते हैं, यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद सर, आपको भी आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: हॉकी कोच रोहित शर्मा के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं दीपू कश्यप, इनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी अमृता ने।
2: कार्यक्रम में दीपू कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले दीपू, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास इतने सारे मेडल्स हैं, तो कैसे आपको लगा कि इसी खेल को चुनना चाहिए?
3: स्टार्टिंग से ही मैंने ये स्ट्रगल करना मुझे बहुत अच्छा लगा था,
2: जी।
3: और फिर मैं एक बार गई थी स्कूल में, तो मेरी रेस हुई थी, तो फिर मैं फर्स्ट आई थी, तो मैम ने बोला था कि इसी लाइन में जाओ और तुम बहुत अच्छा करोगी आगे चल के। तो फिर मैंने आगे चल के गई थी, स्टेडियम गई थी, पहले डोरीलाल स्टेडियम गई थी,
2: जी
3: तो उन्हें मुझे कराया और फिर मैं यहाँ तक पहुँच पाई।
2: जी मतलब आपको इंस्पिरेशन मिली आपके स्कूल से, जहां पर आप रेस में जीतीं। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक दिन अपनी मंजिल की ओर जाते हैं। तो दीपू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर बाधा रेस है क्या? क्या ये एक आम रेस है या ये अलग है एक सिंपल सी रेस से?
3: ये एक रेस है जिसमें हर्डल्स होते हैं,
2: जी।
3: 10 हर्डल्स होते हैं इसमें, और इसे क्रॉस करना पड़ता है, तो अगर एक भी हर्डल छूट गया तो आपका फाउल हो जाएगा,
2: जी
3: तो उसको एक राउंड करके और फिर आपकी रेस फिनिश हो जाती
2: जी आपने कहा कि हर्डल्स होते हैं, क्या ये हर्डल्स सिर्फ 10 होते हैं या फिर रेस की जो दूरी होती है उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं?
3: है। ये हर्डल्स 10 होते हैं और बाकी 35-35 मीटर पे लगे होते हैं।
2: जी कितने मीटर की रेस होती है अगर बात की जाए? आप कितने मीटर की रेस को खेलती हैं या दौड़ती हैं?
3: मैं 400 मीटर रेस करती हूँ, बाधा दौड़।
2: जी और क्या 400 मीटर के अलावा भी होती है ये रेस की
3: हाँ,
2: दूरी?
3: 400 मीटर होती है, 800 होती है, 1500 होती है, 3 किलोमीटर होती है,
2: जी
3: और 5 किलोमीटर होती है, 10 किलोमीटर होती है,
2: तो अभी
3: ऐसे।
2: आप 400 मीटर की रेस
3: हाँ,
2: दौड़ती
3: मैं
2: हैं,
3: अभी 400 मीटर।
2: जी तो कितना समय लग जाता है 400 मीटर की रेस को पूरा करने में?
3: अभी तो मेरे को 400 मीटर फ्लैट करने में तो वन एक डाउन हो जाता है, और बाकी हर्डल्स पे एक छः आ जाती है टाइमिंग।
2: जी तो जो हर्डल्स होते हैं उनकी अगर ऊंचाई की बात की जाए और दूरी की बात की जाए, कितना डिस्टेंस होता है लगभग उनमें?
3: ऊंचाई की तो वो तो लो हर्डल होता है, एकदम लो होता है, और
2: जी
3: फिर दूरी 35-35 मीटर पे होता है, और लास्ट की जो हर्डल होता है वो 45 मिनट पे होता है, मीटर
2: जी
3: पे होता है।
2: मतलब हर्डल्स की एक सेम दूरी नहीं होती, अलग अलग होती जाती
3: हाँ
2: है।
3: हाँ अलग अलग होती है,
2: जी
3: 35-35 मीटर पे होती है, और बाकी लास्ट के होते हैं वो 45 मीटर पे होते हैं।
2: जी दीपू, आप एक स्टेट लेवल प्लेयर हैं, तो जब आप ये गेम खेलती हैं तो कैसा लगता है, किस तरह की चुनौतियां आ जाती हैं कभी कभी गेम खेलने में?
3: शुरू से ही मैंने मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराया, और मुझे पसंद भी है स्ट्रगल करना, तो सुबह मैं उठती हूँ और फिर फ्रेश वगैरह होना, और
2: हाँ
3: सुबह उठ के एकदम मन भी नहीं करता कभी कभी उठने का, तो फिर एक बार सोचती हूँ कि मेरा जो कंपटीटर है वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा,
2: जी
3: अगर मैं एक दिन की प्रैक्टिस छोड़ूंगी तो मेरे से बहुत आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मैं डेली रहता है मेरा जाना।
2: जी मतलब कई तरह की चुनौतियां आती हैं, चाहे मौसम हो, चाहे किसी
3: हाँ
2: भी तरह की शारीरिक थकान हो, लेकिन रुकना नहीं होता है, तभी हम अपनी मंजिल को पाते हैं। दीपू, अगर आपसे बात करें गेम की पूरी प्रक्रिया की, तो किस तरह से ये गेम शुरू होता है, कितने प्लेयर होते हैं और किस तरह से रेस की शुरुआत होती है, इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे।
3: इसमें 8 से ज्यादा लोग होते हैं, तो उसमें हीट कर दी जाती है, तो हीट होती है, और अगर 15 लोग हो या 20 लोग हो तो दो दो आठ आठ करके हीट को कंप्लीट करा जाता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है, ऐसे करके होता
2: जी
3: है।
2: तो जो दूरी होती है और प्लेयर्स की संख्या होती है, क्या ये हर गेम में बराबर होती है, चाहे वो 400 मीटर की रेस हो, 100 मीटर की हो या फिर इससे ज्यादा की हो?
3: हाँ, हीट तो होती है, 100, 200 और 400 मीटर में हीट तो होती है, और बाकी 800 मीटर में भी हीट होती है, लेकिन ऑल इंडिया

0: में जाओ, वर्ल्ड वगैरह में जाओ खेलने, तो होती है हीट उसमें,
1: जी
0: वरना तो 800 मीटर में स्टेट नेशनल में तो फाइनल कर दिया जाता है।
1: दीपू, आपने फाउल की बात की, फाउल किस तरह से होते हैं और कैसे वो गिना जाता है एक गेम में कि हाँ अब आपका फाउल हुआ है?
0: जब हम स्टार्ट करते हैं रेस तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठते हैं, तो फिर हम जब वो कोच बोलते हैं कि नियर मार्क बोलते हैं, तो फिर सेट बोलते हैं, अगर उससे गन बजाने से पहले ही खिलाड़ी भाग
1: अगर
0: जाता है,
1: दौड़ने लगता है
0: हाँ
1: तो
0: दौड़ने लगता है, तो वो फाउल हो जाता है,
1: डिस्क्वालिफाइड हो जाता
0: डिस्क्वालीफाई
1: है
0: हो जाता है।
1: जी।
0: हाँ
1: इसके अलावा जो हर्डल्स होते हैं उसमें अगर पैर टकरा जाए या फिर उसको क्रॉस नहीं कर पाए तो क्या वो भी फाउल में माना
0: हाँ
1: जाता है?
0: क्रॉस नहीं कर पाओ तो फाउल हो जाता है, और बाकी हर्डल्स गिर जाते हैं तो फाउल हो जाता है।
1: जी दीपू, एक खिलाड़ी के लिए उसकी दिनचर्या बहुत आवश्यक होती है क्योंकि उसे बहुत कुछ करना होता है, तो आपसे आपकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसी होती है, कब आप कितने बजे उठती हैं, उसके बाद में जो आपकी प्रक्रिया रहती है पूरे दिन की वो क्या होती है?
0: मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, और बाकी फ्रेश वगैरह होना, और फिर एक केला वगैरह खाते हैं, और फिर जाते हैं प्रैक्टिस करने, फिर वहाँ से आते हैं, उसके बाद डाइट वगैरह लेते हैं, और फिर 1 घंटे रिकवरी वगैरह करते हैं, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करने लगते हैं।
1: जी। और शाम की क्या आपकी जो अगर बात की जाए स्केड्यूल जो होता है वो क्या रहता है?
0: शाम को वही 4 बजे से प्रैक्टिस पे जाते हैं, और फिर वही 3-4 घंटे की प्रैक्टिस, उसके बाद 8 बजे घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं,
1: जी।
0: थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं।
1: प्रैक्टिस में क्या क्या होता है, एक्सरसाइज होती हैं या सिर्फ गेम की आप प्रैक्टिस करती हैं?
0: हाँ प्रैक्टिस में एक्सरसाइज होती है, और जिम स्ट्रेंथ पावर वर्कआउट के लिए जिम भी जरूरी होती है, और बाकी रोड वगैरह करना जरूरी होती है।
1: जी। आपने भी स्ट्रेंथ की बात की, तो एक खास तौर पर एक लड़की होने के नाते स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी जरूरी होती है एक लड़की के लिए, और खास तौर पर एक अगर लड़की प्लेयर हो वो भी बाधा रेस की तो?
0: अगर अगले क्षेत्र में जाती है लड़की तो स्ट्रेंथ, जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो आगे नहीं बढ़ सकती।
1: जी।
0: और
1: आपने अभी स्ट्रेंथ के लिए भी बोला कि
0: हाँ
1: स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है, और कॉन्फिडेंस की आपने बात की, तो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप में आत्मविश्वास नहीं है तो वैसे भी आप आगे नहीं जा सकते, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है एक प्लेयर होने के नाते भी कि आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए। दीपू, परिवार में आपके कौन कौन है और एक खिलाड़ी होने के नाते परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपको?
0: परिवार में मेरी 4 सिस्टर हैं और एक भाई है, मैं सबसे छोटी हूँ सिस्टर में, और मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा का तो और घर वालों का तो पूरा सपोर्ट रहा है, बहन भी सपोर्ट करती है, उसको जॉब करती है तो थोड़ा बहुत कर देती है सपोर्ट, और बाकी यही है। घर वालों से कभी ये नहीं रहा कि इतना सुबह क्यों जा रही है, इतनी रात में क्यों आ रही है, कभी ये नहीं रहा, पूरा सपोर्ट रहा है घर वालों की तरफ से।
1: जी। आप शहर से बाहर भी खेलने जाती हैं, तो क्या उस टाइम पे कभी ऐसा हुआ है कि परिवार वालों ने कहा हो कि आप एक लड़की हैं और आप बाहर ना जाएं, यहीं पे रह के खेलें?
0: कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना कभी घर वालों ने बोला है कि बाहर इतनी दूर क्यों जा रही हो, और क्यों लड़कों से बात कर रही हो, या बहुत सारी बातें होती हैं, मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं,
1: जी।
0: तो कभी नहीं सोचा घर वालों ने, यही भरोसा करा है कि हाँ हमारी लड़की घर से बाहर निकली है तो कुछ अच्छा ही करके आई।
1: बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है और खास तौर पर माता पिता का, और आप तो लकी हैं कि आपकी बहनें भी हैं जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट भी करती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो दीपू, डाइट की अगर बात करें तो एक खिलाड़ी की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी उसमें सेहत आती है और स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। आपकी डाइट क्या है, क्या डाइट लेती हैं आप?
0: सुबह जब हम वर्कआउट्स करके आते हैं तो सुबह वही ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, काजू बादाम किशमिश छुआरे ये सब लेते हैं, और उसके बाद कभी कभी दूध मिल जाता है तो दूध भी पी लेते हैं, और बाकी फिर शाम में जब जाते हैं तो एक केला वेला खा के चले जाते हैं।
1: जी। अच्छा दीपू, ये देखा जाता है कि जो आजकल के यूथ हैं, बच्चे हैं खास तौर पर, उन्हें फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, तो एक खिलाड़ी होने के नाते आप क्या कहती हैं, फास्ट फूड खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए?
0: फास्ट फूड खाना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि लिमिट क्रॉस
1: लिमिटेड
0: करा,
1: खाना
0: हाँ
1: चाहिए,
0: लिमिटेड खाना चाहिए
1: बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा फास्ट फूड खाना
0: खाना
1: सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी टेस्ट के लिए आप चीट
0: हाँ
1: डे कर
0: कभी
1: सकते
0: कभी
1: हैं।
0: कभी मैं भी खा लेती हूँ, महीने में 1 बार या 2 बार।
1: जी। आप कहाँ कहाँ गई हैं अभी तक दीपू, क्योंकि आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, तो जरूर आप देश में या फिर स्टेट लेवल पे खेलती हैं, तो दूसरे शहरों में तो जरूर गई होंगी।
0: लखनऊ गए थे 1 बार खेलने, तो और गाजियाबाद भी गए थे, गोरखपुर गए थे, और शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, वहां से जब भी गए हैं तो मेडल लेके आए हैं।
1: जी, इतनी सारी जगहों पे आप गई हैं और आपने ढेर सारे मेडल्स भी जीते हैं, क्या कभी कोई ऐसी एक कहानी है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो आपके जहन पे एक असर छोड़ गया हो कि मैं वहां गई थी, वहां

0: ऐसा ऐसा हुआ था।
1: ऐसा तो कुछ नहीं, वैसे तो एक बार गई थी तो मेडल नहीं पढ़ पाया, तो घर आई थी, फिर घर वाले भी बोल रहे थे क्या हो गया, नर्वस क्यों हो रही है, फिर मैंने बताया कि मेडल नहीं आया, तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, अप डाउन तो होते रहते हैं,
0: जी
1: कभी आता है कभी नहीं आता है, हार जीत तो चलती रहती है,
0: बिल्कुल।
1: तो फिर वही रहा कि होता
0: जैसा कि
1: रहता है।
0: जानते
1: तो
0: हैं और आप बाधा रेस खुद ही खेलती हैं, तो आपको पता है कि बाधाएं तो आती रहती हैं,
1: हाँ
0: निराशा
1: होता
0: आती
1: है,
0: है और कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हार के बाद ही जीत है और
1: हाँ
0: वो दिख ही रहा है आपके इतने सारे मेडल्स से, और जरूर आगे भी भविष्य में आप ढेर सारे मेडल्स और जीतेंगी। तो दीपू, अगर आपसे बात की जाए कि प्रैक्टिस की जो बात होती है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा परेशानियां भी आती हैं प्रैक्टिस करने के टाइम पे, मान लीजिए कोई इंजरी हो गई, जो हर खिलाड़ी के जीवन में जरूर होती है कभी ना कभी, तो क्या आपको भी ऐसी कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस प्रभावित हुई हो या खेल प्रभावित हुआ हो?
1: हाँ एक बार जब हम हडल कर रहे थे तो एक बार क्रॉस कर रहे थे तो स्ट्रेच हो गई मसल,
0: जी
1: तो फिर एक दो दिन रेस्ट किया, फिर सोचा कि ये तो इंजरी तो होती रहती है खिलाड़ी की लाइफ में, ये जब तक इंजरी नहीं आएगी तो खिलाड़ी कैसे बनेगा वो, तो फिर दो तीन दिन बैठी थी मैं रेस्ट पे, उसके बाद सोचा मैंने कि अब कब तक रेस्ट करूंगी, एक ना एक दिन तो आना ही है प्रैक्टिस पे, तो फिर प्रैक्टिस तो लगातार रही मेरी।
0: जी, इतनी सारी परेशानी के बाद आप प्रैक्टिस करती रहती हैं कंटिन्यू, एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भले ही इंजरी हो उससे रिकवर करने के बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, क्योंकि बॉडी को भी नीड होती है। अब आपसे दीपू ये जानना चाहेंगे कि जब आप खेलने कहीं जाती हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं उनका क्या आपके साथ बर्ताव रहता है, क्योंकि परिवार का तो सपोर्ट आपको है, लेकिन जो हमारे आसपास की सोसाइटी है, लोग हैं, वो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं?
1: आसपास के लोग भी खुश होते हैं कि हाँ लड़की जा रही है बाहर खेलने, अच्छा नाम करके आ रही है, पहले भी गए थे तो मेडल वगैरह लेके आए थे, खुश हुए थे आसपास के लोग, कभी ऐसा नहीं कि बातें बनाई हो मोहल्ले वाले ने, कभी ऐसा नहीं,
0: जी,
1: काफी अच्छा सपोर्ट रहा है मोहल्ले वाले का
0: मतलब
1: भी।
0: लोग भी अब आपको अप्रिशिएट करते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जरूर आपको देखकर आसपास की जो लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, स्पोर्ट खेलना चाहती हैं, वो जरूर आगे आएंगी, आप उनको प्रेरित करने का काम भी कर रही हैं। दीपू, आप अभी बहुत ही छोटी हैं, और कितनी आयु से आपने इस गेम को खेलना शुरू किया था?
1: मैंने 16 साल से स्टार्ट किया था खेलना, और 2022 से स्टार्ट किया था खेलना, और मुझे 3.5 साल हो गए रनिंग करते करते।
0: 3.5 साल से आप इस गेम में हैं, तो 3.5 साल में अगर आपके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है और शहरों के खिलाड़ियों के साथ में जब आप खेलने जाती हैं तो?
1: जब खेलने पहले जब जाती थी तो पहले तो मेडल नहीं आते थे क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी पहले, और पहले इतना एक्सपीरियंस भी नहीं
0: शुरू
1: था,
0: शुरू की बात होती है।
1: हाँ
0: जी
1: तो एक्सपीरियंस भी नहीं था इतना, फिर थोड़ी थोड़ी आगे करके प्रैक्टिस हुई और मेहनत करी, तब जाके थोड़े मेडल वगैरह आने लगे, काफी अच्छा लगा, और फिर यही हुआ।
0: अच्छा, आपके कोच का कितना सपोर्ट रहा है, या फिर आपके जो टीचर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको सिखाते हैं, उनका कितना सपोर्ट रहा है आपके गेम में?
1: कोच का भी फुल सपोर्ट रहा है, कभी डाइट वगैरह का नहीं हो पाता तो कोच करते थे, शूज वगैरह का नहीं हो पाता तो कोच का तो पूरा सपोर्ट रहा है,
0: जी
1: और कोचिंग भी फ्री कराते हैं वो।
0: जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोच ऐसे हों तो जरूर उनके जो स्टूडेंट है वो आगे जरूर बढ़ेंगे। तो आपसे दीपू अभी ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि शूज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या कोई अलग सा कोड होता है ड्रेस का इस गेम को खेलने के लिए?
1: हाँ रनिंग किट होती है वो, टाइटी वगैरह पहन के करा जाता है, शॉर्ट्स वगैरह, उसमें काफी अच्छा मतलब फील होता है और रनिंग भी अच्छी होती है। शूज की बात है तो खिलाड़ी के अलग ही होते हैं, सोल वगैरह अलग होती है उसकी, और ग्रिप वगैरह अलग होती है, और शूज भी लाइट होता है
0: जी
1: तो काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है शूज से भी,
0: जी
1: डाइट वगैरह भी अगर खिलाड़ी की अच्छी रही तो काफी अच्छा करता है।
0: दीपू, आप गेम तो खेलती ही हैं और काफी अच्छा कर रही हैं अपनी उम्र और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन अगर बात की जाए पढ़ाई की, तो अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में आप क्या कर रही हैं?
1: अभी तो इंटर हो गया मेरा, BA में एडमिशन लिया है, अब
0: जी
1: BA करेंगे।
0: तो पढ़ाई करना भी आपको उतना ही पसंद है जितना गेम
1: हाँ
0: पसंद
1: हाँ
0: है?
1: पढ़ाई रनिंग के साथ साथ भी पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, और बाकी जितना टाइम मिलता है वो पढ़ाई को ही देते हैं फिर।
0: जी, तो पढ़ाई में आपने बोला कि आप BA कर रही हैं, तो जब आप पढ़ रहे हो साथ ही साथ आप गेम भी खेल रहे हो, तो दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे?
1: जब वर्कआउट करके आते हैं तो रिकवरी वगैरह लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी होता है, तो 1-2 घंटे पढ़ाई को देते हैं,
0: जी
1: फिर शाम में प्रैक्टिस करने जाते हैं, आते हैं तो खाना वाना खाते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ाई को देते हैं।
0: तो मतलब आपकी पढ़ाई और आपका गेम दोनों अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, कहीं
1: हाँ
0: किसी
1: बढ़िया।
0: आपकी स्कूल टीचर्स का सपोर्ट रहता है?

0: हाँ, स्कूल टीचर का भी सपोर्ट बहुत रहा है,
1: जी
0: पहले भी रहा है और अभी अभी भी अच्छे से सपोर्ट रहा है।
1: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये गेम की प्रैक्टिस भी करनी है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है। दीपू, बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि ना केवल आपके बल्कि जो भी बच्चे इस खेल को खेलना चाहते हैं या देश के नाम कोई भी मेडल प्राप्त करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन सभी की जो भी इच्छाएं वो पूरी हों, अपनी मंजिल को वो पाएं। आपने अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस साझा किए, उसके लिए दीपू कश्यप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, ये था आज का खेल दर्पण। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको, ये हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
3: खेल दर्पण,
4: खेल दर्पण, खेल दर्पण।

श्रोताओ, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर रात्रि के 10:30 और 30 सेकंड स्टूडियो की घड़ी में हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित निखिल बनर्जी का सितार पर बजाया राग हेम विहाग। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्यामल बोस।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित निखिल बनर्जी का सितार पर बजाया राग हेम विहाग सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत किए थे श्यामल बोस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने